कर सकते हैं। खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं,

जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियां आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें। पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से
समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को यानी कि 2 और 2 4 दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग।

जाते हैं। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाए, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए, और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है, और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे

वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका, जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है, किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी

भूर्भुवस्वः। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चा द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़ के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़ के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी, तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं। और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आंखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

आइए अब आपको सभी धर्मों के अनुसार माँ और ईश्वर के संबंध की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ वही है जहाँ परमात्मा छुपा होता है। गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीजस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीचस गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की ब्रीथ यानी श्वास है जो

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं।

और हर धर्म हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप हैं। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खीमा बख्शीश दीखान, जिथे बच्चे पलदे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक आध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति, वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

माँ और इंसानियत दोनों बिना स्वार्थ के जीती हैं। माँ बिना शर्त प्यार करती हैं। इंसानियत भी वही है जो बिना मतलब किसी के आंसू पोछे। माँ भूखी सो सकती है पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। इंसानियत वही है जो दूसरों के लिए जीना सिखा दे। इसलिए माँ और इंसानियत एक दूसरे का प्रतिबिंब है। चलिए आपको अब माँ के स्पर्श से जुड़ा एक सूफियाना विचार सुनाती हूँ। माँ की हथेली पर खुदा की मोहब्बत उतरती है और उसकी दुआओं में जन्नत से भी बेहतर ठिकाना मिलता है। और अब आज के एपिसोड की आखिरी बात, माँ पर कोई धर्म नहीं होता, बेशक उसका कोई मजहब नहीं, पर हर मजहब उसी से शुरू होता है। उसकी कोई भाषा नहीं, पर हर प्रेम उसी की बोली से जन्मता है। उसकी कोई सीमा नहीं, पर हर जीवन उसी की गोद में सीमित होता है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो सब अधूरा है। माँ रब की रचना नहीं, बल्कि रब भी शायद माँ की रचना हो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लूंगी आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री राम, अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: चढ़ गए।
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

एंड गुड मॉर्निंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग गोंडा, क्या हाल है भाई आप सभी का। एंड सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज एंड आ गई आज आपकी आज जैसे आ जाइए फटाफट करनी है खूब ढेर सारी बातें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता है। आज है फ्राइडे एंड आज वेनसडे नहीं है, आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे के दिन आ गई है फिर से आपकी आज समता है। जल्दी से चैट बॉक्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमारी आवाज़ सुन करके कितने लोग आ गए हैं। तो अभी तो कोई नहीं आया है और सभी लोग जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आज का शो होने वाला है बहुत ही बड़ा धमाल, क्योंकि आज कोई कंटेंट नहीं, कोई ज्ञान की बातें नहीं, सिर्फ होंगी धमाल और आपकी पसंदीदा सॉन्ग सुनने का मौका। यानी कि आज होगा गेम शेम, थोड़ी गपशप और थोड़ी इधर उधर की बातें। तो भाई, आज का जो शो है ना, मॉर्निंग शो है, मुझे लगता है कि जब हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं एंड गाड़ी में अपनी FM को जब चालू कर रहे होते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि यार अब गाना कौन सा आने वाला है, और अब गाना जो आएगा ना उस पर हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर लेंगे गाड़ी में एंड थोड़ा सा मूड को चिल कर लेंगे। तो यस, यही उम्मीद होती है कि सुबह के शोर से हट करके, सुबह के एकांत वाले, अपने मन के शोर को हटा करके एकांत वाले सीज़न को सुनना है, दिल की आवाज़ सुननी है, प्यारा सा ये गाना और सुनना है, क्योंकि उसके बाद मैं लेके आऊँगी थॉट ऑफ द डे। थॉट जो होता है ज़िंदगी बनाता है, थॉट वो होता है जो पूरे दिन की थकान को दूर करने में सहायक होता है। यानी कि अगर हमने एक थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर लिया मॉर्निंग में, तो हमें पूरा दिन लग जाता है उसको अपने ऊपर बनाने के लिए, तो फालतू का टाइम सोचने के लिए भी नहीं हो जाता है और लगता है कि यार आज का थॉट तो ये था ना, तो चलो हम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। तो थॉट बोलना एंड थॉट पे काम करना ज़रूरी होता है। सुबह उठ करके आप सभी को पता है कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि एक थॉट अपने लिए क्रिएट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो पूरा दिन हम अपने लिए एक नई ऊर्जा वाला एक स्रोत अपनी बॉडी में भर सकें, है ना। तो चलिए, वो सब तो होता रहेगा, थॉट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको एक गाना और सुना दूँ, जो कि बहुत ही प्यारा गाना मुझे मिल गया है। सलाम आया है, तो सलाम आया है बेहद ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, सुनते हैं, उसके बाद आते हैं तुरंत थॉट ऑफ द डे। आइए सुनते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता, और फटाफट आप शुरू करते हैं थॉट ऑफ द डे। और जो आज का थॉट ऑफ द डे है, बहुत ही बेहतरीन सा है, और मैं क्या ही बता दूं। मतलब थॉट ये है आज आपका कि इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, और इंसान की सोच ही उसे रंक बनाती है। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, और इंसान की सोच ही उसे रंक बनाती है। उसके लिए, अपनी सोच के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, किसी को खुश करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब डिग्री होगी किसी को खुश करने की, तो हर कहीं पर ये लोड हो जाएगी, मुझे तो खुश करने वाली डिग्री चाहिए, अपने आप को खुश करने की, लोगों को खुश करने की। तो किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपनापन देने के लिए, किसी की मन की सुनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आंखें बंद करिए, सच्चे दिल से जो भी आपके मन में आ रहा है आप उसे कर डालिए। उसके लिए ना तो आपको कोई पढ़ाई की आवश्यकता है और ना ही किसी डिग्री की। तो आज दो थॉट है एक साथ में, कि इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, और इंसान की सोच ही उसे रंक बनाती है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। कई बार मैंने फैमिलीज में देखा है बच्चों को, कि आज की न्यू जनरेशन्स में, कि इतना ज़्यादा हाइपर नहीं उड़ा करो, नहीं सोचा करो, हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम ऐसे हैं, क्या पता आगे और भी तुम्हें ऐसा घर मिले, लड़कियों के लिए कि तुम यहाँ से भी ज़्यादा परेशान हो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तो ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन मैं उन सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच अच्छी बनाएंगे, अगर आपके दिल दिमाग में ये सोच बनी हुई है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा एक अच्छे से जीवन को जिएगा, और यहाँ जो भी है चलो ठीक है कोई नहीं, बट आगे जाकर के उसे बहुत ही अच्छी सी खुशियाँ मिलेंगी, और जो उसकी सोच है कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसे कर पाएंगे। क्योंकि सोच को हमें सीमित नहीं रखना है, सोच हमारी असीमित होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोच अच्छी रखेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, और इंसान की सोच ही उसे रंक बनाती है। और किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपना करने के लिए किसी की मन की सुनने के लिए, किसी को अपनाने के लिए, किसी का दुख दर्द बांटने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। बस आंखें बंद करिए और अपने मन में जो भी आपके मन में एक सच्चाई वाली चीज आ रही है, आप उसे अपना लें, उसे कर डालें। तो ये था आज का थॉट। और आइए अब चलते हैं, चार लाइन की शायरी मुझे मिली है बहुत ही बढ़िया से, जो चाय पे है। और सुबह का वक्त है, कुछ लोग तो अपने काम पे भी निकल गए होंगे, कुछ लोग ड्राइव कर रहे होंगे, कुछ लोग, कुछ महिलाएं तो अपने घर में किचन में मोबाइल को 89.6 FM को ऑन कर लिया होगा और सुन रही होंगी हमारी बातों को। तो कितने लोग सुन रहे हैं प्लीज़ आकर के एक बार चैट बॉक्स में यस नो या फिर कोई ऐसा छोटा सा आइकॉन इमोजीज भेज दें ताकि हमें भी लगे कि हाँ आज आप हमारी बात को सुन रहे हैं। तो आइए चाय पर चर्चा, यानी कि चाय पर चर्चा होगी और क्या चर्चा होगी आइए सुनते हैं। एक कप चाय और कुछ अधूरी बातें, यही तो है जिंदगी की सबसे प्यारी सौगातें। सुकून मिलता है हर एक घूट में, सुकून मिलता है हर एक घूट में, जैसे खुशियां छुपी हो इसकी हर एक बूंद में, जैसे खुशियां छुपी हो इसकी हर एक बूंद में। चाय की खुशबू और सुबह का उजाला, चाय की खुशबू और सुबह का उजाला, दोनों मिल जाए तो दिन लगे निराला। हर घूट में मिलता है एक नया एहसास, हर घूट में मिलता है एक नया एहसास, चाय के बिना कहां पूरी होती है शुरुआत। वो चाय ही क्या जो दिल को राहत न दे, वो चाय ही क्या जो दिल को राहत न दे, वो दोस्ती ही क्या जो साथ न दे। चाय यार, चाय और यार जब साथ बैठ जाए तो हर गम भी मुस्कुरा कर चला जाए। सर्द हवाओं में चाय का सहारा है, सर्द हवाओं में चाय का सहारा है, थके हुए दिल का यही किनारा है। महफिल हो या तन्हाई का दौर, महफिल हो या तन्हाई का दौर, चाय हर पल की सबसे प्यारी यार है, चाय हर पल की

मैरिज एनिवर्सरी है, विश कर दीजिए मैम और एक सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। ओके याशु जी, तो विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। श्रुति जी एंड राहुल जी, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, और आपके लिए सॉन्ग हम ज़रूर प्ले करेंगे। आशु जी, अगर मैं शो के दरमियान अगर भूल भी जाऊँ तो मुझे एक बार फिर से रिमाइंड करा दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच प्रीति जी, नाइस थॉट, एंड आशु जी अगेन थैंक यू। चलिए तो चलते हैं अब बहुत ही प्यारे से एक गाने की ओर, और उसके बाद में आशु जी, प्रीति जी मुझे ज़रूर से याद दिला दीजिएगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ आपके गाने को। ये ना हो जाए कि फिर मैम आपने गाना नहीं प्ले किया, ठीक है? तो आइए, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि सुबह के मूड को थोड़ा सा रिफ्रेश करता है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, प्यारा सा गाना है, स्मूदी सॉन्ग है क्योंकि मॉर्निंग का माहौल चल रहा है, तो उसमें ये गाना तो बनता है, ठीक है? आइए सुनते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
5: टीचर, मैं पूछूं क्या?
4: बिल्कुल।
5: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता है। जल्दी से आइए, आज बता दें हेल्थ इज वेल्थ पर क्या है। तो भाई, हेल्थ इज वेल्थ में बहुत ही अच्छा है। अमूमन ये किचन में, सभी के किचन में यूज होने वाला एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी हेल्थ को करता है इम्प्रूव। तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पाचन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड इम्यूनिटी में, या फिर बॉडी बहुत हीट होती है एंड स्किन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी। एक नुस्खा क्या है, मतलब हर घर में और हर घर के किचन में ये उपलब्ध होता ही है। तो मैं इसका दो रूप बताऊंगी। मतलब पहला तो जो एक इसकी ग्रीनरी है, मतलब जो हरी हरी चीज़ है, उसके बारे में बताऊंगी एंड फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में भी बताएंगे। दो फॉर्म में हम इसको यूज़ करना बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो बता दूं कि सेहत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड कहा जाता है कि अगर आपके पास पूरे संसाधन हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल, अपनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है हेल्थ इज वेल्थ। तो आइए फटाफट शुरू कर देते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का एक मसाला नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक हिंट भी देना चाहती हूँ कि हर एक सब्जी में, हर एक फूड में या फिर हर एक नाश्ते में, ऊपर से सजावट के लिए, चलो मैंने इतना भी बोल दिया, आप इसका यूज़ करती हैं एंड उसका नाम है धनिया, हरी धनिया। जी हाँ, तो इसको आप किसी भी प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैं इसको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका गड़बड़ रहता है, तो आप उसको बेहतर बनाने के लिए आप धनिया का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है पहले बता देते हैं कि आपको किस किस में इसमें यूज़ करना है। तो धनिया आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है और गैस, अपच जैसी सारी प्रॉब्लम्स में राहत देता है। सेकंड है कि आपकी बॉडी में जो हीट प्रॉब्लम होती रहती है, उस हीट प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है और ख़ास करके गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो क्या मतलब कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं डाइजेस्टिंग वाला बता दूं आपको कि जो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को ये कैसे ठीक करता है कि हरी धनिया आप सवेरे उठ करके मतलब खाली पेट अपने आपने आधी मुट्ठी ले लेना है, मतलब उसको धुल करके अच्छे से फ्रिज में पहले से ही रख दीजिए। और आधी मुट्ठी क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि क्वांटिटी हो जाएगी 2 चम्मच, ठीक है, हरी धनिया 2 चम्मच थोड़ी सी ले लीजिए और उसको चबाइए। चबाने के बाद में 2-3 सिप आपने पानी पी लेना है। ये कंटिन्यूसली आपको 15 दिन तक करना है, उसके बाद आपको उसका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि आपकी बॉडी में अगर हीट प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, शरीर हमेशा से गर्म रहता है, गर्मी लगती रहती है, तो इसका पानी पी सकते हैं आप। सवेरे उठिए और सवेरे उठने के बाद में आपने इसको आधा घंटा पहले पानी में भिगो देना है, ठीक है, और सुबह उठ करके फिर उसको छान करके आपने इसका पानी पी लेना है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है एंड इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है एंड आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। कैसे, इसमें मौजूद जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को इम्यूनेट करता है और उसमें मदद करता है। साथ ही साथ में आप कच्चा खा सकते हैं या फिर आप सब्जी में, या फिर आप इसकी क्वांटिटी हर एक सब्जी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सब्जी बन जाए ऊपर से आपने बहुत सारा हरा धनिया डाल देना है। और जिन लोगों को लगता है यार कच्चा कैसे खाएंगे, तो ये भी एक फॉर्म है कि सब्जी बन जाने के बाद में आपकी प्लेट में आने के बाद में ढेर सारा धनिया ऊपर से डाल दीजिए और वो किसी भी फॉर्म में फिर आप उसे खा सकते हैं। उसके बाद है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। धनिया का रोज सेवन करने से, अगर आप इसको रोज ले रहे हैं, तो ब्लड शुगर और जैसे कहते हैं ब्लड शुगर एंड अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं आप लोग, तो उसको संतुलित करने में ये मदद करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल की जनरेशन के लिए जो कि है स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, उसके लिए भी धनिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मौजूद जो होता है वो पोषक तत्व हमारी स्किन को हेल्दी और बिल्कुल शाइनी बनाने में सहायक होता है। एंड हमारे हार्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में ये हेल्प करता है। तो आप इसके वो कैसे खा सकते हैं, मैं उसके 3-4 उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका सेकेंड फॉर्म भी बताऊंगी। धनिया पत्ती को सलाद में खा सकते हैं, चटनी या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। इसकी नीट आप चटनी बना लें, केवल और केवल धनिया को पीस लीजिए एंड एक हरी मिर्च डाल दीजिए, बस केवल और कुछ भी नहीं, ठीक है। और फिर इसमें हल्का सा नमक डाल करके आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये मतलब धनिया किसी भी फॉर्म में इसको खाना है। रात भर धनिया के बीज पानी में भिगो करके उसे उसका पानी पीजिए। जो मैं सेकंड फॉर्म आपको बताने जा रही थी वो मैं ये बता रही थी कि जो सूखी धनिया होती है उसको आपने रात भर भिगो देना है, ठीक है। एक आधे ग्लास में आप पानी में इसको भिगो दीजिए और उसके बाद में सुबह उठ करके वो पानी छान करके आपने पी लेना है। अब जो धनिया बची है जो आपने भिगोई थी वो पूर्ण रूप से अंकुरित हो चुकी होगी, फूल गई होगी। तो बता दूं कि अगर आपने इसको आपने अपने घर के पौधे में डाल दिया, किसी गमले में डाल दिया, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घर में ही धनिया उगाने के लिए। मुश्किल से 10 से 12 दिन में घर में ही आपके पॉट में धनिया, हरी हरी धनिया उगाएगी अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया। क्या करना है, रात में आपको धनिया भिगो देना है, सुबह उसका पानी आपको पी लेना है और जो धनिया भीगी हुई धनिया बच जाएगी इसको आपने अपने घर के पॉट में डाल देना है। उसके बाद है धनिया की चाय बना करके भी आप इसको पी सकते हैं। सूखी धनिया या फिर साबित धनिया जो होती है या फिर हरी धनिया भी जब चाय बनने लगे तो जैसे हम लोग अदरक डालते हैं ना, उसमें आपने इसको डाल करके और छान करके आप पी लीजिए चाय में। अब इसका सेकेंड फॉर्म बताते हैं। जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी गिनाई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने क्या करना है, सूखी धनिया ले लेनी है 2 चम्मच, उसको पीस लेना है, 3 चम्मच पीस लीजिए, ठीक है। सूखी धनिया ना उसको रोस्ट करना है ना कुछ करना है, उसको केवल आपने पीस लेना है। मतलब मार्केट, अगर आपके घर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मार्केट से लेकर के आइए और उसको पीस लीजिए, ठीक है। पीसने के बाद में आपने मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है उसको भी आप पीस लीजिए, पहले उसको दरदरा कर लीजिए किसी में और फिर आपने मिक्सी के जार में डाल करके उसको पूरा पीस लेना है। अब क्वांटिटी कैसे रहेगी, कैसे बनाना है, 3 चम्मच अगर धनिया है तो 2 चम्मच आपकी मिश्री होगी, इसको आप डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए, शेक कर लीजिए। खाना खाने के बाद सुबह खाली पेट आपने आधा चम्मच इसका रूटीन बना लीजिए। अगर आपने ये नियमित रूप से आप इसको लेने लगे तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम, अपच, पेट फूलना, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और बहुत ही अच्छा सा ये जो एक घर की चीज़ है धनिया से लेकर के, एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए मिश्री की मात्रा को कम कर दीजिए, मतलब अगर उनके लिए बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच मिश्री और 3 चम्मच धनिया मिला करके उनके लिए अलग रख दीजिए और आधा चम्मच मतलब खाना खाने के बाद में उनको दीजिए। और ये बहुत अच्छा है पेट के लिए, ठंडक के लिए, स्किन के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्किन शाइन करती है, बालों में चमक आती है, मात्र और मात्र इतनी सस्ती चीज़। मतलब सूखी धनिया तो कितने में मिलती है भाई, 10 रुपए की तो बहुत ढेर सारी मिल जाती है। तो इसका इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन करने के बाद। तो आइए अब चलते हैं एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग की ओर। हाँ हाँ अंशु जी बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब मैं तो करती हूँ, मैंने आपको इसलिए बताया। और मेरे बैग में हमेशा से एक छोटी सी डिबिया में ये फॉर्म रखा रहता है। मतलब कभी भी लगता है कि कुछ खा लो ऐसा बाहर का या ऑयली खा लो, बस फटाक से आधा चम्मच खा करके और पानी पी लेते हैं, तो इससे ना उसको स्वाद भी बड़ा अच्छा लगता है और पेट में ठंडक भी होती है और काफ़ी चीज़ों में ये सहायक मतलब मुझे लगता है कि हाँ है, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बहुत ही प्यारे से गाने की ओर, जो कि शायद कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, एंड देन उसके बाद में फिर हम सीधे आएंगे गेम की ओर, क्योंकि गेम के बाद में राशिफल। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: कर गए।
1: एग्जैक्टली हमको दीवाना कर गए। लेकिन अभी आशु जी की जो पसंद सा एक सॉन्ग चल रहा है, अभी लिख के भेजा है उन्होंने, हम उसे प्ले करना चाहते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि उनकी बहन श्रुति का एंड राहुल की मैरिज एनिवर्सरी है। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। आइए दरक्षा जी, मनी जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। तो इस गाने के बाद में हम सीधे आएंगे राशिफल एंड साथ ही साथ में हम गेम भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे ट्रैवलिंग को लेकर के, ठीक है? उसके बाद में हम गेम शुरू करेंगे। इस गाने के बाद तुरंत आते हैं।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और चलिए फटाफट शुरू करते हैं अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है एंड उसके बाद में आपका फेवरेट सेक्शन यानी कि गेम। तो भाई, बहुत सारे लोग इस समय छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसके प्रिकॉशंस हैं अगर आप सभी को ध्यान में रखते हुए। देखिए, गर्मियां बहुत हैं और इस समय, अब कल से तो खैर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश ने थोड़ी सी दस्तक दे दी थी, तो बारिश थोड़ी सी हुई है और रात में भी बहुत ही अच्छा सा मौसम था। लेकिन अगर हम कहीं बाहर भी घूमने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं, आप सभी को बताना चाहती हूं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आशु जी, आपको कैसा लगा आपको सॉन्ग? थैंक यू सो मच मैम। अरे नहीं आशु जी, ये इट्स माय प्लेजर, क्योंकि ये मुझे तो अच्छा लगता है कि किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, आप सब लोग बताते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए हम गेम शुरू करते हैं और उसके बाद तब तक मैं आपको ट्रैवलिंग के रूल्स भी बताती रहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वर्ड दे देना चाहती हूँ, मतलब गेम जो है शुरू कर देते हैं और उसके बाद में दो सॉन्ग के बाद में मैं राशिफल बताऊंगी एंड देन फिर दो सॉन्ग और फिर राशिफल, ठीक है, ताकि ऐसे सबके गाने भी हो जाएंगे और राशिफल भी टाइम टाइम से हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड मैंने आपको दे दिया है, वो है स, ठीक है। तो स से जल्दी से सॉन्ग लिख करके भेजिए, स से सॉन्ग, और क्योंकि मेरे पास बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, मैं उसको पहले प्ले करूंगी और फिर मैं आपको ये वाला गाना सुनाऊंगी। तो सनम तेरी कसम, ओ हो, तो बाजी मार ली है दरक्षा अंसारी ने एंड प्रीति जी आप थोड़ा सा पीछे रह गई, तो दो गाने ऑलरेडी मेरे पास हैं, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक में प्रीति जी आपके सॉन्ग को। तो आइए, जब हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ में रख लें, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हो गया एंड टिकट्स हो गई एंड साथ में आधार कार्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम हमेशा से भूल जाते हैं। कई लोग तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें याद आता है कि अरे मेरा पासपोर्ट तो घर पे ही रह गया। तो ऐसी चाहे सारी चीज़ें ना करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें सबसे पहले आप अपने बैग में या पर्स में रख लें। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय जो है कि पानी पीते रहें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, कहीं भी अगर आप निकल रहे हैं तो। एंड बाहर बहुत ज़्यादा ऑयली और ऐसा वैसा खाना खाने से बचें, कोशिश करें कि फ्रूट्स लें और कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे लगे कि हाँ ये मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो सकता है। ज़्यादा तला भुला खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गर्मी भी बहुत है इस वजह से। एंड अपने सेल फोन यानी मोबाइल फ़ोन को अच्छी तरह से चार्ज रखें, अगर कुछ ऐसी संभावनाएं हैं तो आप पावर बैंक भी साथ में रख सकते हैं। अपने सामान और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, उनके अपने पास रखें। एंड ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाना खाने या पानी पीने की वस्तुएं ना लें। एंड वेदर के अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े, दवाइयाँ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर रख लें कि जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाली अगर आपके पास कुछ कहीं जाना है तो थोड़ी थोड़ी देर चलें और फिर शरीर को स्ट्रेच ज़रूर करें, जैसे कि ट्रेन में है तो आप बहुत देर तक आराम भी कब तक करेंगे, तो थोड़ा सा चलते फिरते रहना चाहिए। एंड आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो आपकी आपातकालीन के लिए आपको सुरक्षित रख सकते हैं। एंड अपने फैमिली और आप अपने किसी भी करीबी को आपके जाने की पूरी इंफॉर्मेशन आप जरूर दे के जाएं, ताकि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आप सतर्क हो सकें, आपके घर वाले और सावधान हो सकें। तो ये थी इन सारी इंफॉर्मेशंस जो कि मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस आप सभी लोगों को अपनानी चाहिए, क्योंकि इस समय जो है ना, घूमने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है मंदिरों में, तो फिर ठंडी जगहों पर, मतलब हम लोग कभी कभी रील्स देखते हैं या फिर कभी न्यूज़ देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड भी हो रहा है, उस क्राउड के बीच में अपनी सुरक्षा रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम अभी सुनेंगे दरक्षा जी का सॉन्ग, लेकिन उसके पहले एक सॉन्ग जो कि मेरा पसंदीदा सॉन्ग था, मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा अभी आपको भी सुना दूँ। आइए इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद सुनेंगे दरक्षा का सॉन्ग और आपका गेम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहला सॉन्ग दरक्षा जी का और उसके इन दोनों सॉन्ग्स के बाद में मैं आऊँगी राशिफल और

भाई कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, कोई आइकॉन्स नहीं आ रहे हैं, कोई इमोजीज नहीं आ रहे हैं। सभी लिसनर्स से मेरी निवेदन है, जब तक आप नहीं भेजेंगे तब तक मैं गेम को स्टार्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल लेजी वाला हो गया है। तो दरक्षा जी, आपके सॉन्ग को चला दिया है, इसके बाद सीधे राशिफल। लेकिन आप सभी से मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप सभी लोग भी कुछ आइकॉन्स, कुछ ऐसे फीडबैक प्रोग्राम्स के ज़रूर भेजें। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

तो अभी मेरे पास आई थी कॉल अनु जी की, और नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं प्ले करूंगी अभी वो डेडिकेट करूंगी मैं अनु जी को, लेकिन भेजा तो कमल नयन जी ने है, बट मैं डेडिकेट करूंगी अनु जी को। ठीक है अनु, तो चलिए फटाफट चलते हैं राशिफल की ओर। और पहली राशि है मेष राशि। चंद्र राशि के अनुसार शुक्रवार 12 जून जो है पॉजिटिव, आइए जानते हैं क्या वो ये है कि आर्थिक नजरिए से आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बेहतरीन डील भी संभव है। संतान के करियर से जुड़ी किसी समस्या को लेकर किसी खास व्यक्ति से उचित सलाह और मदद मिलेगी जिससे आप राहत महसूस करेंगे और अन्य कामों पर भी बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। और लव लाइफ बता रहा है कि पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहने वाली है। युवा अपने लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाकर रखने वाले हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि अतिरिक्त कार्यभार अपने ऊपर लेने से तनाव और थकान हावी रह सकता है। योग और मेडिटेशन जरूर करें। भाग्यशाली रंग है केसरिया, इन भाग्यशाली अंक है 9। वृष राशि वालों के लिए है आज का दिन, जानिए।

ये जानते हैं क्या पॉजिटिव है कि परिवार के रखरखाव को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह भी आप ले सकते हैं जो फायदेमंद साबित होने वाली है। अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर लगाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में और ज्यादा निखार आने वाला है। लव लाइफ बता रहा है कि जीवन साथी और परिवार के लोगों का सहयोग उसके आपके मनोबल और आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि माइग्रेन और सिरदर्द की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। गरिष्ठ और तला भुना खान पान लेने से परहेज करें। भाग्यशाली रंग है सफेद एंड भाग्यशाली अंक है 2। वृष राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन है पॉजिटिव। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए सहायक रहेगी। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जनसंपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा और आप अपने अंदर अद्भुत शांति महसूस कर पाएंगे। आज परिवार के लोगों के साथ यात्रा से जुड़ा कोई प्रोग्राम बन सकता है। आज लव लाइफ बता रहा है कि मित्रों से मेल मुलाकात तनाव भरे दिल से राहत देगी। परिवार के साथ डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य बता रहा है कि गले में इन्फेक्शन, खांसी या जुखाम जैसी परेशानी हो सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 9। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन है, आइए जानते हैं कैसा। घर में संबंधियों का आगमन होगा, प्रसन्नता के साथ रिश्तों को निभाएं। कामों को नियमबद्ध तरीके से करना लाभकारी साबित हो सकता है। आज फाइनेंस से जुड़ा अटका हुआ कोई भी काम आज पूरा हो सकता है। लव लाइफ आपका बता रहा है कि वैवाहिक संबंध मधुर होंगे। घर के सदस्यों के साथ बातचीत और मनोरंजन में भी अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य बता रहा है कि मौजूदा मौसम से अपना बचाव रखें, व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। तनाव और सिरदर्द जैसी स्थिति रह सकती है। भाग्यशाली रंग है नीला एंड भाग्यशाली अंक है 4। तो आइए फिर हम लेंगे एक ब्रेक यहाँ पर और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से बाकी बची राशियों को सुनने के लिए। तो मैं फिर से एक देने वाली हूँ वर्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ गई हैं आपकी आज क्षमता एंड बाकी राशि फल जो बचे हैं आइए उसको बता देते हैं और उसके बाद में हम आपको ले चलेंगे फिर से गेम की ओर। तो भाई गेम की ओर तो चलेंगे लेकिन एक सॉन्ग हम बजाएंगे सबलू जी का, ठीक है। तो आइए कुंभ राशि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन है कि आज दिन की शुरुआत बहुत सकारात्मक रहने वाली है। मन मुताबिक तरीके से काम पूरे हो जाएंगे। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी आप समय बिताने वाले हैं। लव लाइफ आपको बता रहा है कि पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहने वाला है। प्रेम संबंध को भी थोड़ा सा समय दें क्योंकि कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आपकी दूरी अपनी दूरी को न बनाएं और दूरी कम करें। स्वास्थ्य बता रहा है कि कमर दर्द की समस्या को लापरवाही में ना लें, तुरंत इलाज करवाएं, व्यायाम भी जरूरी है उस पर ध्यान दें। भाग्यशाली रंग है लाल एंड भाग्यशाली अंक है 3। कन्या राशि वालों के लिए है नया क्या आइए जानते हैं। सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना आपकी पहचान बढ़ाएगा। लोकप्रियता के साथ साथ आपका जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ लाभदायक मुलाकात हो सकती है। लव लाइफ बता रहा है कि आप अपनी बातें जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें, इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य बता रहा है कि मौसम बदलते मौसम की वजह से गले में दर्द, खांसी या जुकाम जैसी स्थिति बन सकती है। भाग्यशाली रंग

लाइव आपका बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है, प्रेम के व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय खराब। मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान रखें। माइग्रेन और सर्वाइकल जैसी परेशानी आपको हो सकती है। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज एंड भाग्यशाली अंक है 2 तुला राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए जानते हैं क्या लंबे समय से चल आ रही समस्या का समाधान आज होने वाला है। अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। लव लाइफ बता रहा है कि व्यवहारिक संबंध मधुर होंगे। प्रेमी प्रेमिका का घूमने फिरने या डिनर आदि का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य बता रहा है कि महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहे। नसों में खिंचाव जैसी समस्या परेशान कर सकती है। भाग्यशाली रंग है आसमानी एंड भाग्यशाली अंक है 8। तो धनु मकर कुंभ एंड मीन मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दूं ये गाना जो कि दैया दैया है सबू जी ने लिख के भेजा है, और इसको सुन लेते हैं और उसके बाद लखनऊ का आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट वर्ड मैं देने जा रही हूँ आपको नेक्स्ट वर्ड है र। जल्दी से सॉन्ग लिख करके भेजें और फिर एंजॉय करें।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समताओ और गेम के बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हूँ। तो लिखा है क, मैंने दिया था तो लिखा है कजरारे कजरारे। ओके, अभी तो लिखा था कि कौन दिशा में, फिर लिखा है कजरारे कजरारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कजरारे ही चला दूंगी। लेकिन उसके पहले धनु, मकर और कुंभ मीन राशि बची है, फटाफट जान लेते हैं कि कौन सी क्या है। कुछ उपलब्धियां आपके सामने आ सकती हैं, उन पर अमल करने से बड़े बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों की सलाह का मार्गदर्शन जरूर उनका ध्यान दें। लव लाइफ बता रहा है कि पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी, अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात सारे तनाव को दूर कर देगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि मौजूदा मौसम के रहते शरीर में थकान हो सकती है। भाग्यशाली रंग है हरा एंड भाग्यशाली अंक है 5 धनु राशि वालों। मकर राशि वालों के लिए कि कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एंड संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम भी आपको मिलने वाला है। लव लाइफ बता रहा है कि वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है, प्रेम संबंध स्थापित होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका करियर और आपकी पढ़ाई पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। स्वास्थ्य बता रहा है कि ज़्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपकी सेहत पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, ज़्यादा गुस्सा ना करें। भाग्यशाली रंग है आसमानी एंड भाग्यशाली अंक है 7 मकर राशि वालों। कुंभ राशि वालों के लिए कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ सुखद अनुभव भी हो सकता है। किसी धार्मिक आयोजन में जाकर आप सुकून और शांति महसूस करेंगे, जिससे आपकी चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य बता रहा है, लव लाइफ बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी कुछ रह सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बता रहा है कि मौजूदा मौसम की वजह से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। भाग्यशाली रंग है पीला एंड भाग्यशाली अंक है 6। लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि वालों के लिए अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस अनुकूलता का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की सोच बनाकर रखें आज आप। एंड लव लाइफ बता रहा है कि सामंजस्य बनाकर रखना घर के माहौल को सुखमय बनाएगा। विवाहेतर संबंधी संबंधों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। एंड आज का दिन आपके लिए अच्छा जाने वाला है। गलत खान पान की वजह से छाती में भारीपन महसूस हो सकता है, अपनी दिनचर्या संयमित रखें। भाग्यशाली रंग है केसरिया एंड भाग्यशाली अंक है 4। तो भाई बहुत ही अच्छा वाला जो कि आज का प्रोग्राम रहा, ऐसा लिख रही हैं हमारी जो कि है आशु जी। तो आशु जी, जाते जाते चलिए हम आपको दो ही लाइन सही लेकिन सुना के जरूर जाएंगे इस गाने को, क्योंकि टाइम हमारा पूरा का पूरा हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए जाते जाते ही सही लेकिन हम आपको गाना सुना के जाएंगे और आऊंगी आपसे चाचा बाय करने मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के अंदर।

ओके लिसनर्स, तो भाई टाइम हो गया है आपसे टाटा बाय-बाय करने का, और जो लास्ट सॉन्ग था वो भी आशु जी का था, एंड स्टार्ट भी आशु जी के ही सॉन्ग से हम लोगों ने किया था। तो मुझे दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम सॉरी सुन सहेली में सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
5: टीचर, मैं पूछूं क्या?
4: बिल्कुल।
5: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?
6: Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी आरजे समता आ गई हूँ गांव की गूंज की टीम के साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के माध्यम से आप सभी से एक बेहद खास बात और यात्रा साझा करने। आज हम सभी, यानी मैं और गांव की पूरी टीम, यानी गांव की गूंज की पूरी टीम आपको ले चलेंगी एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मानविंग लोंग की ओर। साथ ही आपके दिल यानी गोंडा के उस पन्ने को फिर से खोलेंगे जो कभी देश के सबसे गंदे शहर के रूप में दर्ज था, और फिर कैसे यहां के सभी लोगों ने आत्म मंथन और संकल्प से इसे यूपी का सबसे साफ टॉप 5 शहरों में बनाया।
12: हाँ समता, यही नहीं, आसपास के गांव जैसे कर्नल गंज, मनकापुर, नौबस्ता, बालपुर, कटरा, पड़री कृपाल, तिवारी पुरवा, पंडित पुरवा, केशोपुर पहाड़वा, इमिलिया आदि की जनता ने भी इस कार्य में भरपूर योगदान दिया है।
13: हाँ किरण दी और समता दी, सही कहा आपने, पर आज ये गीता दी कहाँ रह गईं? शायद पड़ोसन सरला और विमला को सफाई की हिदायत देने में रह गई होंगी। मैं देख कर आती हूँ, तब तक आप हम सबको एक गीत सुना दीजिए जिसके बोल हैं, शिव की धनुषिया को तोड़ दियो रे दशरथ के ललनवा।
11: हाँ भाई, अयोध्या की ओर चलते हैं और अवध की माटी से जुड़ते हैं, राम जी का और सीता जी का स्वयंवर याद करते हैं।
12: हाँ हाँ बिल्कुल, तो लो सुनो ये सॉन्ग।

0: कहा?
1: अरे कहाँ रह गई गीता दीदी भाई?
2: अरे हम सरलवा और बिमला का समझावत रहे कि गंदगी जौन है कचरा पेटी में डारा करो, बस सब सुनते नहीं।
1: तो आपने उन्हें एशिया के सबसे अच्छे गांव मावली नोंग के बारे में क्यों नहीं बताया?
2: ये कौन सी जगह है? अरे तनिक बढ़िया से बताओ।
3: मावलिंग नोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसे भगवान का बगीचा भी कहते हैं।
4: पर समता दी, इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव क्यों कहते हैं?
3: क्योंकि जया, यहां एक भी तुम्हें कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ये गांव मावलिंग नोंग हिमालय की अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है, साथ ही पर्यटकों के आकर्षक केंद्र भी बना है। ऐसा क्यों है ये किरण दी बताएंगी, पर बाकी बातें मैं बता देती हूँ। मावलिंग नोंग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, एक शांत और सुंदर स्थान है जिसका वातावरण किसी दिव्य उद्यान जैसा मनमोहक है। ये गांव और सपाटे के लिए आकर्षक तत्वों से अधिक प्रचलित है।
2: हाँ समता, अब हमों का याद आवा, पिछले साल पड़ोस की जो मंजू है वो अपने पति के साथ वही गाँव में घूमे गयी रहा है। महुरिया गांव की जो मंजू देवी है एक प्रगतिशील किसान की पत्नी है। वो बतावत रही कि मावली नो मा सड़क पर एक को पत्ता ना पई हो, अतनी सफाई रहा था, सबके द्वार प्राकृतिक रूप वाले हैं जानो कि नहीं, और जो लगा थे सड़क मट्टी से लीप दी गई हो, बहुत सुंदर गांव होए।
1: हाँ गीता जी, मावली नोंग में आस्था के प्रतीक भव्य गिरजाघर से लेकर सादगी से भरी आरामदायक जीवन शैली को दर्शाने वाले घर तक हैं।
4: हाँ दीदी, मैंने भी पढ़ा है कि यहाँ प्रकृति का भरपूर आनंद मिलता है, जिसका उदाहरण है अद्भुत लिविंग रूट ब्रिज, जहाँ प्राचीन वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पीढ़ियों से निर्मित एक इंजीनियरिंग चमत्कार को सजीव रूप दिया गया है।
1: हाँ, मावल्या नाग का आकर्षण केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, ये सच्ची मेहमान नवाजी और एक सरल शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाने का अवसर प्रदान करता है। ये गांव उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। पता है जया, डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी मिला है।
2: अरे ये सब तो ठीक है, अतना बतिया लिए हो, अब हम कहीं तो तनिक गौना ही हुई जाए। ए किरण, कही दो बलमुआ से मोहे लई जाए, ये गाना हमें बहुत सुनने में नीक लागत है। तब तक हम सबका ये बताए दी कि एशिया की सबसे साफ सुंदर गांव मावली नोंग है।
5: अरे मोहे लई

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गांव की गूंज, वो गूंज जो मिट्टी से उठती है, वो आवाज जो हमें हमारे जड़ों की याद दिलाती है। आज हमारी टीम एशिया के सबसे स्वच्छ गांव की ओर जाने को तैयार है। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव मानविंगलोंग। जया, अगले हफ्ते की टिकट करा दी है ना सबकी?
1: हाँ समता दी, वैसे भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, वहाँ के गिरिजा घरों की रौनक तो देखने लायक होगी। बस गीता दी और सरला दी का टिकट अभी वेटिंग में है।
2: अरे बढ़िया है, दोनों जनी अब ज्ञान न दे हैं, बहुत बोलत रही।
3: छोटकी ननदिया जहर बोले राजा,

0: हम तो भाई बहुत परेशान है। पूछो का है? गोंडा और इके आसपास के गांवन का लेके बहुत गंदगी रहत है।
1: हाँ दी, मानविन लोग में सड़के कूड़े नहीं फूलों से सजती हैं। हर घर के बाहर डस्टबिन होता है, वो भी बांस का। यहाँ प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता संस्कार में है, मजबूरी में नहीं। यहाँ के बच्चे सबसे पहले क ख ग के साथ सीखते हैं साफ रखना, सहेजना और सम्मान करना।
2: मतलब स्वच्छता प्लस साक्षरता, यानी मजबूत गांव। मालवी नोंग हमें सिखाता है कि स्वच्छता और साक्षरता साथ साथ चलती है। जब गांव पढ़ा लिखा होता है तो वो गंदगी को आदत नहीं समस्या समझता है। यही वजह है कि ये गांव छोटा है, परंतु यहाँ की सोच बहुत बड़ी है।
3: अच्छा सुनो सुनो सुनो सभी लोग, अब लौटते हैं अपने गोंडा की ओर। और अब जरा आंखें बंद करें और सोचें। क्या सोचें? गांव के बारे में। देखिए, शुकुलपुरवा की गलियां, नौबस्ता की सुबह, नवाबगंज के खेत, बालपुर कटरा बाजार की हलचल, मोहरिया पुरैना की मिट्टी की खुशबू, इसी तरह से रोहिणपुरवा, देहरास, रामचेलापुर जिसे अब रामचेरापुर बुलाते हैं, भाई साहा, पांडेपुरवा, पंडितपुरवा, सिसई, खमरौनी, मधईपुर, मछली गांव, दुल्हिन दुल्हापुर, खुरहसा, वजीरगंज, तरबगंज आदि की हरियाली। अरे भाई, मेहनती लोग और संस्कार और अपनापन, ये सब तो हमारे इन सभी गांव में भी है। बस अगर कमी है तो व्यवस्थित स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी की।
0: अच्छा बत कही बहुत जरूरी है, लेकिन तनिक कुछ गौनई हुई जाए तो उनका हर्ज है। चलो सोहर गा लिया जाए। बेटी मेरी सुकुमार जी,

0: सच कहें तो गांव और शहर अलग नहीं है, अंतर बस इतना है कि गांव में हरियाली ज्यादा है, हवा ज्यादा है, साफ है, रिश्ते ज्यादा सच्चे हैं, और शहर साफ सड़कों, कूड़ा प्रबंधन, जिम्मेदार नागरिकों की सीख गांव से ले ले और गांव तकनीक शिक्षा योजनाओं की सीख शहर से ले ले तो फर्क अपने आप मिट जाएगा।
1: तो ठीक है, युवा गांव की ओर लौटे, आज फिर इसकी जरूरत है। खेतों को सम्मान मिले, स्वच्छता को संस्कार बनाया जाए और साक्षरता को हथियार। शहर में रहकर गांव को मत भूलिए और गांव में रहकर खुद को पीछे मत समझो।
2: जिस गांव की गलियां साफ होती हैं, वहां सोच भी साफ होती है और जहां सोच साफ होती है वहीं भविष्य उज्जवल होता है।
0: तो श्रोताओं, साथियों, आज की गांव की गूंज में हमने सीखा मानवीर लोंग से प्रेरणा, गोंडा से उम्मीद और अपने गांव का भविष्य। तो आइए अपने गांव और शहर को एक जैसा सुंदर, एक जैसा स्वच्छ और एक जैसा सशक्त बनाएं। मैं हूं आपकी अपनी आज समता। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी स्वर कोकिला किरण पांडे यानी हमारी प्यारी किरण दी के साथ में, आपकी प्यारी गीता दीदी और समझदार जया के साथ एक नई गांव की गूंज के नए एपिसोड के साथ।
3: पर समता दी, एक गीत सुनते चले तो मजा आ जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। साथियों, गांव की गूंज फिर एक सफर पर चलेगी अगली बार। जाते जाते मैं ये गीत सही

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपके हेल्थ की बातें, आपके अपनों के हेल्थ की बातें। अब देखिए, हेल्थ की बातें तो हम लोग ढेर सारी करते हैं, डाइट पर बात करते हैं, प्रेगनेंसी पर बात करते हैं, कैंसर पर बात करते हैं और ना जाने कितनी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं है। लेकिन आज हम बात थोड़ी सी अलग करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके दिल की। अरे, कोई लव स्टोरी नहीं सुनाने जा रही और ना ही मैं प्यार मोहब्बत की बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने वाली हूँ हार्ट अटैक की। जी हाँ, आपका जानी दुश्मन, आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन, हार्ट अटैक। अब देखिए, हार्ट अटैक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अरे ज़रूर नहीं भाई, आपने रिसेंटली कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि इससे होने वाली मौत भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वेल, आपने सुना है कि नहीं, या आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, ये सब आके आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भैया हमें आपके चैट्स का, आपके रिप्लाईज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई आज का विषय कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। हाँ, आपको पता होगा, लेकिन क्या यार, हमारे पड़ोस के एक अंकल को हार्ट अटैक आ गया था। अरे वो आंटी है ना, अरे वही आंटी जो सबकी चुगलियां करती है, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, बताओ हाल। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे होता है, कैसे बचें, और अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी मुझे नहीं लगता कि आपके पास होगी। वेल, इन सारी चीज़ों के लिए हम हैं, यानी आपके अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, जो कि आपको छोटी छोटी से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में आपको अवेयर करता है, आपको जागरूक करता है। तो भाई देखिए, आज हम बात हार्ट अटैक की कर रहे हैं। तो देखिए, हार्ट अटैक, जिसे मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जब दिल, यानी कि हमारा हार्ट की जो मांसपेशियों, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बता दे रही हूँ भाई, जब भी मैं दिल की बात करूँगी ना, तो वो प्यार मोहब्बत वाले दिल नहीं, ये हम असली वाले दिल की बात कर रहे हैं, ये इमोजी वाले दिल की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो देखिए, ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जब दिल, यानी कि हमारा हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं, उस तक खून का जो फ्लो होता है वो अचानक से कम या पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझें तो हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में खून भेजता है, लेकिन दिल को भी खुद जिंदा रहने के लिए खून और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो उसे कोरोनरी आर्टरीज यानी कि दिल की नसों के जरिए मिलता है। जब इन नसों के कारण उसमें ब्लॉकेज यानी कि रुकावट आ जाती है, तो दिल के किसी हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाता है। यही ब्लॉकेज अक्सर फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर दूसरे पदार्थों जमा होने से बनती है। धीरे धीरे ये प्लेक नसों को संकरा कर देती है, और अगर ये अचानक से फट जाए तो वहाँ खून का थक्का, जिसे हम क्लॉट कहते हैं, वो भी बन जाता है। यही थक्का खून के फ्लो को रोक देता है और तब आता है हार्ट अटैक। जब दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो डैमेज होने लगती हैं या फिर मरने लगती हैं। यही असली खतरा होता है, क्योंकि दिल जितना ज़्यादा डैमेज होगा, इंसान की जान को उतना ही खतरा होगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबे समय की समस्या होती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब ये समस्या कई टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, यानी ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाना, एक्सरसाइज की कमी होना, स्मोकिंग करना, ज़्यादा तनाव लेना, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, ये सब मिलकर धीरे धीरे नसों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई, जिस दिन ये सारे नुकसान इकट्ठे हो जाते हैं, तब आता है आपको हार्ट अटैक। अब देखिए, हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब है, जैसे इसके लक्षण दिखें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आपको एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। जितनी जल्दी इलाज मिलेगा, दिल को उतना ही कम नुकसान होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो हार्ट अटैक तब होता है जब दिल तक खून पहुंचने वाली नस अचानक से ब्लॉक हो जाती है, और दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये एक जानलेवा स्थिति है, इसलिए इसके बारे में जागरूक रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि हार्ट अटैक होता क्या है, लेकिन जब तक भाई हमें ये ना पता चले कि ओह माय गॉड, इंडिया में इतने लोगों को हार्ट अटैक होता है, तब तक हम कहीं ना कहीं उसके बारे में सीरियस होते ही नहीं है। यही कंडीशन कहीं ना कहीं कोविड टाइम में भी हमें नज़र आया था कि जब तक कोरोना के खतरा, जो कोरोना के मरीज थे वो बढ़ते ही नहीं जा रहे थे, मरने की संख्या बढ़ती नहीं जा रही थी और लॉकडाउन नहीं लग गया, तब तक हम उसके बारे में इतने सतर्क कभी हुए ही नहीं। वेल, हार्ट अटैक कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको ये मौका नहीं देती कि भैया सोचो या फिर लॉकडाउन लगाओ या फिर दवाई खाओ, ये डायरेक्ट इंसान को उड़ा ले जाती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इससे पहले हम समझते हैं कि भारत में कितने लोगों को हार्ट अटैक होता है। देखिए, भारत में हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मृत्यु का एक प्रमुख कारण है और इसके हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का लगभग 20% का योगदान देती है। 2014 से लेकर के 2019 के बीच में इसके जो मामले हैं उसमें 50% से भी ज़्यादा वृद्धि आई है, जिसमें लगभग 25% हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को होता है। हृदय रोग प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है, जो अक्सर पश्चिमी देशों की तुलना में 5 से 10 वर्ष पहले होते हैं। अब देखिए, ये जो मौतें हो रही है ना, जिसकी जिसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। देखिए, भारत में होने वाले प्रत्येक 4 मौतों में से एक मौत का जो हम कहें रीज़न होता है वो हार्ट से ही रिलेटेड होता है और उसमें से एक हार्ट अटैक भी काउंट होता है। हाँ, पश्चिमी देशों में अक्सर हार्ट अटैक या फिर हृदय संबंधी बीमारी 70 वर्ष की आयु के बाद होती है, वहीं भारत में ये युवावस्था में ही ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। भारत में पहली बार दिल का दौरा पड़ने की औसत आयु 53 ईयर्स थी, लेकिन आज 30 से 40 वर्ष की आयु के लोग भी इसके मामले में यानी कि इसके केसेस में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि भाई हार्ट अटैक क्या होता है और कितनों को होता है, भारत में इसकी क्या कंडीशन है और ये कितना कॉमन है। अब आपने ये तो जान लिया कि ये कितना कॉमन है और क्या है, लेकिन भाई ये तो जानना है ना कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसका क्या इसका क्योर है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या है और कितना इसका रिस्क है, ये सब जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या है या फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो आप जल्दी से चैट बॉक्स में आइए और हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन जब आप देखिए जब हम कोई क्लास लेते हैं या कोई चीज़ समझ रहे होते हैं, देखिए दिल से समझने की बात कह रही हूँ मैं, फॉर्मेलिटी नहीं, तो आपके मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर आती है, तो उसी कन्फ्यूजन को लेकर आइए चैट बॉक्स में, हम बातें करेंगे इस पर और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊँगी और आपको इस इन्फॉर्मेशन की और आपको इस विषय की और भी जानकारियाँ दूंगी।
2: तुमसा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक लिस्टनर, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम जो कि है स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं दिल की, यानी कि दिल के दौरे, हार्ट अटैक की। अब देखिए, ये जो हार्ट अटैक है ये क्या होता है ये तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। देखिए, हार्ट अटैक के सिम्टम्स यानी कि जो उसके लक्षण हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये लक्षण अचानक भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी शुरू हो सकते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है सीने में दर्द या फिर दबाव। ये दर्द ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सीने पर एक भारी वजन रख दिया हो या अंदर कुछ कस रहा हो। कई लोग इसे जलन या फिर टाइटनेस भी बताते हैं, लेकिन देखिए, इसे हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है ज़्यादा काम कर लिया है, या हो सकता है टाइट कपड़े पहने हैं, या

0: कोई भी रीजन हम बस अपने ही मन में गढ़ लेते हैं और उसको हम सीरियस कभी लेते ही नहीं है। अब ये जो दर्द होता है, ये दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता है बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे बायां हाथ, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़ा या फिर पीठ। खासकर बाएं हाथ में इसका दर्द जाना हार्ट अटैक का एक बहुत ही क्लासिक साइन माना जाता है। दूसरा बड़ा सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक से सांस नहीं आ रही है, भले ही आप कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे बैठे ऐसा लग सकता है कि सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये सिम्टम अकेले भी आ सकते हैं या फिर सीने के दर्द के साथ भी आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा सिम्टम है इसका ठंडा पसीना आना। अचानक से शरीर में चिपचिपा और ठंडा पसीना आने लगता है, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है और ये सामान्य गर्मी वाले पसीना नहीं होता दोस्तों, ये थोड़ा उससे अलग होता है। जब ये आता है तो आपको गर्मी, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पसीना आ रहा है, या हो सकता है कमरे में इतनी गर्मी है नहीं जितना आपको पसीना आ रहा है और ये पसीना आपको गर्म नहीं बल्कि ठंडा महसूस कराता है। इसके अलावा लोगों को मतली या फिर जिसे हम आम भाषा में उल्टी कहते हैं, उल्टी जैसा भी आपको लग सकता है, पेट में गड़बड़ी महसूस हो सकती है। कुछ लोग इसे गैस या फिर एसिडिटी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन ये हार्ट अटैक का सिम्टम भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है चक्कर आना या फिर हल्का महसूस करना। ऐसा लग सकता है कि आप बेहोश हो सकते हैं या बैलेंस बिगड़ रहा है। इसके साथ साथ अचानक से कमजोरी या फिर थकान भी महसूस हो सकती है और खासकर बिना किसी कारण के। अब देखिए बिना किसी कारण के थकान, अब देखिए आजकल के जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग अगर सुबह सो के भी उठते हैं तो भी हमें थकान होती है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी हमें थकान हो रही है, अगर हम बेड पे बस लेटे हैं तो भी हमें थकान हो रही है। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बैड हेल्थ की एक कह सकते हैं एक साइन होता है जिससे आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि अपने हाथ पैर ज़रूर चलाने चाहिए। अब हाथ पैर चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारने लग जाएं, हाथ पैर चलाने का मतलब है कि आप एक्सरसाइज करने लग जाएं। अब एक ज़रूरी बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हर व्यक्ति में सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते, खासकर महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण थोड़े अलग और सटल होते हैं। जैसे उन्हें सीने में तेज दर्द की बजाय सिर्फ थकान हो सकती है, सांस फूलना हो सकता है, गर्दन और जबड़े में दर्द हो सकता है या फिर हल्की सी असहजता महसूस हो सकती है। इसी वजह से कई बार महिलाओं में हार्ट अटैक को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले वार्निंग साइंस भी मिलते हैं, जैसे बार बार हल्का सा सीने में दर्द, चलने पर सांस फूलना, जल्दी थक जाना, उल्टी आना या फिर ऐसा लगे कि अब बस हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम गिर जाएंगे। लेकिन कई बार ये बिना किसी वार्निंग के भी अचानक हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ये सिम्टम दिख रहे हैं, खासकर सीने में दर्द, सांस में दिक्कत, पसीना और कमजोरी, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे चल के ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और उसके बाद डॉक्टर्स भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स शरीर के कई हिस्सों में महसूस हो सकता है, जैसे सीना, हाथ, सांस, पेट और पूरे शरीर की कमजोरी के रूप में। इन्हें जल्दी पहचानना ही जान बचाने का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका होता है। आप किसी भी डॉक्टर से इसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि जब आपको सिम्टम्स नज़र आए तो उसको बिल्कुल भी टाले नहीं, क्योंकि वही सिम्टम्स आगे चल के बड़े हो जाते हैं और वो फिर कंट्रोल में नहीं आते हैं। अब देखिए हमने सिम्टम्स की भी बात कर ली, लेकिन भाई आखिर इस हार्ट अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया है और वो इंसान बच भी जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए हार्ट अटैक का इम्पैक्ट यानी कि जो उसका असर होता है वो सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ये पूरे शरीर, दिमाग और इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इसे समझना ज़रूरी है ताकि हम इसकी सीरियसनेस को सच में समझ सकें। सबसे पहला और सबसे सीधा असर होता है दिल की मांसपेशियों पर। देखिए, जब हार्ट अटैक होता है तो दिल के जिस हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाता वो हिस्सा डैमेज हो जाता है या फिर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि दिल पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रह जाता और उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। इसे आगे चलकर हार्ट फेलियर का भी खतरा बढ़ जाता है, जिससे दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता है। दूसरा असर होता है पूरे शरीर की फंक्शनिंग पर, क्योंकि दिल ही खून और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजता है और जब वो ही सही से काम नहीं करेगा तो बाकी अंग जैसे दिमाग, किडनी, लंग्स भी इससे प्रभावित होते हैं। इंसान को जल्दी थकान, कमजोरी और सांस फूलने जैसी दिक्कत उनकी जिंदगी में महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट की। देखिए, हार्ट अटैक के बाद कई लोग डर, चिंता, एंजाइटी से गुजरने लगते हैं। उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि कहीं फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अचानक से बदल जाती है, जैसे खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन, दवाइयाँ और कई सारी फिजिकल एक्टिविटी में कमी। उन्हें डॉक्टर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन बता देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अब नहीं जाना है, ये पहनना है और न जाने कितनी सारी चीज़ें, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को होने के बाद। हार्ट अटैक का असर इंसान की लाइफस्टाइल और डेली रूटीन पर भी पड़ता है। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे उन्हें करने में अब ज़्यादा मेहनत लगने लग जाएगी आपको। डॉक्टर अक्सर डाइट बदलने, एक्सरसाइज करने, स्मोकिंग छोड़ने और स्ट्रेस कम करने की सलाह देते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी का पैटर्न पूरी तरीके से बदलना पड़ता है। कुछ केसेस में हार्ट अटैक के बाद अनियमित धड़कन की समस्या भी हो सकती है, जो आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक की समस्याएँ भी आ सकती हैं। सबसे गंभीर इम्पैक्ट ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो हार्ट अटैक जानलेवा भी हो सकता है और इसीलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है दोस्तों। देखिए, अगर सही समय पर आपको इलाज मिल जाए या ऐसे व्यक्ति को इलाज मिल जाए जिसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इंसान सही हो सकता है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करे, डॉक्टर की पूरी सलाह माने, तो वो एक अच्छी और नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है। इसीलिए नियमित दवाइयाँ, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा दोस्तों, यही होता है। देखिए, जब हमें देखिए हम इंडियंस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको वो हर घर में देखने को मिल जाएगी, वो है अपने मन की चलाना। अब देखिए, अपने मन की चलाना तो हमारे घर के सभी लोग, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी हो, जैसे ही हमें ऐसा लगता है। अब देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको बहुत तेज़ बुखार है और आपको डॉक्टर ने 5 खुराक दवाई दी है और पहली ही खुराक खा के आपको आराम मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे कि जो बच्चे 4 खुराक हैं आप उनको सामने रख देंगे और कहेंगे हाँ अब तो ठीक हो ही गए, अब क्या ही ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं वो एक पूरी कोर्स होती है, आपको वो दवाइयाँ जरूर खानी होती है, अपनी मनमर्जियाँ नहीं चलानी होती है। तो इन सारी आदतों को छोड़ें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। ये थी बात सिम्टम्स की और इसके इम्पैक्ट की। लेकिन अब इससे बचना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और बचने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं। देखिए, डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन आपको कुछ चीज़ें खुद से भी करनी होती है जिससे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो। साथ ही साथ अगर किसी को आपके सामने हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800 8919 144416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 144416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

के पांच बजते ही बजते हमारे पेट को जोर से बाहर के खाने की जो तलब लगने लग जाती है कि भाई जल्दी से कुछ ना कुछ खाएं। तो भाई देख रहे हैं आप, ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम सब के खाने की रूटीन की बात मैं कर रही हूँ कि भाई हमें तो बाहर का फूड चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। जी हाँ, पूरी जिंदगी इससे दांव पे लग रही है क्योंकि आप हेल्दी खाते ही नहीं है। जो हम रोज खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता या बिगाड़ता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, घी, तला भुना, जंक फूड कम खाएं। इसके बजाय आप फल, हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें और नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, साथ ही साथ इसका आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में ही आपको नमक यानी कि सॉल्ट और चीनी, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं, इसका इंटेक भी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 मिनट तक हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या साइकिलिंग करनी बहुत जरूरी है। इससे दिल मजबूत रहता है, वजन कंट्रोल रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बीमारी की या सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका फायदा कुछ नहीं है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रही हूँ स्मोकिंग और अल्कोहल की। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सिगरेट दिल के नसों को नुकसान पहुंचाती है और ब्लॉकेज का एक खतरा बन जाता है। अल्कोहल भी लिमिट में लेना चाहिए या फिर उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस जैसे दाल चावल हो गया है, यानी कि हमें सुबह भी लेना है, शाम को भी चाहिए और रात में भी अगर थोड़ा सा मिल जाता ना तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती। लेकिन दोस्तों, ये जो स्ट्रेस है ना, जिसे हम नमक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दाल चावल हो गया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा ला सकता है। देखिए, ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। जैसे आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, म्यूज़िक सुनना या वो काम करना जो आपको पसंद हो। अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, वैसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजी महसूस हो रहा है तो अपने आप को रेस्ट देना, अपने दिल को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वज़न यानी कि वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वज़न या फिर ओबेसिटी दिल पर एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क भी इससे बढ़ सकता है। इसीलिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से अपने वज़न को मेंटेन करिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल है और यही चीज़ें धीरे धीरे करके हार्ट अटैक का कारण बन जाती हैं। इसीलिए समय समय पर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारी आपकी सबकी प्रिय दोस्त का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ भाई, मैं नींद की बात कर रही हूँ, जो हमें आते जाते, उठते बैठते कहीं ना कहीं आ ही जाती है, लेकिन तब नहीं आती जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि रात को। देखिए, नींद को भी इग्नोर बिल्कुल ना करिए। 7 से 8 घंटे हमें अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन देखते देखते अपनी नींद को उड़ा देना, ये तो भाई अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। कम नींद या फिर ख़राब स्लीप पैटर्न भी आपके हेल्थ को, आपके स्पेशली हार्ट हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हार्ट डिजीज़ हो रखी है या फिर वो उससे परेशान है तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आपको और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं और हार्ट प्रॉब्लम इसमें जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो हार्ट अटैक से बचाव का मतलब है हेल्दी खाना, रोज एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम, स्मोकिंग से दूर और रेगुलर चेकअप करवाना। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। अब देखिए, ये तो हमने बात की कि आगे फ्यूचर में ना हो इसलिए, लेकिन व्हाट इफ आपके सामने ही किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम लोग हार्ट अटैक को जानते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम को जानते हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ों को जान चुके हैं, लेकिन भाई अगर तुरंत हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस समय घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जल्दी से और सही एक्शन लेना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। आपकी तुरंत मदद किसी

की जान भी बचा सकती है और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो देखिए, पुण्य कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से भगवान खुश हो जाए, हमारी मन्नत पूरी कर दे। तो देखिए, किसी की जान बचाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो देखिए, सबसे पहले सिम्टम्स को पहचानिए। अगर व्यक्ति के सीने में तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसे सीरियस लीजिए। ये सोचकर मत टालिए कि शायद एसिडिटी या फिर गैस हो। आपको क्या करना है उस वक्त, इसको मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स में बताती हूँ। देखिए, स्टेप 1, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए और एम्बुलेंस बुलाने के लिए आपको भारत में 108 या फिर 112 पर कॉल करना चाहिए। खुद से अस्पताल ले जाने के बजाय आपको एम्बुलेंस बुलाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मेडिकल सपोर्ट मौजूद होता है। उसके बाद स्टेप 2, व्यक्ति को आराम से बिठाइए, उसे ज़मीन या फिर कुर्सी पर सही से बिठा दीजिए कि वो थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर उसने बंद कपड़े या टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसे थोड़ा सा लूज़ करिए, उसके ऊपरी शरीर को थोड़ा सा उठा हुआ रखिए, यानी कि सेमी रिक्लाइंड पोजीशन पे रखिए। उसे लेटाने के बजाय उसे टिकाकर बिठाना, सांस लेने में उसको और भी ज़्यादा ईजी महसूस होता है और भी ज़्यादा उससे हेल्प महसूस होती है। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। अगर टाइट कपड़े पहने हैं तो उसे ढीला कर दीजिए। उस टाइम पे टाइट कपड़े बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इफ़ उन्होंने कोई जैकेट वगैरह पहन रखी है तो वो भी आपको तुरंत निकाल देनी चाहिए, क्योंकि फैशन से ज़्यादा ज़रूरी तो भाई हमारी हेल्थ ही है। उन्हें ढीला और इजी महसूस करवाइए, उन्हें फ्री महसूस करवाइए। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आता है एस्प्रिन देना। एस्प्रिन अगर आपके पास अवेलेबल हो और पेशेंट को उससे एलर्जी ना हो तो। अगर आपके पास एस्प्रिन है और व्यक्ति को उससे एलर्जी नहीं है तो उसे एक गोली चबाने के लिए दे दें, इससे खून पतला हो जाता है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो बिना सोचे समझे कोई भी दवाई उनको ना दें। स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्टेप 5 है कि उसे शांत रखिए। व्यक्ति को पैनिक बिल्कुल नहीं होने देना है और अगर वो घबरा रहा है तो उसे थोड़ा सा इजी महसूस कराइए, उससे आराम से बात करिए, भरोसा दिलाइए कि वो बिल्कुल सेफ है। स्टेप 5 है कि व्यक्ति को थोड़ा सा शांत करिए, पैनिक से बचाइए और उन्हें इजी फील कराइए। उन्हें ये बताइए कि वो बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी बढ़ जाती है जब व्यक्ति घबराने और डरने लगता है। और स्टेप 6 ये है कि अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए, अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और सांस नहीं ले पाता है तो तुरंत उसे CPR दें। CPR कैसे देते हैं, देखिए ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से और इसके बेसिक आइडिया आपको मैं दे देती हूँ। देखिए, पहले तो व्यक्ति को सीधा लेटाइए, उसके सीनों के बीच में दोनों हाथ को रखकर तेज और लगातार दबाव बनाइए, लगभग 100 से 120 बार प्रति मिनट। अगर आप ट्रेंड हैं तो उन्हें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दे सकते हैं। CPR तब तक करते रहिए जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए और व्यक्ति में कोई मूवमेंट ना दिखाई दे। अब बढ़ते हैं स्टेप 7 की तरफ। स्टेप 7 है अकेला ना छोड़ना। देखिए, व्यक्ति को आपको अकेले नहीं छोड़ना है जब तक उसे सही, यानी कि एक मेडिकल एक्सपर्ट की मदद नहीं मिल जाती है। आपको तब तक उसके साथ रहना है और उसकी हालातों पर नज़र रखनी है। अब क्या नहीं करना चाहिए, अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारी सलाह मिलती है कि आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे उसे ज़बरदस्ती पानी या फिर खाना नहीं खिलाना चाहिए। खुद से गाड़ी चलाकर उसे ले जाने में आप बिल्कुल भी इसका प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे डिले हो सकती है और क्योंकि उसको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रही होती और ना ही लगातार CPR मिल रहा होता है, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट अटैक में हर एक एक सेकंड की बहुत बड़ी कीमत होती है। जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होता है किसी व्यक्ति के बच जाने का। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो आपको पहचानना है उसके सिम्टम्स को, एम्बुलेंस बुलानी है, व्यक्ति को आराम देना है, ज़रूरत पड़े तो आपको CPR देना है और तब तक देना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। ये सही तरीका है उस गंभीर सिचुएशन को हैंडल करना। तो दोस्तों, ये थी बात कि कैसे आप इंस्टेंटली क्या क्या स्टेप से आप व्यक्ति को बचा सकते हैं और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होने से भी बचा सकते हैं। अब देखिए, हमने तो आज काफ़ी सारी चीज़ें जानी, लेकिन भाई जानना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे समझ के उसे अपने दिमाग में बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय समझ में आया होगा, साथ ही साथ आपने सीखा भी होगा और आगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप व्यक्ति की मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे।
फिलहाल वक्त हो चुका है हमारे जाने का, यानी कि विदा लेने का। आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में, लेके आपके हेल्थ की और आपके अपनों के हेल्थ की जानकारी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें।

0: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, एचआईवी एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
0: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
1: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
0: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
1: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
0: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
0: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
0: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
1: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
0: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
1: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
0: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में।
1: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनबाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा जो आंगनबाड़ी आशा और आंगनबाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर PHC CHC या जिला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
0: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
1: जी हाँ बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
0: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
1: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
0: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
1: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
0: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
1: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें, उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
2: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
2: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
3: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती है ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे, होंठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
2: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
3: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस, और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
2: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
3: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, किशोरियों में ज़्यादा होती है, कारण बच्चों में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की ज़रूरत उनके शरीर को ज़्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशंस अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
2: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
3: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
2: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
3: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
2: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
3: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि ज़रूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
2: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
3: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो PHCs हों, CHCs हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
2: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है।
3: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है और ये ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब 1 या 2 घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफ़ी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
2: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: अब बहुत हद तक ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले ज़माने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो 2 केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने की गति ये कम हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है अगर उनमें आयरन की कमी हो। इसलिए माँ और बच्चे दोनों के लिए आयरन बहुत जरूरी है।
2: अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइए कि अगर एक श्रोता आज से ही एनीमिया से बचाव शुरू करना चाहे तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
3: मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगी कि बचाव करने के लिए सबसे पहला तो है कि अपनी आदतें जो कि खाने से संबंधित हैं उनमें सुधार करें और दूसरा नियमित रूप से आयरन के टेस्ट के लिए अपनी हीमोग्लोबिन की जांच कराएं जिससे उसे ये पता चल सके कि उसका आयरन का लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी 7-6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो ख़त्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
2: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
3: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज़ अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीज़ें आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
2: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
3: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहाँ जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
2: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
3: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लेटरिन हो जाएगी, बच्चे भी काले हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है, तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं, इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के एक दो घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें, या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय कॉफ़ी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें, क्योंकि ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर, तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं, और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिया जाता, ये तभी दिया जाता है जब सीवियर अनीमिया हो, मॉडरेट अनीमिया हो, तो ज़रूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
2: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को? ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
3: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत ज़रूरत हो तो, मैंने बताया ना, ब्लड के विकल्प की वजह से। लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है, वो उन्हें दिया जाता है।
2: तो क्या वो हर CHC PHC पर उपलब्ध?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो, तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो, या ANMs हो, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM गुड आश

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। तो ये दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा वाले शो सुन सहेली में। बिल्कुल भाई, दोपहर के बज गए हैं, डेढ़ कप के बज चुके हैं, 1:40 हो रहा है और हमारा टाइम हो गया है आपसे मिलने का, यानी कि आपकी सहेलियां आ गई हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो फटाफट से हमारी आवाज़ सुनकर आप सभी भी आ जाइए और सुन सहेली में जुड़िए और इन्जॉय करिए, क्योंकि आज का हमारा दिन जो कि होता है फ्राइडे, और हमारा फ्राइडे होता है रिश्तों से भरपूर, यानी कि हम बात करेंगे रिश्तों की। कुछ आज रिश्तों पर बताएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे। बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये रिश्ते, तो हम आगे इनके बारे में बहुत कुछ आपसे शेयर करेंगे। पर उससे पहले भाई, जैसी कि औपचारिकता है कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है सुन सहेली, और साथ ही साथ में आप सभी को बहुत ही प्यारी सी, क्योंकि वाकई प्यारी सी है ये दोपहरिया, तो बहुत प्यारी सी आप सभी को शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल मैं आ गई हूँ, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और मेरे साथ कौन है आज, मेरी सखी, मेरी सहेली, जो कि आप सभी का मनोरंजन करेंगी मेरे साथ मिल करके, और साथ ही साथ में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताएंगी, वो आएंगी, जुड़ेंगी, बहुत सारी बातें करेंगी, और मुझे यकीन है कि उनकी बातें और वो जो भी आप सभी को बताएंगी वो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। लेकिन उन्हें आने में अभी है थोड़ा समय, क्योंकि वो गई हैं कुछ, हम जब कुछ अच्छा सा लेकर के आते हैं, मतलब जब किचन में हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, टाइम टेकिंग हो जाता है, हमें लगता है थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब हम इंतज़ार करेंगे तो हमें कुछ अच्छा सा मिलेगा। तो आज भी आपकी कंडीशन कुछ ऐसी ही है लिसनर्स, कि आपको कुछ बहुत ही अच्छा सा मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि हमारी जो सखी सहेली हैं वो कुछ अच्छा सा अभी अपने माइंड में जो के बना रही हैं और आपके लिए ला रही हैं, तो इसलिए उन्हें लग रहा है थोड़ा सा वक्त। तो जब तक उन्हें लगता है वक्त और वो आती हैं, तब तक हम आपसे बातें करेंगे और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा स्टार्टिंग का सेगमेंट हमेशा का होता है, जो कि होता है बहुत ही प्यारी सी पोइट्री, और जब आज बात रिश्तों की हो रही है तो हम अपनी पंक्तियों में कुछ रिश्तों को ही पिरोएंगे और बताएंगे कि ये रिश्ते हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्या रोल होता है उनका हमारी लाइफ में, और रिश्तों के बिना आपकी ज़िंदगी जो है वो कितनी बेरंग लगती है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं रिश्तों की एक खुशबू जो है वो हमारी इस प्यारी सी लाइफ में होनी ही होनी चाहिए। तो आइए कविता पढ़ते हैं और आपको बताते हैं, और साथ में इसे सुन करके आप भी बताइएगा कि आपको ये पोएट्री कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टाइटल जैसे कि है रिश्तों की खुशबू। दुनिया में सबसे अनमोल हैं ये रिश्ते, दुनिया में सबसे अनमोल हैं ये रिश्ते, बिना पंख के उड़ते हैं ये फरिश्ते, सुख दुख में जो हमेशा साथ निभाते हैं, सुख दुख में जो हमेशा साथ निभाते हैं, वही असल में जीने का सलीका सिखाते हैं। धागे की तरह नाजुक, धागे की तरह नाजुक पर मजबूत होते हैं ये दिल के सबसे करीब और खूबसूरत होते हैं। पैसे से नहीं ये तो बस प्यार से चलते हैं, पैसे से नहीं ये तो बस प्यार से चलते हैं, जैसे दो दिए एक साथ एक ही लौ में जलते हैं। रूठना और मनाना तो इनकी एक अदा है, रूठना और मनाना तो इनकी एक अदा है, सच्चे रिश्ते में छुपा

0: बनता तो है ही, आफ्टर ऑल आप इतनी मेहनत करके इतनी प्यारी प्यारी लाइंस लाती हैं हमारे लिए।
1: थैंक यू आपकी तारीफ के लिए आयुषी। और मैंने अभी आपसे कहा था ना लिसनर्स कि हमारी जो सखी सहेली हैं वो बस थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और कुछ बहुत अच्छा लेकर आने वाली थी, इसलिए इन्हें हो गई थोड़ी सी देर।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना कि अच्छी चीज में टाइम लगता है, इसीलिए आज भी हम लाए हैं कुछ ऐसी बातें। तो भाई गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और आ चुकी हूँ आज बनके आपकी सहेली आपके अपने प्रोग्राम सुन सहेली में। और दोस्तों आज तो बात भाई बड़ी ही रस भरी हो रही है। क्या मिठाई की बात होगी? रस भरी काजू कतली किसी की बात नहीं होगी, आज होगी हमारी जिंदगी में रस भरने वाले इमोशन की, यानी कि हमारे रिलेशनशिप्स की। देखिए रिलेशनशिप में एक ऐसे इमोशन होते हैं वो, अब देखिए रिलेशनशिप का सिर्फ एक मतलब ही नहीं होता कि वो आपका कोई प्यार मोहब्बत का केस है, वो आपकी दोस्ती भी हो सकती है, आपके परिवार आपके माता पिता से भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली बहुत ही दिल छू लेने वाली चीज़ है, जिसका हम सभी कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं और एक सपना सजाते हैं कि हमें मोहब्बत होगी तो ऐसे ही होगी। लेकिन क्या मोहब्बत करने का या मोहब्बत होने का एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है?
1: ऐसा तो नहीं होता है।
0: लेकिन देखिए पहले के ज़माने में जो मुझे पता है मोहब्बत से यानी प्यार से लोग बहुत ज़्यादा वो करते थे कि बेटा कुछ भी करो रिलेशनशिप में मत आना, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। और उसका रिजल्ट आपको पता है अंशिका क्या निकला?
1: क्या निकला?
0: देखिए पहले के लोग ये कहते थे कि लड़कियां लड़कों को साथ में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा है कि उन्हें ज़्यादा बोलना बतलाना नहीं चाहिए, दोस्ती थोड़ी कम करनी चाहिए और रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से लड़कियां डर कह लो या फिर परिवार की बातों का सम्मान कह लो या क्या कर कहकर जो भी आपको उचित लगे, उनसे क्या हुआ कि इन दोनों जेंडर्स के बीच में बातचीत होना थोड़ा सा कम हो गया, इंटरेक्शंस थोड़े कम हो गए। और रिजल्ट ये हुआ कि आगे चल के उनके जो पीक इमोशंस होते हैं इस मामले में यानी प्यार मोहब्बत के बारे में वो थोड़े से कम हो गए, यानी कि वो ये भूल गए कि आखिर में इसका असल मतलब क्या होता है। आगे चल के वो सही गलत के बीच में पहचान करना भूल गए, इसीलिए कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये भी बोला कि दोनों में इंटरेक्शन ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे उसके बाद साइकोलॉजिस्ट बने, हमारे सिगमंड फ्रॉयड साहब, जिन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी में ये भी बताया है कि एक स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ में जहां उसे पहचान होती है दूसरे जेंडर की, अगर लड़की है तो लड़के की, लड़का है तो लड़के की। अब उसमें अगर हमें थोड़ी सी भी अड़चन आती है तो वो हमारे आगे आने वाले जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी करती है, और ये उन्होंने बहुत पहले कहा था। मैं आपको बताऊं तो आज के कम सैकड़ों साल हो गए होंगे उससे पहले उन्होंने कहा था, और उसका रिजल्ट आज हमें देखने को साफ साफ मिलता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले, प्यार मोहब्बत करने से पहले, आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि सामने वाला बात कैसे कर रहा है, क्योंकि देखिए आपके जो अपोजिट जेंडर होते हैं ज़रूरी नहीं वो सेम ढंग से बिहेव करें, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए लड़के जो होते हैं वो ऐसा नहीं है वो इमोशनल नहीं होते, पर वो इमोशनल की जगह प्रैक्टिकल चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स करते हैं, और जो हमारी लड़कियाँ होती हैं वो इमोशन चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं और प्रैक्टिकल पे थोड़ा कम ध्यान रहता है उनका। और ये चीज़ें कम्प्लीटली नॉर्मल हैं, ये बिना एक्सपीरियंस के लोग नहीं सीख पाते कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। हालांकि इन दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने बैलेंस मेंटेन कर रखा है उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बात ये बनती है कि जब आप किसी से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अंशिका बताती हूँ और आप सभी को दोस्तों बताती हूँ कि मान लीजिए हमारे अंदर एक इमोशन ऐसा है, मान लीजिए कोई लड़की है वो इमोशनल वे में ही सब सोचती है, लेकिन जो लड़का है वो अधिकतर चीजें प्रैक्टिकल में सोचता है। अब जब इन लोगों की बातें होंगी, बातचीत होगी, चाहे वो मैरिज के लिए हो डायरेक्टली, क्योंकि पहले तो प्यार मोहब्बत को इतना मतलब वैल्यू दिया ही नहीं जाता था, कहते थे नहीं ये गलत काम होता है, लेकिन वो गलत काम नहीं होता एक्चुअली, ये ह्यूमन लाइफ का एक प्रोसेस होता है जहाँ हमें बाकी जेंडर्स के बारे में भी जानना चाहिए। अब जो लड़की है वो हमेशा इमोशनल नीड्स की डिमांड करती है कि हमें समझो, हमें जो है ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी बातों का, हमारे इमोशंस का मजाक ना उड़ाए, हमें समझ पाए, हमें एक मेंटल सपोर्ट दे पाए। वहाँ लड़का सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सोचता है, और जहाँ पे ये दोनों लोग एक बार मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो उनमें थोड़े चीज़ों के लड़ाई झगड़े या थोड़ा डिसबैलेंस बनता ज़रूर है। अगर यही दोनों लोगों ने पहले एक दोस्त बनाए होते या समाज में इन सारी चीज़ों को एक दूसरे

0: बात करके समझ के बिहेवियर एक कम्युनिकेशन मेंटेन किया होता तो शायद वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ लेते कि आखिर में लड़कियां प्रोसेस कैसे करती हैं, लड़के कैसे प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप में आगे चल के आपकी जिससे भी शादी होगी तो एक बैलेंस बना रहेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस, अभी जैसा आयुषी ने स्टार्टिंग में ही कहा कि बैलेंस बना होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे रिश्ते, देखिए हम हमेशा कहते हैं ना, रिश्तों को निभाना होगा, उन्हें पूरा करना होगा, उन्हें कंप्लीट करना होगा, लेकिन आप रिश्तों को निभा तभी पाएंगे जब आप उन्हें समझ पाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि हम हमारे रिश्तों को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते हैं तो निभा भी नहीं पाते हैं। अगर समझ नहीं होती है उनमें तो निभाने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि देखिए, एक लड़का और एक लड़की जैसे आजकल हम देखते हैं ना, मतलब आज की अगर हम बात करें आयुषी, तो आजकल लड़का लड़की बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं और हम मिलते हैं, घंटों बातें होती हैं, बैठते उठते हैं, तो एक मन में वो जो एक डर कह लें या झिझक कह लें वो नहीं है। हम अगर किसी अनजान से भी मिलते हैं, किसी स्ट्रेंजर से, तो हाँ लगता है कि वो अनजान इंसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बात करने में हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं और ऐसे फील होता है कि अरे ये तो अपोजिट जेंडर है तो हम कैसे बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है, मतलब हाँ थोड़ा लगता है वो कि स्ट्रेंजर है, लेकिन जब धीरे धीरे हम बातें करते हैं तो हम उसके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो फेस देखा, हमें कहीं ना कहीं हैबिट है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं हर रिश्ते में समझना, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो समझें, टाइम दें, और अगर बात शादी जैसे रिश्ते की होती है तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पूरी लाइफ की बात होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम आज शादी कर रहे हैं या बात कर रहे हैं और कल वो हो जाएगा, मतलब वो तो आपको पूरी लाइफ कहीं ना कहीं निभाना है, तो उसमें तो वो मुझे लगता है काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल, और जब हम आज बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो मैं आप सभी से एक सवाल, क्योंकि भाई देखिए ब्रेक लेने का टाइम हो रहा है हमारा।
1: जी जी जी।
0: तो हम ये चाहते हैं, यानी स्पेशली मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली,
1: एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, सिर्फ एक मिनट, क्योंकि दीपांशी जी काफ़ी देर से मैसेज कर रही है, तो उनके मैं मैसेज ले लेती हूँ। तो दीपांशी जी लिख रही हैं, लोगों से डरना छोड़ दिया है हमने, क्योंकि इज्जत भगवान देते हैं, लोग नहीं। ओके, और शादी में लिख रही है, शुभ दोपहरिया दोनों मैम को, कैसे हैं आप दोनों?
0: हम दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें भी लेकर आए हैं। बातें ऐसी हैं क्योंकि देखिए हमने बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म्स देख के प्यार मोहब्बत को एक अलग दिशा दे दी है कि अरे यार यहाँ तो सब बटरफ्लाईज ही होती हैं, दिल ये होता है वो होता है, और न जाने कितनी चीज़ों को बहुत ही पोएटिक फॉर्म में कर दिया, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या होता है उस तरफ हमारी नज़र जाती ही नहीं है कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है। इन सभी पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं ब्रेक लेने से पहले आप सभी का ये ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि भाई हम दोस्तों से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, और ये ओपिनियन मैं अपने सभी दोस्तों से जो भी सुन रहे हैं हमें चैट बॉक्स पे हैं, अंशिका आपसे खुद भी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई शादी होती है, अरेंज मैरिज है, उस पर प्यार नहीं, क्योंकि अरेंज मैरिज में यार देखो फर्स्ट मीटिंग में ये नॉर्मल सी बात है, किसी से प्यार हो ही नहीं सकता,
1: हो ही नहीं सकता,
0: ठीक है, अगर आपकी शादी हो रही है उस इंसान से, तो अगर उसमें प्यार नहीं है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो मैरिज एक सक्सेसफुल मैरिज बन सके?
1: सबसे पहले तो अगर आपके रिश्ते में प्यार नहीं है तो प्यार की जगह पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन सम्मान ज़रूर होना चाहिए। पहली बात, अगर आपके रिश्ते में सम्मान है, प्यार नहीं है, तो आपका रिश्ता चल सकता है। और दूसरी चीज़ है, सपोर्ट होना चाहिए, वो आपकी हर बात की इज्जत करे, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, अगर वाइफ है तो वाइफ इज्जत करे अपने हस्बैंड की, उसके पॉइंट्स को सपोर्ट करे। मुझे लगता है कि अगर एक रिश्ते में विश्वास हो, सम्मान हो, एक दूसरे पे प्रॉपर सपोर्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता बिना प्यार के भी चल सकता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे का होना चाहिए, और मेन, सबसे मेन, कि एक दूसरे की इज्जत ज़रूर करनी चाहिए।
0: अब देखिए ये तो बात हो गई अंशिका की ओपिनियन की, लेकिन आप सबका क्या राय है उसको जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताइए, कि मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आप सभी के जवाब का। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूँ, जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे यूथ के बीच में और हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में भी रही है, वो ये है कि ब्रो लव मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है अरेंज मैरिज, ये जो है हम सभी में कन्फ्यूजन ज़रूर होती है कि कौन सी बेहतर है, ये आपका क्या मानना है आप आके बताइए, हम इसके बारे में मेरा क्या मानना है और क्या मेरी सोच है, उन सभी चीज़ों को साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने ओपिनियंस ज़रूर ला के चैट बॉक्स में बताने हैं, और साथ ही साथ आज के शो को इंजॉय भी करना है। अब इंजॉयमेंट का क्या मतलब होता है अंशिका इंडियन में?
1: इंजॉयमेंट का इंजॉयमेंट का मतलब होता है धमाल मस्ती, बहुत सारे गाने।
0: नहीं,
1: फिर क्या होता है?
0: एंजॉयमेंट का मतलब होता है एंजॉय करना, यानी कि एक कप चाय दोस्तों का साथ और खूब सारी बातें, हंसी मजाक और खूब सारे ठहाके। देखिए ठहाके, हंसी मजाक, बातें सब हम ले आएंगे, बस आपको बनानी है अपने घर में चाय और रेडियो ट्यून करे रहना है, क्योंकि भाई ये है आपका अपना रेडियो 89.6 FM और हम आपके आज के सुन सहेली के दोस्त अंशिका तो हमेशा ही रहती है, मैं आपकी आरजे आयुषी भी हूँ। और जल्दी से जाइए आज के इन बातों को और भी ज्यादा मजेदार बनाइए।
1: तो चलिए चलते हैं सॉन्ग के साथ और बस यू गए यू आए स्टेडियम।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां और चलिए फिर से शुरू करते हैं हमारी प्यारी प्यारी बातों के सिलसिले। तो भाई रिश्ते, अभी एक सवाल हमने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, यानी कि आरजे आयुषी ने आपसे पूछा था कि हमेशा एक क्वेश्चन रहता है हम सभी के मन में कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर होती है या अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर होती है।
1: अंशिका, आपका क्या मानना है?
0: मेरा मानना ये है कि जैसा आज, मतलब अब का एटमॉस्फेयर है, जैसा कि हम आज का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं लव मैरिज अच्छी होती है।
1: कैसे?
0: ऐसे कि लव मैरिज में आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कई बार तो एक दूसरे से बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि हम उसकी किन आदतों को सह सकते हैं, उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो कैसा इंसान है, हमें ये सब कहीं ना कहीं पता होता है। अगर अच्छी दोस्ती है तो आप एक दूसरे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बैठा पाते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में अगर हम बात करें तो अरेंज मैरिज में आप किसी से एक मीटिंग में मिले होंगे, दो मीटिंग में मिले होंगे, लेकिन एक दो मीटिंग में मिलकर मुझे लगता है इन इंसान को जान समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1: अंशिका, कभी आपने फ्रेंडशिप ब्रेकअप जो है फेस किया है कि आपकी कोई बहुत दोस्ती बहुत गहरी हो किसी लड़की से और बहुत लंबे टाइम तक चली भी हो, लेकिन आखिरी में उस लड़की ने आपको डिच कर दिया हो या चीट किया हो या कुछ ऐसा?
0: हाँ, किया है।
1: तो देखिए, जहाँ आजकल के ज़माने में दोस्ती जो कि कई सालों तक चलती है, तब भी आप उस इंसान की रियल पर्सनैलिटी नहीं जान पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मीटिंग में, क्योंकि देखिए कभी ना कभी आप खुद सोचिए, एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर किसी ने अपनी ऑफिस चेंज किया है, ठीक है, दूसरे ऑफिस ज्वाइन किया, तो क्या स्टार्टिंग में जो उस इंसान का बिहेवियर रहेगा, क्या वो असली का बिहेवियर होता है?
0: असली का बिहेवियर होता,
1: मतलब
0: है?
1: फेकनेस रहती है, मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ सर, जी सर, भली
0: नई जगह पे थोड़ा एक
1: नई जगह पे जब ये पता होता है कि नहीं भाई अब यही है, तो हम अपना कितना फेक करने लगते हैं कि अरे चलो एक मीटिंग है, फेकनेस, फेक स्माइल करते हैं। या कभी आप ऐसे रिलेटिव से मिले हों जिनसे आपको मिलने का मन ना हो, लेकिन फिर भी आप फेक स्माइल लेकर के फेक बातें बना के आप उनसे बातें कर लेते हैं। तो सोचिए, यही कहीं ना कहीं हमारी अरेंज मैरिजेस में जो दिखाई होती है, मिलना होता है, उसमें भी यही चलता है। आपको भी, जो भी लड़की है उसको भी उसकी मम्मी बोल के जाती है कि बेटा वहाँ सही से बैठना, सही से उठना, सही से बोलना चालना, कम बोलना, ज़्यादा सवाल मत करना, ऐसी सारी चीज़ें आज भी देखी जाती हैं कि लड़कियों को ये बोला जाता है। तो जब हम अपने पार्टनर से, जिसको हम चूज़ कर रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर होगा, उससे हम सही से बात नहीं कर पा रहे, उसके सामने अपनी पर्सनैलिटी फेक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मैरिज आगे चल के सक्सेसफुल होती है?
0: कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं होती है, क्योंकि एक पर्सन, अगर आप एक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें फेकनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें आप जो हैं वही आप अगर दिखेंगे तो मुझे लगता है कि रिश्ता बेहतर रहेगा।
1: और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर हम सिर्फ लव की बात करें, कि भाई मैं इन सपोर्ट पे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैंने बिल्कुल आज लव मैरिज का ही नारा लगाना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लव मैरिज में भी अपने अपने प्रोस कॉन्स होते हैं, यानी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम बात लव मैरिज की करें तो देखिए, लव मैरिज में सीधा सा ही फंडा होता है कि पहले दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर आगे चल के शादी कर लेते हैं। लेकिन एक सच्चाई यहाँ पर भी है कि शादी के लिए सिर्फ प्यार का होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आप फाइनेंशियली कैसे हैं, आपका बाकी मेल, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप से पहले, जो है शादी से पहले आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो जस्ट एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे को समझना होता है, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। दो परिवार का मेल हो जाता है, लड़की को लड़के के घर वालों का ध्यान रखना होता है, कई सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं दोनों ही तरफ से, कि लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। आप अगर उस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तभी मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब शादी की बात आती है, मतलब दो लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उन्हें बहुत इजी लगता है कि अरे हम तो एक दूसरे को समझते हैं ना, प्यार करते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना, अरे शादी से पहले तो हम दोस्त थे, और शादी के बाद वाकई में वो रिलेशनशिप पूरी तरह एक दूसरे के बीच में चेंज हो जाता है, क्योंकि तब आप हस्बैंड एंड वाइफ होते हो, आपको सब कुछ देखना है, आपको पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को मैनेज करना है, उसमें आपको रिस्पेक्ट भी देनी है, उसमें आपको ट्रस्ट भी रखना है, उसमें आपको पोजेसिव भी नहीं होना है, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर रखना है। कई बार क्या होता है कि जब दोस्त होते हैं तो हस्बैंड हस्बैंड इतना पोजेसिव नहीं होता है, लेकिन शादी के बाद वो पोजेसिव हो जाते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों बात कर रही हो। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में ये चीज़ें भी फिर खटास ले आती हैं कि फिर लोग कहते हैं अरे शादी से पहले तो तुम मुझसे इतने क्वेश्चंस नहीं किया करते थे, अब क्यों पूछने लगे हो। तो कहीं ना कहीं वो जो एक बदलाव बदलता है वो समझने की ज़रूरत है कि अगर हम बदलाव के साथ एडजस्ट कर पाएंगे तो आप अपने रिश्ते को चला पाएंगे, और अगर बदलाव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि रिश्ता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊँ जो कि मेरे ही घर के पास की एक घर की है। कि मेरे घर के पास एक घर है जहाँ पे उनके पापा नहीं है, उनके भाई ने अपनी बहन की शादी की है। उन्होंने काफ़ी टाइम तक उनकी शादी ढूंढी और एक शादी उन्हें बिल्कुल मन भा गई कि नहीं भाई यही करनी है। उन्होंने लड़के से मुलाकात की, फिर दो परिवार एक दूसरे से मिले, लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, लगभग 4 से 5 मीटिंग्स हुई उन लोगों की, और उसके बाद उनकी 4 महीने 5 महीने बाद उनकी शादी हो गई। और गेस करिए कि ये सब इतना खुशी का माहौल था, सब खुश थे, लड़का लड़की दोनों, ऐसा लग रहा था कि राम सीता की जोड़ी है, ऐसा सभी कह रहे थे। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद पता चला कि लड़का पहले से ही शादीशुदा था, उसका डाइवोर्स हुआ था, और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा एल्कोहलिक पर्सन भी है, यानी कि वो नशे बहुत करता है। और ये जो है उसके भाई ने 4-5 महीने की लगातार मीटिंग, आपने शॉपिंग साथ में की है, आपने इतना टाइम एक दूसरे के परिवार के साथ बिताया है, नॉर्मल मीटिंग्स जो होती हैं वो हुआ है
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: हम उसमें भाप नहीं पाए कि ये इंसान कैसा है। और अब सोचिए कि उस लड़की का क्या जिसने पैसे, क्योंकि देखिए इंडियन वेडिंग्स आर लाइक बिग फैट वेडिंग की उनको कई सारी डिशेस चाहिए, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, उतने सारे पैसों का क्या, और सबसे बड़ी बात एक जिंदगी का क्या, एक साथ साथ कितनी जिंदगियां इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि घिस के रह गई हैं। तो जो लोग भी अपने बहनों की शादी देखने जा रहे हैं, अपनी बेटियों की शादी देखने जा रहे हैं, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है और कई सारे लोग भी ऐसा मानते हैं कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, मैं दोनों में कह रही हूँ, जब घर वालों को पता चले कि नहीं भाई ये लड़का है या ये लड़की है, इवन इन लव मैरिज और इन अरेंज मैरिज, आपको एटलीस्ट शादी में और फर्स्ट मीटिंग के बीच में 1 से 1.5 साल का गैपिंग ज़रूर होना चाहिए। अब इन गैप्स में आपको बिल्कुल बंध के नहीं रहना है कि आप मिलने मत जाओ, चैटिंग पे इतनी बात मत करो, क्या सोचेंगे सास, क्या सोचेंगे ससुर, और इतना फोर्स भी नहीं कि नहीं भाई अब तो रोका हो चुका है, अब क्या करें, अब नहीं हो सकता कुछ। ये सारी चीज़ें अगर होने लगती हैं तो अंजाम यही होगा आपकी बेटियों के साथ जो आज त्रिशा शर्मा और दीपिका के साथ और कई सारी लड़कियों के साथ हो रहा है। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल देना है रेगुलर मीटिंग का ये मतलब नहीं कि आप हर दिन मिलें, बट आप लोग मिलें, फैमिली गैदरिंग्स हो, आप लोग एक दूसरे से बात करें, चाहे वो फ़ोन पे हो या कैसे भी हो, बस थोड़ी सी जान पहचान को स्ट्रॉन्ग करिए। इससे क्या होगा कि एक इंसान कितने दिन तक अपनी जो है पर्सनैलिटी फेक कर लेगा, 8 महीने 9 महीने 10 महीने 1 साल 1.5 साल में तो उसकी सच्चाई आ ही जाएगी। और मुझे लगता है कि 1.5 साल इन्वेस्ट करना इज़ मच मोर बेटर देन इन्वेस्टिंग अ होल लाइफ, कि आप पूरी ज़िंदगी किसी में इन्वेस्ट करके ख़राब कर रहे हैं और 1.5 साल में आप जानकारी आपको मिल गई पूरी तरीके से, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। और कहीं ना कहीं हम देखिए जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे वो एक कहावत कहते थे स्पेशली लड़कियों की शादी के लिए, कि जब भी आप अपनी लड़की दे रहे हैं, कहीं शादी कर रहे हैं, तो ठोक बजा करके पता कर लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही होता है। देखिए हम कभी बाहर जाते हैं, कहीं पार्टी में आप गए, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है आप, या मतलब फीमेल फ्रेंड है, उसकी पार्टी में आप गए, लेकिन वो आप उसको जानते हैं ना। हम जब किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो हमेशा क्या कहा जाता है, आंख और नाक खुली रखना, आंखें खुली रखना, थोड़ा सचेत रहना, देखना उसको, ऑब्जर्व करना। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी स्ट्रेंजर से फर्स्ट मीटिंग मिलते वक्त इतना ध्यान देते हो, हम किसी भी स्ट्रेंजर से इन्वॉल्व होते हैं, अगर उससे बातें करते हैं, तो हम ऐसा नहीं होता कि पूरा उस पर भरोसा करके उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, नहीं, हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगा, कहीं ना कहीं हम अवेयर रहते हैं। तो इसी तरह एक रिश्ते में भी अवेयर रहिए, देखिए अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो आप देखिए उसकी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि वो क्या कर रहा है। अब जैसे कि आयुषी ने भी बताया कि वो अल्कोहलिक था, तो ऐसे कैसे था कि एक भी मीटिंग में आपको ये नहीं पता चला कि वो अल्कोहलिक है,
1: क्योंकि वहाँ पे मीटिंग्स ही कम हुई हैं।
0: हाँ, इसका मतलब है कि मीटिंग्स भी कम हुई और साथ ही साथ में आपने उतना बहुत क्विकली ऑब्जर्व भी नहीं किया। हमें हमेशा बहुत महीन तरीके से किसी को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल अच्छी होगी, आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। देखिए हम जैसे कहीं हम जाते हैं बहुत आर्टिफिशियल बन के आप जाते हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल आप कितने दिन बनते हो, एक ना एक दिन तो हकीकत पता ही चल जाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हाथ से दाल चावल कोई खाने वाला है, मतलब जैसे स्पून से बहुत लोग खाते हैं, वो हम दांतों में जाते हैं तो दिखाते हैं ना, अरे नहीं हम चम्मच से खाते हैं, लेकिन किसी को अगर हाथ से ही खाने की हैबिट होती है तो दो चम्मच खाने के बाद जब तीसरी बार बारी आती है तो वो हाथ से शुरू हो जाता है कि भैया हमसे,
1: बिल्कुल ये तो बहुत बेहतर एग्जांपल आपने दिया, ये तो सभी सबके साथ हुआ होगा,
0: सबके साथ ये हुआ होगा कि भाई हम नहीं खा पाते। दो चम्मच भले ही आपने दिखाने के लिए खा लिया कि हाँ चार लोग खड़े हैं तो हम भी भाई स्पून से खाते हैं बहुत अच्छे से मेंटेन करके, लेकिन जहाँ वो इंसान अगला हटा वहाँ आप शुरू हो जाते हो कि देखो भैया हम तो ऐसे ही खा पाते हैं। ऐसे आम के साथ भी होता है, बहुत लोग आम देसी तरीके से खाते हैं, बहुत लोग काट के और कांटे से खाते हैं, मुझे लगता है वैसे बहुत कम लोग होंगे जो कांटे से खाते होंगे, ज्यादातर लोग देसी तरीके से ही खाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और कहीं ना कहीं मजा भी उसका जो एक आता है वो उसी तरीके से आता है।
1: बिल्कुल, देखिए आज की जो शो है इसका बिल्कुल ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि डाइवोर्स वेडिंग आर बैड, या फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं फिर से दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो आपको करनी चाहिए एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट द पॉइंट जो हमने अभी स्टोरी शेयर की आपके साथ, उसमें अल्कोहलिक होना, जो कि लड़की के घर वाले थे ही नहीं कोई, और वो वैसा लड़का ढूंढ भी नहीं रहे थे, और एकदम बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि हाँ उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि किसी भी रिश्ते में अगर उनकी शुरुआती बुनियाद झूठ से रखी जाएगी तो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता है।
0: और कहीं ना कहीं इसमें देखिए दो लाइफ खराब होती है। हम हमेशा ये पार्ट देखते हैं कि शादी टूटी तो लड़की को बहुत तकलीफ हुई, उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई, या ऐसा था वैसा था, लेकिन जब शादी टूटती है तो लड़के को भी हर्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना एक लड़की को सुनना पड़ता है एक शादी टूटने पर कि ऐसी थी वैसी थी और इसलिए उसकी शादी नहीं चली, उतना ही कहीं ना कहीं बाद में एक लड़के को भी सुनना पड़ता है कि पता नहीं कैसा लड़का था जो शादी ही नहीं वो हुई। तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर, क्योंकि हम दो जिंदगियों को एक बहुत अच्छी, हम कहते हैं ना एक नई शुरुआत देने जा रहे हैं, अरे लाइफ की बहुत अच्छी शुरुआत होगी, तो कोशिश करिए कि शुरुआत कड़वी ना हो।
1: बिल्कुल, तो भाई आपसे जो है आपको यही सजेशन है कि जब आप सिंगल एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप पूरा मॉल उतन के रख देते हैं कि भैया ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ ये वैरायटी वो वैरायटी, अच्छे से जांच पड़ताल करके आप कोई एक कपड़ा खरीदते हैं, तो अपने और अपनों के जिंदगी के इतने अहम फैसले में इतनी जल्दबाजी क्यों लगी रहती है। वो कपड़ा तो शायद आप 3 महीने 4 महीने या मैक्स टू मैक्स साल भर पहन लेंगे, लेकिन शादी आपकी ज़िंदगी भर चलने वाली है, उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बेहतर है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम लोग यही कह रहे हैं कि लड़के की ही जांच पड़ताल की जाए, लड़कियों की भी जांच पड़ताल होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में अब तो भाई आदमी औरत दोनों एक ही बराबर हैं, तो इन सब में भी हमें इक्वालिटी देनी चाहिए, दोनों की अच्छे से जाँच करें तभी कोई शादी करे। और अगर ये लव मैरिज भी हो रही है तो भी आपको एक बार अच्छे से जो है घर वालों को, या फिर क्योंकि देखिए हम सब कहते हैं, देखिए हमें मम्मी जो है, अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल दें, हमें मम्मियाँ जो होती हैं, हम कोई भी बाहर वाला आके हमें कुछ कहे कि नहीं आपकी बेटी ने ऐसे किया आपकी बेटा ने ऐसा किया, तो हमारी मम्मी प्यार में बहुत ज़्यादा वो रहती है कि नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है। इसी तरीके से जब लव मैरिज की बात होती है तो दो लोग आपस में ऑलरेडी प्यार में हैं, कहीं ना कहीं उनके आंखों में जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया इनके पट्टी बंधी हुई है प्यार की, तो उन्हें सिर्फ प्यार ही प्यार दिख रहा होता है, लेकिन आप जो अडल्ट्स हैं जो बड़े हैं जो समझदार हैं, उन्हें ये पता होगा कि शादी में प्यार के अलावा भी और भाई और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वो दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं है ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल भी ऐसे कह के ना छोड़ें कि आपकी चॉइस है, आप ही अपनी ज़िंदगी के फैसला लिया तो आप ही भुगतेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि गुस्सा पल दो पल का होता है लेकिन ज़िंदगी का ये एक बहुत अहम फैसला होता है।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी रखनी है, सतर्क रहना है, और साथ ही साथ में ये देखना है कि जिसे हम लाइफ टाइम के लिए चुनने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ, अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो खामियाँ क्या हैं ये भी ज़रूर देखिए। तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं अभी हम फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे, और बस इस ब्रेक के उस पार आएंगे और सीधा चलेंगे चैट बॉक्स में और जानेंगे कि हमारे लिसनर्स ने हमारे लिए क्या कुछ भेजा है। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक एवरीवन, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम सुन सहेली। और आज हूँ मैं आपके अपने प्रोग्राम में, जी हाँ। और आज वैसे जैसे हमेशा की तरह अंशिका ने मेरा वेलकम किया था और मैं आ भी गई थी अंशिका को बीच में डिस्टर्ब करके, एज ऑलवेज, जो एक फ्रेंड का हक होता है। लेकिन भाई आज की जो बातें हो रही हैं वो थोड़ी सी, बहुत हम कहें कि थोड़ी सी सीरियस भी है, पर मुझे लगता है कि आरजे आयुषी हैं तो सीरियस माहौल ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल भाई,
6: वो फनी में चेंज हो जाता है।
5: वो बिल्कुल फनी में चेंज होगा, लेकिन एक कोट के साथ। देखिए, हम हमेशा ढूंढते हैं कि हमें प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, पर आपको पता है कि प्यार आखिर होता कहाँ है?
6: कहाँ होता है?
5: इसका एक बहुत बड़ा पौधा होता है।
6: अच्छा
5: जी, वो पौधा होता है आपके खुद के अंदर। अगर जिस प्यार की तलाश आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, असल में वो प्यार आप ही के अंदर छुपा है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो याद रहे कि सामने वाले की आंखों में जो आपको प्यार दिख रहा है वो सिर्फ आपकी आंखों का रिफ्लेक्शन है, यानी कि आपका प्यार है वो। तो ये कभी ना सोचें कि जिंदगी में प्यार की कमी है, प्यार आप खुद हैं। इसी सब के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा फनी वे में, क्योंकि भाई देखिए, अगर हम हंसेंगे नहीं, ठहाके नहीं लगाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आपने वो मूवी देखी है अंशिका, मोहब्बतें?
6: हाँ देखिए।
5: उसमें याद है कि एक कॉलेज था और उस कॉलेज में पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा था, और उसी में थे हमारे अमिताभ जी, जिन्होंने कहा था कि जिंदगी में अनुशासन, प्रतिष्ठा और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्हीं चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी थी उस पूरी मूवी में। और उस पूरी मूवी ने हमें एक, क्योंकि ये देखिए आज भी हम वो मूवी देखते हैं तो उतने ही क्रेज से देखते हैं, और उन्होंने उस मूवी में जो डायरेक्टर है उन्होंने 4 अलग अलग लोगों के 4 अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप समझाए, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है वो अधिकतर मूवीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन शायद हम सीखना भूल जाते हैं, वो क्या है बताइए?
6: क्या है?
5: जोर ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि देखिए हम काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग बॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम बॉलीवुड की ही तरह रहें, वही फिल्मी ज़िंदगी हो, एक एक्ट्रेस हो, एक एक्टर हो, एक अच्छा सा हीरो हो और वो आए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन भाई मैं बता दूं कि उन सभी के साथ आप कुछ चीज़ें आपको और सीखनी चाहिए, वो ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ की नहीं। देखिए हम जब किसी से प्यार करते हैं तो वो एक सॉफ्टनेस होती है, लेकिन जब हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करने को होते हैं तो वो चीज़ें आपके प्यार को भी कहीं ना कहीं बेइज्जत करती है, साथ ही साथ वो बहुत हार्श हो जाती है।
6: राइट।
5: क्योंकि अगर देखिए प्यार आपको है ना, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले को भी हो।
6: बिल्कुल।
5: और जब इंसान को ये होता है कि नहीं यार सामने वाला किसी और से प्यार करता है या रिजेक्शन फेस करने को मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम पे उतर आते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई क्राइम पे आप बिल्कुल ना उतरे। अगर आपका प्यार है, रिजेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, आपका प्यार है ना, आप उसे, आपको अपने अंदर होल्ड करके रखना, आप रखो, आप उसे ज़िंदगी भर संजो के रखो, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का हक बिल्कुल नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर, मैं अगर आपको कहूँ कि अप्रॉक्स 90% से ज़्यादा एसिड अटैक जो होते हैं वो मेल की तरफ से फीमेल्स पे होते हैं, जहाँ पे रिजेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमने उन्हें प्रपोज़ किया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कभी आपने देखा है कि ऐसा कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में होता हो या असल ज़िंदगी में भी हमारे आइडल्स करते हों?
6: नहीं देखा।
5: देन तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बॉलीवुड से और भी चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने आइडियाज से चीज़ें जो है सीखनी चाहिए, और क्राइम्स को प्यार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि देखिए प्यार एक बहुत अजीज़ चीज़ है। अगर आप क्राइम को उसमें लाएंगे तो आप अपने साथ साथ उस प्यार की भी बेइज्जती कर रहे हैं।
6: बिल्कुल। तो चलिए लिसनर्स, इसी पे टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं आयुषी चैट बॉक्स में, क्योंकि किसी ने चैट बॉक्स में एंट्री कर ली है। पहले हम उसे वेलकम कर लेते हैं और उसके बाद बातें करते हैं।
5: ब्राइट स्टार ऑफ सुन सहेली, हमारी आरजे समता।
6: यस बिल्कुल। तो मैम आ गई है और वो लिख रही है, मैं भी कांटे से खाती हूँ। ओके, यानी मैम हमारी बातें सुन रही थी। और साथ ही साथ में दीपांशी जी और मैम के बीच में बातें चल रही है। दीपांशी जी लिख रही है, सॉरी मैम आज मिस कर दिया आपका प्रोग्राम। अच्छा ओके, मॉर्निंग वाला प्रोग्राम। चलिए कोई बात नहीं दीपांशी जी, फिर आप सुन लीजिएगा। तो भाई वेलकम कर लेते हैं मैम का और उनसे पूछ लेते हैं कि कैसी हैं वो और हमारी बातें अगर सुन रही हैं तो उन्हें कैसी लग रही है। मैम फटाफट से बताइए।
5: बिल्कुल। अब देखिए मैम की बातें तो आ गई, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ आप सभी के साथ, अंशिका और मैम सबके साथ
6: जी।
5: कि देखिए जो मुझे लगता है कि जब हमारे घर कोई आता है तो हम बड़ी इज्जत से आम खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आम बहुत ज़्यादा इज्जतदार है नहीं। आम के साथ इज्जत बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, और मज़ा भी इसी में है। इमेजिन करिए आपके घर आम का एक कट्टा आया है, ठीक है, और उस पे है आम। अब अगर वो आम सख्त है थोड़ा सा, तो आप उसे हल्के हाथों से, अंगूठे से और उंगलियों की मदद से दबाएंगे, और तब उसके ऊपर की, जिसे हम अवधि में ढेपी कहते हैं,
6: जी जी जी,
5: उसको अपने दांत के जो नुकीला पार्ट होता है ना, उससे तोड़ेंगे।
6: थोड़ा
5: अब हल्के हल्के हाथ से दबाइए, तो ऊपर से ही उसी ढेपी में से एक बहुत ही अच्छा सा सुगंधित लिक्विड निकलेगा, जिसे हम आमरस कहते हैं, और उसको फिर जो हम खाते हैं ना भाई, वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और कहीं ना कहीं इज्जत से खाने से अच्छा बेइज्जती वाला स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है।
6: इज्जत से, वारे आयुषी, मतलब बताने का तरीका देखिए आप लिसनर्स कि इज्जत से खाने से अच्छा, नहीं वैसे तरीका इन्होंने बिल्कुल अच्छा वाला बताया,
5: देसी
6: नुस्खा जिसे हम कहते हैं। और वो फील हो रहा था, मतलब दोपहर के टाइम आपने आम का नाम ले लिया, ओ माय गॉड।
5: और अगर आम फ्रिज में रखे हों,
6: आयुषी बस कंट्रोल, वरना अभी अब यहाँ बैठे बैठे ही मुझे आम, मैं खो गई थी कि आम मिल जाता तो मैं खा लेती, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ फिलहाल।
5: बिल्कुल। तो भाई अपनी हम टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज है रिलेशनशिप पे। तो अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, सीखी, समझी कि हमें शादी तक जो हमारी रिलेशनशिप चलती है तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान बरतना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी प्यार में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे एक बहुत ही गंभीर मानसिक समस्या की, पता है वो क्या है?
6: क्या है
5: आप बताइए, आपके जहन में है कोई ऐसी चीजें? मेरे पास भी है, लेकिन पहले आप बताइए।
6: बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैम कुछ कह रही हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। और लिख रही हैं, ये तो

0: से वक्त में हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको बताएंगे। तो आज जिस मेंटल हेल्थ की हम बात करने वाले हैं वो है एनपीडी। एनपीडी एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, ये बस एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जो हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। क्योंकि इसमें इंसान क्या होता है कि वो पूरी तरीके से मतलब जैसे हम कहते हैं ना सेंसिटिविटी, तो जो उसकी सेंसिटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो सब खुद को ही समझने लगता है। कहीं ना कहीं उसका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने कहा जो मैंने सोचा वही है। ओके, चलो एक कड़ी पार्टी तो ड्यू है, एक हम आम पार्टी भी हो जाए। बिल्कुल मैम, आम पार्टी हो जाए। तो आयुषी, आम पार्टी के लिए क्या कहना है?
1: बिल्कुल आम पार्टी तो होगी मैम, लेकिन बता दीजिएगा क्योंकि आप जानती हैं हम सब मेकअप लवर हैं। मैं तो अपना जानती हूँ भाई मेकअप लवर हूँ, तो मैं एक लिपस्टिक घर से जरूर लाऊंगी क्योंकि आम को तो बहुत ही बेरहमी से हमें खाना है।
0: तो उसके बाद मेकअप खराब होगा तो फिर करना भी पड़ेगा। बिल्कुल, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। और ये कहने का मतलब था कि इसमें जो इंसान की सेंसिटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ खुद को ही समझने लगता है, इसलिए ये हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। अब आते हैं कि इस मेंटल कंडीशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्पेशली हमारे रिश्तों में। कहीं ना कहीं जब आप सेंसिटिव नहीं होते हो तो आप सामने वाले को समझते नहीं हैं, उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते, हमें लगता है कि बस सब कुछ हम तक ही सीमित है। तो कहीं ना कहीं आपसे आपके अपने दूर होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि आप खुद उन्हें नहीं समझते हैं। और साथ ही साथ में ये हो जाता है कि हमारे रिश्तों में एक कड़वाहट जगह ले लेती है। हम कहते हैं ना कि लाइफ में रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बट वो जब आप इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो वो कड़वाहट धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपके रिश्तों में जगह लेने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में इसका असर कम हो तो इसके लिए भी हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताना चाहेंगे, जो कि ये है कि अगर आप ऐसी कंडीशन को अपने रिश्ते में फेस कर रहे हैं जहाँ पर आप चाहते तो हैं सेंसिटिव होना लेकिन अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से आप हो नहीं पाते हो, आप प्यार जताना चाहते हैं पर जता नहीं पाते, कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, आपको बस ये लग रहा है कि आप सही हो और सामने वाला गलत, या फिर हमें जानबूझकर सामने वाले की गलतियां दिखने लगती हैं, हम सबसे पहले उसी की गलतियों को टारगेट करते हैं, कुछ भी होता है तो हम कहते हैं नहीं ये तुमने किया, ये तुम्हारी वजह से हुआ। और कई बार तो हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं पर हमारे मेंटल कंडीशन की वजह से वो चीज़ें बद से बदतर होती चली जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा हो रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये है कि आप टॉक थेरेपी ज़रूर लीजिए। टॉक थेरेपी का मतलब होता है कि हम खुद से बातें करें, क्योंकि हम जितना खुद से बातें करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर आउट होती जाएंगी। अगर ये प्रॉब्लम आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एक सीरियस मेंटल कंडीशन के रूप में हो जाती है, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि जाएं अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलें और साइकोलॉजिकल थेरेपी लें। क्योंकि जब आप जाएंगे काउंसलिंग होगी आपकी, आपका साइकोलॉजिस्ट आपसे बातें करेगा तो वो आपको बेटर बता पाएगा कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करें। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बहुत छोटे से ये चीज़ें शुरू होती हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर हमें हमारी रिलेशनशिप में एक सीरियस मोड पर आकर के वो बिल्कुल ख़राब कर देती है चीज़ों को। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना है, कम सोचना है और ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने नहीं देना है।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी रेडियो पे मिल रही है, रेडियो ज्ञान असली पे, तो जब भी हम किसी मानसिक विकार की बात करते हैं, किसी मानसिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि एक काउंसलर की आप हेल्प लें। अब कई लोग सोचते हैं कि काउंसलर की हेल्प लेने का मतलब है कि भाई हम तो पागल हो गए, लेकिन भाई आप पागल नहीं हुए हैं। काउंसलर जस्ट आपसे बात करेगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक ढंग से समझेगा, क्योंकि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के कई साल एक चीज़ की पढ़ाई पे लगाए होते हैं, तो जिस तरह से वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, उसे सुलझाएगा, उस तरीके से आप खुद आप नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, तो कपल थेरेपी ले सकते हैं, कपल काउंसलिंग ले सकते हैं आप, या फिर अगर एक इंडिविजुअल भी खुद की काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप पागल हो गए। पागल एक अलग चीज़ होती है, हर मानसिक विकार, हर मानसिक प्रॉब्लम आपकी जो है पागलपन में नहीं कंसीडर होता है, ये जस्ट एक काउंसलिंग है, आपकी बातें सुनी जाएंगी और उसको एक बहुत बेहतर ढंग से सुलझाया करवाया जाएगा। और रही बात कपल काउंसलिंग की, तो मैं आपको बता

0: कि अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उससे आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं बनेगा बल्कि और मजबूत होगा, क्योंकि आपको आपकी काउंसलर, आपका जो भी काउंसलर होगा, वो आपके रिश्ते को एक ऐसे ढंग से, एक ऐसे नज़रिए से पेश करेगा जहां शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। और रही बात कि हमारे ऐसी ये कमी है, वो कमी है, बताओ इनकी वजह से काउंसलर के पास जाना पड़ता है, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा भद्दापन नहीं है कि आप काउंसलर के पास जाएंगे तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रास्ता होता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, अगर आप इस पर डिले करते हैं, इसको टाल रहे हैं और दुनिया के डर से अगर आप चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब ही होती जाएगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी कोई भी मेंटल कंडीशन है या कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में है, तो आप जाएं, अच्छे से अपने काउंसलर से बात करें, थेरेपी लें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। और इसी के साथ हमारे चैट बॉक्स में दो लिसनर्स हमारे छूट गए थे, तो उनका भी हम वेलकम कर लेते हैं, जो कि हैं अमरीश शुक्ला जी, और साथ ही साथ में हमारे एक और लिसनर हैं जो कि हैं रितिन सिंह। तो हेलो, कैसे हैं आप दोनों, ज़रूर बताइए। तो चलिए अब चलते हैं लिसनर लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले एक बहुत ही प्यारे से गाने पे, क्योंकि इस सॉन्ग को सुनेंगे और इस सॉन्ग के मिड में ही आएंगे आपको टाटा बाय बाय करने के लिए। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हैं वापस बीच में एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़का है जब वो हंसता है, लेकिन भाई हर हंसी प्यार नहीं होता। वो आपने हंसी पे और लड़के लड़की पे कई गाना सुना होगा, हंसी तो फंसी, और ये जो आप करंटली सुन रहे हैं, तो भाई हर हंसी प्यार नहीं होता है। और इतना रोमांटिसाइज किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, और हमें चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। और इसी थॉट के साथ, क्योंकि भाई वक्त हमें इजाज़त दे रहा है, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे, लेके आपका अपना प्रोग्राम सुन सहेली।
1: तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिए, और गर्मियाँ बहुत है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर स्किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टी स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टी स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
8: क्या?
1: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून, हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। 89.6 FM आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोंदा शहर की धड़कन। आवाज है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी आरजी उन्नति की। मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। इस शुरू की महफिल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, जिसका नाम है कॉल ट्यून गोंडा। आप ये अपने डिमांडेड शो का प्रोग्राम, और आज है फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे स्पेशल। दो घंटे लगातार नॉन स्टॉप आपकी अपनी फरमाइशें लेने वाली हैं आपकी आरजी उन्नति। तो भैया उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए 6393316429। हमें भेज दीजिए अपनी फरमाइशें प्लस अपने मैसेजेस, अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स जो आपको किसी को डेडिकेट करने हैं, या फिर जो आपकी फरमाइश है। तो आइए आपके कार्यक्रम को, आपकी इन फरमाइशों के सिलसिले को शुरू करते हैं और चलते हैं पहली फरमाइश की तरफ, जो आई है समरीन जी की, और उन्हें सुनना है प्रिंस फिल्म से तेरे लिए। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गाने को अतीफ असलम की आवाज़ में, श्रेया की आवाज़ में। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना स्टे ट्यून्ड।

हां जी, श्रेया की आवाज और अतीफ असलम की आवाज में आप सुन रहे हैं तेरे लिए प्रिंस फिल्म से सचिन गुप्ता का म्यूजिक और बोल है समीर साहब के खूबसूरत से गाने के बाद आपका वापस स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम क्वालिटी उन गोरा में, आपके फरमाइशों का कार्यक्रम, आपके डिमांडेड सॉन्ग्स का कार्यक्रम। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और हमारे साथ चैट बॉक्स में आइए देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया है, किस किस ने अपने पैगाम हम तक पहुंचा दिए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं कुमार टेलर्स फ्रॉम गौरा चौकी, आपका स्वागत करते हैं करते क्वालिटी गुना में। सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम भवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया मैम, राधे राधे। शुभ दोपहरिया आपको भी, राधे राधे। कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं क्वालिटी गुना में। मनी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्लस हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से सबलू जी। तो भाई आप सभी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं वो लोग जो हमें सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी या रेडियो गार्डन से, आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं क्वालिटी गुना में। फिलहाल हम आपको बता दें भाई सचिन शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आप सुन रहे कॉलोजी गुना 99.6 FM रेडियो ज्ञान, असली आपकी अपनी गुना शहर की धड़कन। और जिनकी फरमाइशें अभी तक हम तक नहीं आई हैं, जनाब इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि वक्त हाथों से बहुत जल्दी निकल जाता है, स्पेशली जब भी मैं 2 घंटे के लिए आती हूँ, पता नहीं क्या हाँ टाइम निकल जाता है। तो डाइए अपना फ़ोन डायल कीजिए 6393316429 और भेज दीजिए अपनी फरमाइशें हम तक। और अगली फरमाइश की तरफ चलने से पहले भाई बता दें, आज हमारे एक बहुत ही प्यारे लिस्टनर जिनका नाम है राम भवन जी, उनकी है आज एनिवर्सरी। क्या बात है, तो भाई मेरी तरफ से और हमारे बेहद ही प्यारे लिसनर्स की तरफ से आपको हैप्पी एनिवर्सरी, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, तो आइए उनके लिए गाना प्ले कर देते हैं उन्हीं की डिमांड पर, ऑफ कोर्स छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी। क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत गाना, और आई थिंक ये गाना उनकी वाइफ को डेडिकेटेड भी होना चाहिए, है कि नहीं है? फिलहाल आप ही के लिए होगा आई थिंक। आप इंजॉय कीजिए एनिवर्सरी के इस खूबसूरत मौके पर खूबसूरत से गाने को, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि होने वाली है सबलू सावंत जी की। स्टे ट्यून्ड।

छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथ ही मरते दम तक। अनुराधा एंड मोहम्मद अजीज की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। रविंद्र जैन का संगीत है और रविंद्र जैन के ही बोल भी हैं। इस खूबसूरत गाने को डेडिकेट किया है राम भवन जी ने, फरमाइश की है राम भवन जी ने, जिनकी आज है सालगिरह। तो भाई एक बार वापस से आपको आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं मुस्तफ़ा जी फ्रॉम सऊदी, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड अब्दुल जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं हम जले तो सब चिराग समझ बैठे, हम महके तो सब गुलाब समझ बैठे, हर लफ्ज़ों का दर्द मेरे लफ्ज़ों का दर्द किसी ने नहीं देखा, शायरी पढ़ी तो सब शायर समझ बैठे। क्या बात है, बहुत खूब लिखा है आपने। मनु शर्मा जी ने बहुत सारे इमोजी सेंड किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सबलू सावंत जी की, जो सुनना चाहते हैं दीवाने प्यार के हैं हम, अजय देवगन पर फिल्माया गया गाना कुमार सानू और उदित नारायण प्लस अलका जी की आवाज़ में। बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा अपनी आर्जी नदी के साथ।

बनफ्शा जी हमारे साथ जुड़ी हैं सीतापुर से, लिख रही गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप आज? मेरे यहाँ तो बहुत ही अच्छा मौसम है, आपके यहाँ मौसम कैसा है? भैया हम आपके यहाँ तो मौसम वाला हो रखा है, लेकिन हमारे यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा गर्मी वाला है, लेकिन बढ़िया चल रहा है, मतलब ओके ओके। आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून प्रोग्राम में।

सबलू जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं प्यार के हैं हम दीवाने, अलका जी, उदित जी और कुमार सानू की आवाज में अजय देवगन उर्मिला पे फिल्म आया गया है। खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया आपके अपने कॉलर ट्यून गुना में। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सुरेंद्र यादव जी की और उनके साथ हम आपको बता दें कि दीपांशी तिवारी जी हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गई हैं। आपका स्वागत करते हैं दीपांशी जी, जो लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? आपका इस्तकबाल करते हैं क्वालिटी उन गोंडा में। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा, आपका भी स्वागत करते हैं। और उन्होंने भी लिखा है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। आप बताइए आपकी दोपहरिया कैसी जा रही है? फिलहाल आई एंजॉय करते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश पर, उन्हीं का एक प्यारा सा डिमांडेड गाना। और मुझे जरूर बताइएगा भैया उनकी फरमाइश आपको कैसी लगी। किशोर कुमार की आवाज में दोस्ती पर फिल्माया गया गाना, याराना फिल्म से भोले ओ भोले। स्टे ट्यून्ड।

अगर सच में ऐसे कोई दोस्त होते हैं ना जो रूठने पर इस कदर मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं तो रूठने में मजा आता है और हमें मनाने में भी बड़ा मजा आएगा। फिलहाल मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ पर हैं, मेरे रूठने पर मुझे ऐसे मनाने नहीं आते। फिलहाल आप मनाते हैं अपने दोस्तों को। सुरेंद्र जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं खूबसूरत सा गाना, और हम आपको बता दें किशोर कुमार की आवाज़ है, याराना फिल्म से है, और ये फिल्म उन सबको बहुत पसंद आई होगी जो दोस्ती पर यकीन करते हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म जो है थोड़ी फ्रिक्शनल टाइप की है, ऐसी ज़िंदगी नहीं होती, ऐसे दोस्त नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो लोग दोस्ती पर यकीन करते हैं या फिर जिनके पास ऐसे दोस्त हैं वो हैं बहुत ज़्यादा लकी। तो अपने फ्रेंड को ज़रूर भेजिएगा गाना। और इसी के साथ आइए चलते हैं मेरी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की, और उसके बाद है मनीष शर्मा जी की, सुनील कुशवाहा जी की। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, इन्जॉय करते रहिए आपके अपने कॉल ट्यून गुना को, अपनी फरमाइशों के कार्यक्रम को, अपनी आर्जुमती के साथ। और देवी प्रसाद जी सुनना चाहते हैं छोटा सा लेकिन सैड कर देने वाला गाना, जहां खुशी मिलती है सोना। तो आइए भैया सुनिए, खुशी देकर आते हैं सोना को, यानी कि सोना को, और आप एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुना। स्टे ट्यून्ड।

रवि प्रसाद जी की फरमाइश पर आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। और भैया हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून घूंटा, और क्योंकि आपको याद नहीं है इसीलिए आप अपनी फरमाइशें हम तक भेज नहीं रहे हैं और हम आपका इंतजार करें। मेरा फोन जो इधर खाली पड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अभी तक किसी की फरमाइश हम तक क्यों नहीं आई। उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429, अपनी फरमाइशें हम तक भेज दीजिए। और आइए चलते हैं अगली फरमाइश, यानी कि मनी शर्मा जी की फरमाइश की तरफ। और मनी शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, लेकिन चैट बॉक्स में इतनी छिपकलियां आपने क्यों छोड़ रखी हैं? आपको पता है हमारी जितनी भी फीमेल्स या फिर मेल्स जिनको भी छिपकलियों से डर लगता है, वो सारे लिसनर इधर उधर भाग जाएंगे और आपकी छिपकलियां उनको डरा देंगी। आपने एक दो नहीं, ये सैकड़ों की तादाद में जो छिपकली भेजी है, प्लीज इन्हें वापस ले लें। और हम आपको सुनाते हैं अभी की फरमाइश पर एक प्यारा सा गाना। आपने सुना, आप सुनना चाहते हैं लुट गए, जो कि इमरान हाशमी पर फिल्माया गया गाना है। और ये गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में है, बहुत पॉपुलर सॉन्ग रहा है अपने टाइम का, आई थिंक ट्रेंडिंग सॉन्ग था उस वक्त का, जो आज हमारे मनी शर्मा जी ने फरमाइश किया कॉलर ट्यून घोटाले। तो आप भी अपनी फरमाइशें करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते इस गाने के इस बार।

भाई इतनी खूबसूरत और इतने बे इंतहा प्यारे गाने के बीच में गोलियों की आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं भाती है, और मुझे लगता है कि इस लव स्टोरी का अंत थोड़ा अच्छा हो सकता था, पर पता नहीं क्यों, लेकिन इमरान हाशमी ने अपनी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। फिलहाल आइए चलते हैं, आप सुन रहे हैं मनीष शर्मा जी की फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना। और ऑफकोर्स मनीष शर्मा जी कह रहे हैं कि अपना डॉग मुझे 5 निकले उधार दे दो। ये बात आपने मुझसे कह दी है, मेरी मम्मी से नहीं कहना, नहीं तो वो सचमुच दे देंगी आपको, फिर आप ही ढूंढते फिरेंगे कि उन्नति जी कहाँ गई, उनको कुत्ता कैसे वापस करेंगे। आप ये हरकतें मेरी मम्मी के साथ मत कीजिएगा, बाकी मैं नहीं देने वाली। आई लव माई डॉग। एंड इसके बाद लिखा है अब्दुल जी ने, उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे देने वाली वालों को कतार में रखना, याद रब तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है भाई। वैसे आप राइटर अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं इंस्टाग्राम पर अच्छी सी प्रोफाइल पेज में कुछ बढ़िया सा लिखकर भेजते हैं, ताकि हम आपको फॉलो कर सकें और लाखों लोग आपकी बातों को सुन सकें। यूँ तो हम भी सुना देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप एक कमाल के राइटर बन सकें। और अगली बार जब हम कोई प्रोग्राम करें उसमें किसी राइटर को बुलाएं, तो अब्दुल मजीम जी आप ज़रूर से आइएगा। एंड जो भी लिसनर्स हमारे लिखने का काम करते हैं उन सब का वेलकम कर रहे हैं अभी से एडवांस में। जब भी मेरे घर पर या फिर मेरे स्टूडियो में या कहीं भी प्रोग्राम होगा तो मैं आपको ज़रूर इनवाइट करने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश जो आई है वो आई है सुनील कुशवाहा जी की, जो सुनना चाहते हैं, मुझे तेरे जैसा लड़का चाहिए। ओहो हो, क्या बात है भाई। राज फिल्म का गाना है और आप सुनिए, ये वो फिल्म है जिसमें जब चीखें आती थी ना तो मेरी चीख भी निकल जाती थी डर के मारे। हालांकि अब मैं नहीं डरती, मैंने इतना डरावनी फिल्में देखी, इतनी हॉरर फिल्में देखी कि हॉरर मेरे अंदर आ गया, फिल्में निकल चुकी हैं, अब मुझे डर नहीं लगता, अब भूत मुझसे डरते हैं। क्या बात है, ऐसे ही आप भी काम किया करें, डर को निकाल दीजिए। फिलहाल आप इंजॉय करते रहे कॉलेज, उनको ना भेज सकते अपनी फरमाइश 6393316429 पर।

भाई हमारे फिल्मों के कलाकारों ने कभी नहीं सोचा था कि राइटर और डायरेक्टर ऐसा रुख बदलेंगे कि जिस लड़की की उम्मीद हम कर रहे हैं और इससे बोल रहे हैं कि तेरे जैसी लड़की या लड़का मिल जाए तो उसी लड़की से बचने के लिए भागना पड़ेगा, नहीं तो वो भूतनी बन के पीछे पड़ जाएगी।

क्या बात हो, क्या बात हो। और हमारे सबलू जी लिख रहे हैं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। तू जहाँ तक दिखाई देता है उसके आगे मैं देखता ही नहीं। क्या बात है भाई, ऐसी ऐसे लोग सच में बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे लगते हैं। और स्पेशली जहाँ आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों के दिमाग में इतना डाउट चल रहा है, आपकी इस लाइन ने लोगों के हज़ारों डाउट को ख़त्म करने की पावर भी रखती है, आपको पता है बात। जी हाँ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारे चैट बॉक्स में तो काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे इमोजीज हमें सेंड किए जा चुके हैं, थैंक यू सो मच। और दीपांशी जी कह रही हैं कि भैया उन्हें आज भी डर लगता है, डरने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को छोड़ के। वो कभी कभार ऐसा होता नहीं, हम एक निकल रहे होते हैं, बीच में आईना पड़ जाता है, खुद की परछाई से अगर आप डर गए तो ठीक है, दूसरों को भी खौफ आना चाहिए, लेकिन हाँ आपको किसी से नहीं डरना है। वैसे मैं मजाक करती हूँ, खुद से भी नहीं डरना है, ना किसी को डराना है। डरना डराना साइड हटाइए, मोहब्बत की बातें कीजिए, मोहब्बत से बातें कीजिए। और ये मत पूछिएगा मोहब्बत कौन है, क्योंकि मुझसे जब भी मैंने किसी से कहा है ना इज्जत से बात करो, मोहब्बत से बात करो, तो वो कहते हैं हाँ नंबर मिला के दे दो, लो बतिया ले। इसके आगे मेरे पास बोलने के लिए नहीं जाता कुछ। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ अपनी आशीर्वादी के साथ, और हम इंजॉय कर रहे थे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश। और अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी फरमाइश की तरफ चलने का। दूसरी फरमाइश जो आई है वो आई है कुमार टेलर्स जी की, और कुमार टेलर्स जी सुनना चाहते हैं उनकी फरमाइश का गाना। ऑफकोर्स मेरी फरमाइश का तो सुनेंगे नहीं, आई विश कोई मेरी फरमाइश को भी फरमाइश कर दे, जिससे मैं भी अपनी फरमाइश को आपकी फरमाइशों के सिलसिले में इंजॉय कर सकूं। और ये बन चुका था मेरा एक्टिंग ट्विस्टर, जो मैंने आपको यूं ही सुना दिया था बेवजह, बिना किसी कारण के। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए कुमार जी की फरमाइश पर, तुझे लेने होंगे मेरे संग फेरे। इसको कहते हैं धमकी, आपको ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको लेना ही पड़ेगा, और इस गाने में साफ तौर पे बोला जा रहा है। फिलहाल आप सुनते रहिए, रोमांटिक गाना है, एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत कर लेते हैं कमल नयन जी आपके अपने शो कॉलोनी गुना में। एंड शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, शाहनवाज अंसारी। तो लिख रहे हैं, हेलो दीदी, हेलो कैसे हैं आप, आपका भी

हां जी, तो आप सुन रहे थे कुमार टेलर्स की फरमाइश पर एक खूबसूरत गाने को। और हमारे दीपांशु जी का भाई एक शिकायत है और वो पूछ रही है हमारे लिसनर से, क्या हो गया है सबको, आज सब इतने इमोशनल गाने क्यों सुन रहे हैं? हां जी बताइए, क्यों सुन रहे हैं आप इतने इमोशनल गाने? आप अच्छे वाले गाने भी नहीं सुन रहे, मतलब अच्छे वाले डांसिंग मोड डिस्को दीवाने वाले सॉन्ग, आई थिंक आपकी यही फरमाइश है। फिलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए हमारी अगली फरमाइश जो कि है अजीज जी की, और वो सुनना चाहते हैं ऐसे पोशाक में मेरा यारा। आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टडी।

भाई अजीज जी, आपके गाने की तारीफ करते हुए अब्दुल जी ने आपको शुक्रिया बोलने को कहा है भाई, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस गाने की फरमाइश की। और अगली फरमाइश आई है राकेश वर्मा जी की, तो आइए सुन लेते हैं। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीते हैं। अब इस गाने को एंजॉय करने जा रहे हैं राकेश वर्मा की फरमाइश पर, आपके अपने कॉलर ट्यून गुना में, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यही गुना शहर की धड़कन पर। आवाज़ है आपकी अपनी आरजू रति की, जो मौजूद है आप सभी के साथ फ्राइडे के स्पेशल वाले प्रोग्राम में। तो जिनकी फरमाइशें अभी नहीं आई हैं, कृपया करके वो अपना फ़ोन उठाएं और डायल करें 6393316429 और भेज दें अपनी फरमाइशें हम तक, ताकि हम साथ मिलकर आपकी फरमाइश के, आपकी डिमांडेड सॉन्ग को, प्लस आपके पसंदीदा गाने को बॉलीवुड हिंदी वाले एंजॉय कर सके।

0: राकेश वर्मा की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं हम दीवाने हैं इश्क करते हैं। आपने उस गाने को एंजॉय किया 90s का सुपर डुपर हिट सॉन्ग और आपने एंजॉय करते करते हम आपको बता दें भाई कुछ लोगों की फरमाइशें हैं। जी हाँ, जैसे आपके घर में ना बच्चे लड़ते हैं, आपने देखे होंगे जो छोटे भाई बहन होते हैं या दोस्त होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और उनकी नोकझोंक बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही हमारे चैट बॉक्स में कुछ प्यारे प्यारे लिसनर हैं जिनकी नोकझोंक हमें बड़ी पसंद आती है और जब वो शिकायत करते हैं आ करके कि ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, तो मुझे बिल्कुल उतनी ही हंसी आती है, उतना ही मज़ा आता है जितना मैं छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई देख कर हंसती हूँ। इतनी प्यारी नोकझोंक, क्या बात है भाई, ऐसे लड़ते रहिए, चांद तारे सजाते रहिए। और हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है हमारे निब्बर जी की, जो सुनना चाहते हैं, ये पब्लिक है ये सब कुछ जानती है। बिल्कुल सही फरमाया, वैसे ये पब्लिक है ये सब जानती है, वो भी जानती है जो कोई नहीं जानता या नहीं जानना चाहता है। तो आप इस गाने को एंजॉय करते रहे। कॉल ट्यून को नाम है, मैं मिलती हूँ अगली फरमाइश पर जो कि होने वाली है रविंद्र जी की, अब्दुल मजीम जी की, मोनू जी की, आचल जी की। आप बने रहिए मेरे साथ सुनते रहिए कॉल ट्यून को आपकी अपने रेडियो कैनल 99.6 FM पर।
1: ये पब्लिक है, पब्लिक ये

और मेरा इस पब्लिक से एक सवाल है, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो रात में खाना खाने के वक्त या फिर खाना खाने के बाद जिनके घर में स्पेशली गर्मियों में लौकी तुरई भिंडी करेला बन रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम पर आजकल कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी डिशेज आ रही हैं और लोग उन्हें खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको देखकर आपको भूख लगती है और आप सोचते हैं ये रात की आधी रात में ही काहे आता है, जब मेरा घर टंडा बना होता है ये तभी क्यों आता है। अगर आप भी उनमें से एक है ना तो अपनी ओपिनियन जरूर चैट बॉक्स में लगाइएगा, क्योंकि ये दुख हम आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है।

पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। और इस गाने की जो फरमाइश की थी वो की थी भाई निब्बर जी ने, और उन्होंने सच बोलते हुए आज के इस प्यारी सी फरमाइश को आपने एंजॉय किया। आप बात कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रबल मिश्रा जी। और प्रबल मिश्रा जी, हम आपको एक बात बताएं, हमारे घर में भी एक भाई है हमारे, उनका नाम है प्रबल। एंड कमाल की बात यह है कि उनका पूरा नाम है प्रबल मिश्रा, सेम टू सेम आपके जैसा। फिलहाल वो मेरा छोटा भाई है, कज़न, हाँ कज़न है वो मेरा फिलहाल के लिए। आप इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, और हम चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश जो है वो है रविंद्र जी की, वो सुनना चाहते हैं साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या बात है भाई, ऐसे रोमांटिक गानों की फरमाइश आती है तो हम गार्डन गार्डन हमारा दिल हो जाता है, जिसमें कमल के फूल के साथ साथ गुलाब के फूल भी खिलाते हैं। और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, आपकी अपनी फरमाइशों का कार्यक्रम, बच चुके हैं 4, यानी कि बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपके साथ हम मौजूद रहने वाले हैं। तो अगर आपकी फरमाइश अभी भी नहीं आई है तो भेज दीजिए अपनी फरमाइश, इंतजार मत कीजिए, नहीं तो 1 घंटा भी गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं लग पाएगा।

आप सुन रहे हैं रविंद्र जी की फरमाइश पर साथिया बिन तेरे दिल लागे ना। आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांटिक गाने को एंजॉय किया। सनी देओल तब्बू के ऊपर फिल्माया गया गाना कुमार सानू और शिल्पा की आवाज में। सबलू जी लिख रहे हैं, इंसान तब बदलता है जब उसे दर्द सहना पड़ता है। और हम आपको बता दें, दर्द की खूबसूरत बात यह है कि वो आपका वो हिस्सा निखारता है जो आपको पता भी नहीं होता, इसलिए दर्द होना भी जरूरी है। एंड जो लोग यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं खूबसूरती को लेकर के, तो जस्ट बिकॉज हम देखते हैं बहुत ज़्यादा एनिमेज। और एक लाइन है जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, और वो लाइन है कि वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है। वाबी साबी कहता है कि खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में है। हर एक चीज़ अलग है, और अलग है वही खूबसूरत है। तो भाई, अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है ना, तो उनकी बातों को दिल पे ना लें, दिल पे लगा कर उनको ना सोचें, क्योंकि आप अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आप बहुत हटकर हैं, बहुत अलग हैं, बहुत उम्दा हैं। आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ और सुनते हैं अब्दुल मजीम जी की फरमाइश पर उनका एक बेहतरीन सा गाना, और देखते हैं उन्होंने आज हमें क्या फरमाइश भेजी है। माँ जन्नत की कुंजी है, ये फरमाइश आई है हमारे अब्दुल मजीम जी की। तो आप एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को, प्यारे से नगमे को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: माँ की खिदमत कर ले प्यारे, माँ किस्मत की कुंजी है, माँ जन्नत की कुंजी है। और आप सुन रहे हैं ये गाना, ये नगमा अब्दुल मजीद जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश आई है मोनू जी की, जो मैं सुन रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग से, और उन्होंने हमें भेजा है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और। ओ माई गुडनेस, क्या बात है भाई, ये गाना हमें काफ़ी दिनों की बात सुनने जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो इस गाने का इंतज़ार मुझे बहुत लंबे समय से था कि शायद कोई एक फरमाइश करेगा। फाइनली मोनू जी ने फरमाइश कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल उसी जगह पर रहते हैं जहाँ हमारी पसंदीदा जगह है, यानी कि मैं अक्सर सोचती थी यार ट्रेन के आसपास रहने में कितना मज़ा आता, रेलवे क्रॉसिंग के उस पार रहने में कितना मज़ा आता। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई स्टूडेंट आता था और वो कहता था हम फाटक पार से आए, आई वॉज लाइक फाटक पार से आए यार, कहाँ रहते हो आप भी फाटक पार से रहते हैं? फाटक पार का मतलब है रेलवे क्रॉसिंग, हमारे बरेली में इसको यही कहते हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता।
0: दिवांशी जी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए,

भाई जब पुराने गाने लिखे जाते थे तो मुझे लगता है कलम से नहीं वो दर्द से लिखे जाते थे। इतने खूबसूरत नगमे, इतने खूबसूरत लिरिक्स। और हम चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। फिलहाल ये फरमाइश थी मोनू जी की और जो मैं सुन रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग से यानी कि फाटक पार से। और आप इंजॉय कीजिए हमारी अगली फरमाइश आंचल जी की फरमाइश पर अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आप इंजॉय करने जा रहे हैं सितारे, तो इंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि है फरीद अंसारी, धर्मेंद्र मोहन जी, रमेश कुमार जी और अरमान जी, राजू सलमानी जी, रईस जी, एहसान जी, मिश्रा जी, शहनवाज, सुरेश कुमार, मोहम्मद रफीक खान, दीपांशी, मोनी तिवारी और कमल जी। स्टे ट्यून्ड।

अरिजीत सिंह की आवाज ओए दिल को छू जाती है। किस फिल्म से आप सुन रहे थे सितारे, और अब्दुल जी लिख रहे हैं यह आपके लिए दीदी, भाई और बहन के प्यार में बस इतना अंतर है कि रुलाकर जो मना ले वो भाई है, रुलाकर जो खुद रो पड़े वो बहन है। बहुत खूबसूरत एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, यानी अगली फरमाइश की तरफ। फरीद अंसारी की फरमाइश भी आप सुनने जा रहे हैं, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकान आए, और आप एंजॉय करें इस गाने को। हम मिलते हैं अगली फरमाइश, जो कि होने वाली है धर्मेंद्र मोहन जी की। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। ऑलराइट, एंड कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है तो आपसे माफी चाहूंगी, कुछ देर के लिए आपको आई थिंक रुकना पड़ेगा, बस उसके बाद हम आपको ये गाना जरूर प्ले करके सुनाएंगे। सुनिए

फरीद अंसारी जी की फरमाइश पे आप एंजॉय करते हैं। खुदा करे की मोहब्बत में वो मकाम आए। अगली फरमाइश पर चलते हैं और एंजॉय करते हैं एक मासूम सा दिल है मेरा। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश जो हमें सुन रहे हैं आवाज विकास गोंडा से और आप एंजॉय करने जा रहे हैं उनकी फरमाइश को। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के आपकी डिमांड वाले प्रोग्राम के अंदर। स्टूडियो

नरेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे हैं एक मासूम सा दिल मेरा। और अब वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है महाराष्ट्र से रमेश कुमार की फरमाइश, मुझे रात दिन तुम याद आते रहे। एंजॉय करते रहिए इस प्यारे से गाने को, आपकी अपनी कॉलर ट्यून गुना। में मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो होने वाली है अरमान जी की, राजू सलमानी जी की। स्टे ट्यून, सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुना आपकी अपनी एफएम रेडियो 99.6 एफएम अपनी आशीनती के साथ।

सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे हैं संघर्ष फिल्म से मुझे रात दिन, वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और बहुत ही अंडररेटेड गाना भी है। ये फरमाइश की थी रमेश कुमार जी ने फ्रॉम महाराष्ट्र और आपने एंजॉय किया इस गाने की। उस पर आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि आई है अरमान जी की और देखते हैं भाई अरमान जी क्या सुनना चाहते हैं। एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंदा अपनी आरजी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 90.6 एफएम यही गोंदा शहर की धड़कन पर।

हाँ जी, तो आप सुन रहे थे अरमा जी की फरमाइश पर अब्बास का नारा, और हम चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राजा सलमानी जी की, और वो सुनना चाहते हैं मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और आज बड़े सैड सॉन्ग्स की फरमाइश आ रही है, बड़े इमोशनल गानों की फरमाइश आ रही है हमारे लिसनर्स की तरफ से। हरीश चंद्र सविता जी हमारे साथ जुड़े हैं, चल रहे वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। के जी हमारे साथ जुड़े हैं जो सुन रहे हैं मैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। प्रियन्वती जी, मैम जी, कैसी हैं आप? आज का पूरा प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इसका क्रेडिट हमारे लिसनर्स को जाता है, और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा ज़रूर कि आप कैसे हैं।

हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं राजू सलमानी जी की फरमाइश पर मेरी मोहब्बत को तरस जाओगे। और क्या दीपांश जी पूछ रहे, भैया ये हुआ क्या है सबको, हम भी पूछना चाहते हैं हुआ क्या है आप सभी को, आज आप बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं फिलहाल के लिए। आइए चलते हैं एक खूबसूरत गाने की तरफ, और ये सैड नहीं रोमांटिक होने वाला है, और ये फरमाइश आई है हमारे रईस जी की तरफ से डियर जिंदगी से, और वो सुनना चाहते हैं तू ही है। जी हाँ मैं ही हूँ बिल्कुल, और आप इंजॉय करते रहिए खूबसूरत से गाने को। मैं हूँ आपकी आर्जुनती क्वालिटी उनको ना, आप सुन रहे हैं आपके अपने एफएम रेडियो 90.6 FM पर।

ही है और आप सुन रहे हैं रईस की फरमाइश पर। रईस साहब ने बहुत ही खूबसूरत फरमाइश की थी और अगली फरमाइश आई है एहसान जी की और वो सुनना चाहते हैं दुनिया से क्या शिकवा। ओह माय गुडनेस, फिर से एक सैड सॉन्ग और दीपांशु तिवारी जी का भी फिर से एक सवाल आएगा कि आज हमारे नसीब को हुआ क्या है। एंड मनीष शर्मा जी वापस आ चुके हैं जो हमारा ही वेलकम करते हुए लिख रहे हैं, वेलकम रति जी, थैंक यू सो मच, और आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर चिंगुना में वापस से।

एहसान जी की फरमाइश के बाद आप सुनेंगे मिश्रा जी, शहनवाज जी, सुरेश कुमार, मोहम्मद रफीक, दीपांशी, मोनी तिवारी, कमल जी और एक मेरी फरमाइश पर गाना, क्योंकि भाई हमारे लिसनर्स ने डिमांड की है कि नितेश जी आज अपनी पसंद का कोई सॉन्ग सुना दीजिए। जरूर सुनाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं ऐसा जी की फरमाइश पर दुनिया से क्या शिकवा, और ये गाना है लता जी एंड मोहम्मद रफी की आवाज में, भारत व्यास की बोल है और शरद मालिक का संगीत है। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और आप एंजॉय कीजिए मुस्तफा जी की, जो हमें सुन रहे हैं सऊदी से, उनकी फरमाइश, और थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, मूड को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये फरमाइश आई है वो जो है चाइना वालों को काफी पसंद, शाहरुख खान का स्पेशल गाना मोहब्बतें फिल्म, आंखें खुली हो या हो बंद। स्टे ट्यून्ड।

होता है और आप सुन रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आंखें खुली हो या हो बंद। और इस गाने को हम एक्चुअली तब बजाते हैं जब हम गर्मी में किचन में खाना बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त गर्मियां महसूस नहीं होती ना। आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना मुस्तफा जी की फरमाइश पर, साउदी से उन्होंने फरमाइश की थी हमें। और अगली फरमाइश आई है मिश्रा जी की, और ये अगर एक रोमांटिक प्लस सैड सॉन्ग है, वो लड़की बहुत याद आती है। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: भाई इतने खूबसूरत से गाने को बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन वक्त ने इशारा कर दिया है कि अगले गाने की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी और भी फरमाइशें जो हैं वो अधूरी रह जाएंगी। तो आइए सुनते हैं शहनवाज की फरमाइश पर, नागिन सा रूप है तेरा। ओहो, हेमा मालिनी जी पे फिल्माया गया गाना है, और सोचिए कि दूसरा स्टार कौन है इसमें।
1: ये जुर्रत, ये गुस्ताखी, जान पान

शहनवाज जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं नागन स्वरूप तेरा, और चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो है हमारे सुरेश जी की। सुरेश जी सुनना चाहते हैं जवाब फिल्म से किशोर और आशा जी की आवाज में, आजा मेरी जान है जून का महीना। जून का महीना बहुत गर्म महीना होता है बाय द वे, लेकिन इंडिया वालों की चाय आज भी नहीं छूटी है, बिकॉज चाय मोहब्बत है, इश्क है, और वो इश्क ही क्या जिसमें तकलीफ ना हो। इस बात को सीरियसली इंडिया वालों ने ही लिया है, वो भी जून के महीने में खोलती हुई

सुरेश कुमार जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में आजा मेरी जान। ये है जून का महीना और अगली फरमाइश आई है मोहम्मद रफीक खान की, जो सुनना चाहते हैं चला रे डोली उठाओ मोहम्मद रफीक की आवाज में, जाने दुश्मन 1979।

0: मोहम्मद रफीक खान की फरमाइश पे आप इस गाने को इंजॉय कर रहे थे और अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ और ये फरमाइश आपको नाचने पे मजबूर कर देगी क्योंकि दीपांशु तिवारी ने सबके मूड को ठीक करने के लिए फरमाइश की है ये सौदा खरा खरा। भाई जिन्होंने भी सैड सॉन्ग्स की आज फरमाइश की थी, जिन्होंने समाज हमारा थोड़ा सा उदास बांधा था, आज उनके लिए ये फरमाइश है।
1: Yeah. Slow.

हाँ जी, दिल को तूने छुआ, दीपांशु तिवारी की आवाज़, दीपांशु तिवारी की फरमाइश में आप सुन रहे हैं ये गाना। आवाज़ तो भाई हमारे दिलजीत दोसांझ की है और सुखवीर की भी है, प्लस आप इन्जॉय करेंगे अब हमारे अगले गाने को। लेकिन ओके, तो भाई हमारी जो अगली फरमाइश आई है वो है मोनी तिवारी जी की, और बड़े ही दुखद शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि भाई उनकी जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो अब हमारे बीच नहीं है, और उनको याद करते हुए उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। तो आइए उनके लिए स्पेशली इस सॉन्ग को डेडिकेट करते हैं और एंजॉय करते हैं, अगर तुम साथ हो। स्टे ट्यून्ड।

ये गाना था मोनू तिवारी जी के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा मैंने उन्हें बताया कि उनकी फ्रेंड अब हमारे बीच नहीं है और वो उन्हें काफ़ी मिस कर रही थी। फिलहाल वक्त को मद्देनजर रखते हुए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और आप इंजॉय करेंगे अब कमल जी की फरमाइश पर ही काले कौवे काट खाएंगे। इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोला, मिलते हैं उस फरमाइश की तरफ जिसकी डिमांड हमारे कुछ लिसनर्स ने की है, और वो ये है कि उनतीजी आज आप अपनी पसंद का गाना सुनाइए। सुनते आते हैं लेकिन इस गाने के उस पार

अंजीत कमल जी की फरमाइश भी आप इस गाने को सुन रहे थे, और ये रही आपकी आखिरी फरमाइश उन सभी लिसनर्स को डेडिकेटेड जिन्होंने आज अपनी फरमाइश नहीं भेजी है हम तक, और जो इंतजार कर रहे थे लेकिन किसी कारण नहीं भेज पाए। तो ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड है जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पिछले 2 घंटे से आपके अपने कॉल ट्यून गोना में। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी या रेडियो गार्डन से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम एक्चुअली।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूँ आईके श्रीवास्तव।
2: और मैं आयुषी।
1: लेकर हाजिर हूँ गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में बाढ़पूर्व तैयारी को लेकर आईली परसोली गरियन पुरवा में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़पूर्व तैयारी के संबंध में राहत एवं बचाव कार्यों की ली गई जानकारियां। बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जनपद के 3 तहसील में बाढ़पूर्व तैयारी के संबंध में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील तरबगंज के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आईली परसोली के मजरा गरियन पुरवा में जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बाढ़पूर्व तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज 2026 का भव्य आयोजन हुआ। इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज 2026 का उद्देश्य बाढ़ से पूर्व संभावित आपात स्थिति में प्रशासन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभाग की तात्परता की जानकारी ली गई है। मॉक ड्रिल के दौरान जिलाधिकारी ने खुद पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने नाव, जीवन रक्षक उपकरण, मेडिकल टीम, पशु चिकित्सा दल एवं राशन वितरण तथा पशु चारा, दवा छिड़काव आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखें और राहत शिविरों की तैयारियां पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने कहा कि बाढ़ के समय लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, उन्हें भोजन, चिकित्सा और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय में कार्य करेंगे।
2: गोंडा में बिजली उपकेंद्र पर लाइनमैन से मारपीट, 2 पर केस हुआ दर्ज। बता दें कि नगर कोतवाली के अंबेडकर चौराहे पर बने 33/11 बिजली उपकेंद्र में 9 जून की रात एक लाइनमैन के साथ मारपीट हुई। ऑपरेटर पंचम कुमार अपनी ड्यूटी पर थे, 2 लोग वहां आए और बिजली सप्लाई को लेकर गाली गलौज शुरू कर दिए। जब पंचम ने विरोध किया तो एक आदमी ने लोहे की रॉड उठाकर उनके सिर पर मार दी। हमले में पंचम को चोट आई, हमलावर ने जान से मारने की धमकी दी। जे ए शिव प्रसाद मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोग के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये भी कहा है कि आरोपी के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की तैयारियां तेजी से। बता दें कि रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की तैयारी हो रही है, जो कि निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास सड़क किनारे सूचना बोर्ड लगवा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे फाटक पर अक्सर जाम लगने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओवरब्रिज बनने से लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी।
2: गोंडा में यूरिया खाद के लिए लगी किसानों की लंबी लाइन, धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि धान की बुआई शुरुआत होते ही गोंडा में यूरिया खाद की मांग बढ़ गई। बुधवार सुबह ही मुजैना ब्लॉक के सरकारी दुकानों पर किसान की लंबी लाइन लग गई। भीषण गर्मी में किसान सुबह 9 बजे से ही लाइन में खड़े रहे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी खाद लेने आई थी। मुजैना और माधवगंज समिति पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। खाद लेने की जल्दी में किसान एक दूसरे को धक्का मुक्की भी कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से दिक्कत हो रही है।
1: गोंडा में 15 मई से 5 केंद्रों पर होगी मक्का की खरीददारी। बता दें कि जिले में खाद एवं रसद विभाग ने मक्का खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन की नई मक्का खरीद नीति के तहत 15 जून से जनपद के 5 केंद्रों पर मक्का की खरीद शुरू कर दी जाएगी। किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदा जाएगा और खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान उनके खाते में सीधे कर दिए जाएंगे। डिप्टी आरएमओ एनके पाठक के मुताबिक गल्ला मंडी गोंडा, कर्नेलगंज मंडी, नवाबगंज गल्ला मंडी, बेलसर तथा कटरा बाजार में क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। खरीद अभियान 15 जून से 31 जुलाई तक संचालित होगा। मक्का खरीद के लिए किसान खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
2: गोंडा में नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप खत्म, हरियाणा का दबदबा रहा। बता दें कि गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिन तक चल रही अंडर 17 नेशनल रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है। इसके बाद 1000 से ज्यादा पहलवान अपने अपने घर लौट गए। इस बार हरियाणा के पहलवानों ने सबसे अच्छा खेल दिखाया, उन्होंने लगभग हर वजन में पहला स्थान जीता है। इस चैंपियनशिप में हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी के पहलवानों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही स्टेडियम पर खिलाड़ियों की भीड़ लगी रही।
1: देवी पाटन मंडल में मक्के के डंठल से बन सकेगी बायो सीएनजी गैस। बता दें कि धान की पराली से पायलट बनाकर बिजली उत्पादन का सफल मॉडल प्रस्तुत करने वाले रिसिया के व्यवसायी रामरतन अग्रवाल ने अब एक और अनुभव प्रयोग कर रहे हैं, जो कि जनपद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम है। बता दें कि देश भर में पराली मैन के नाम से चर्चित रामरतन ने मक्के के डंठल से बायो सीएनजी बनाने की पहल की है। रिलायंस कंपनी की प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद अब बहराइच के किसानों से मक्के के डंठल की खरीद शुरू कर दी गई है। प्रयोगशाला में मक्के के डंठल के नमूनों का परीक्षण कराया गया, जिसमें बायो सीएनजी उत्पादन की प्रक्रिया सफल पाई गई है। इसके बाद रिलायंस समूह से संबद्ध बायोमास सर्कुलर कंपनी के साथ समझौता कर रिसिया और मटेरा क्षेत्र में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों के खेतों से सीधे डंठल के गट्ठर बनवाकर खरीद की जा रही है। बता दें कि रामरतन के मुताबिक विशेष बेलर मशीन खेतों में पहुंचकर मक्के के डंठल को गट्ठर के रूप में तैयार करती है। इन गट्ठरों को केंद्रों तक लाया जाता है। केवल रिसिया केंद्र पर अब तक लगभग 35,000 क्विंटल मक्के के डंठल एकत्र किए जा चुके हैं।
2: तरबगंज में 44 डिग्री तापमान, गौशाला में पशुओं के लिए खास इंतजाम। बता दें गोंडा के तरबगंज में बुधवार को 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इतनी गर्मी में सड़कें और बाजार सुनसान रहे। इस गर्मी में सोनबरसा गांव के गौशाला में पशुओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहां पशुओं के लिए भूसा, दाना और ठंडे पानी का इंतजाम है। बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए डॉक्टर भी यहां पर मौजूद हैं। केयर टेकर रामजी गोस्वामी ने बताया कि भूसा और दाना काफी मात्रा में है, बस हरे चारे की कमी हो रही है। गर्मी को देखते हुए पानी को ठंडा रखने का इंतजाम भी किया गया है। गोंडा के अवध हॉस्पिटल के जनरेटर में लगी आग, बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि गोंडा के सर्कुलर रोड पर बने डॉक्टर एनएन तिवारी के अवध हॉस्पिटल के पीछे रखे जनरेटर में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हल्की हवा की वजह से आग तेजी से फैल गई और जनरेटर धूं धूं करके जलने लग गया। धुआं का गुबार देखकर वहां मौजूद लोग और पेशेंट्स डर गए, लेकिन फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल स्टाफ और आसपास के लोगों ने मिलकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। लगने की वजह अभी तक पता नहीं चली।
1: जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध शिक्षक राहत विशेष परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षक के तबादले की राह खुल चुकी है। बता दें कि दूसरे जनपद में तबादले, गैर जनपद स्थानांतरण की राह देख रहे 800 प्रसिद्ध शिक्षक के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और अन्य विशेष परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षक निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने साफ कहा है कि शासन द्वारा तय मानक के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। बीएसए अमित कुमार सिंह के मुताबिक शिक्षक स्वयं या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के न्यूनतम 40% दिव्यांग होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह कैंसर पीड़ित शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री भी सरकारी अस्पताल के प्रमाण पत्र पर आवेदन के पात्र होंगे। हालांकि निजी अस्पताल में इलाज की स्थिति में सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि डायलिसिस पर रहने वाले शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री भी सरकारी अस्पताल के प्रमाण पत्र अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं।
2: गोंडा लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 5 घायल। बता दें कि गोंडा के करनैलगंज के पास गोंडा लखनऊ हाईवे पर बुधवार देर रात भीषण हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। संतोष ढाबा के पास पहले 2 बाइक आपस में टकरा गई, लोग घायलों को हटाने लगे, तभी लखनऊ जा रही एक तेज रफ्तार SUV ने सबको रौंद दिया। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। खबर मिलते ही बीजेपी विधायक अजय सिंह और DM प्रियंका निरंजन अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
1: गोंडा में IGRS शिकायतों में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी ने कहा। बता दें कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में राजस्व वादों एवं IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायतों के गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों एवं लेखपालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का फीडबैक असंतुष्ट पाया गया है, उन सभी को तत्काल सो काज नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए। राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया है कि न्यायालयों में लंबित पुराने राजस्व वादों की नियमित एवं प्रभावी सुनवाई करते हुए अधिक से अधिक वादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
2: गोंडा में पंचायत चुनाव से पहले 81,000 मतदाताओं के नाम हटे। बता दें कि गोंडा पंचायत चुनाव के पहले गोंडा की नए वोटर लिस्ट आ गई है। जांच के बाद 81,146 लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब जिले में कुल 26,74,509 वोटर्स बचे हैं। पहले ये संख्या 27,55,655 थी। सबसे ज्यादा 12,702 नाम मनकापुर ब्लॉक से हटाए गए हैं। झंझरी ब्लॉक में 8,724, परसपुर से 7,443, बभनजोत में 7,163, मुजैना से 6,628 और कटरा बाजार से 6,042 नाम हटाए गए हैं। नाम हटाने की वजह मौत, शादी और दूसरी जगह शिफ्ट होना बताया जा रहा है।
1: जनपद गोंडा की आशा इस बार करेंगी कार बहिष्कार। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व पोलियो अभियान में किए गए काम का परिश्रमिक न मिलने पर आशा कार्यकर्ता 28 जून से होने वाले पोलियो अभियान का बहिष्कार करने जा रही हैं। आशा कार्यकर्ता यूनियन के देवीपाटन मंडल संयोजक श्याम वरण पांडे ने बताया कि इस वर्ष फरवरी मार्च में शासन प्रशासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। बकाया भुगतान होने पर ही आशा कार्यकर्ता व संगनी आगामी अभियान में शामिल होंगी।
2: गोंडा की 9 साल की काव्या शुक्ला को DM ने किया सम्मानित। बता दें कि गोंडा में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की काव्या शुक्ला को DM प्रियंका निरंजन ने सम्मानित किया। काव्या ने सामान्य ज्ञान और दूसरी प्रतियोगिताओं में 1 दर्जन से ज्यादा मेडल जीते हैं। बुधवार को काव्या अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। DM ने खुद अपने हाथों से उसे मेडल पहनाया और सर्टिफिकेट भी दिया। DM ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतने मेडल जीतना बड़ी बात है। DM ने काव्या की पढ़ाई में हर मदद का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर जगह माता पिता और जिले का नाम रोशन कर रही हैं।
1: GIT में 12 जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेला। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान GITI गोंडा में 12 जून को आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की प्रबल संभावना है। 2000 से अधिक छात्र एवं छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संस्थान प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। GITI के प्रधानाचार्य राम सिंह के मुताबिक कौशल विकास मिशन के तहत लगने वाले 1 दिवसीय मंडल स्तरीय रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 50 से अधिक प्रतिष्ठान कंपनियां अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।
2: सड़क हादसे में पूर्व स्वास्थ्य कर्मी की मौत, पोस्टमार्टम को लेकर हुआ हंगामा। बता दें कि गोंडा के 75 साल के पूर्व स्वास्थ्य कर्मी रामपाल वर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। उन्हें देर रात मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले रात में ही पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन सुबह पोस्टमार्टम करने को कह रहा था। इसी बात पर परिवार वालों ने डीएम प्रियंका निरंजन की गाड़ी रोक ली और हंगामा करने लगे। कुछ लोगों ने मेडिकल कॉलेज के गेट बंद कर दिए। बाद में डीएम ने खुद परिवार से बात की और रात में ही पोस्टमार्टम कराने का भरोसा भी दिया। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। रामपाल 15 साल पहले स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए थे। परिवार ने अस्पताल से बद इंतजामी का आरोप भी लगाया है।
1: जनपद गोंडा के विकास भवन परिसर में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकार, कानूनी सहायता, सेवाओं तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार एवं उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। जेंडर स्पेशलिस्ट ज्योत्सना सिंह ने महिलाओं को लैंगिक समानता एवं महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने कहा कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त एवं जागरूक होना जरूरी है तथा इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि बेटियां किसी भी प्रकार से बोझ नहीं है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे समाज में मिसाल बनकर देश का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलर नीतू त्रिपाठी, अलका पांडे, देवी दयाल तिवारी समेत अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे।
2: गोंडा लखनऊ हाईवे पर शव रखकर जाम लगाने वालों पर केस, 11 नामजद 50 अज्ञात पर हुए FIR। बता दें कि गोंडा लखनऊ हाईवे पर शव रखकर जाम लगाना लोगों को पड़ा भारी। मंगलवार को करनैलगंज के बोटनपुरवा सकरौर गांव के राहुल कश्यप की मौत के बाद ब्रह्मचारी स्थान के पास लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था। हेड कांस्टेबल सर्वेश प्रसाद की शिकायत पर करनैलगंज थाने में केस दर्ज हुआ। रोड जाम करने और सरकारी कामों में रुकावट डालने की धाराओं में 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई। नामजद आरोपियों में अरविंद शहाबुद्दीन, नानबाबू, पवन मिश्रा, मनोज मिश्रा, फूलचंद, सोनू बरसाती, विष्णु, मुन्ना सिंह उर्फ प्रमोद सिंह और अनिल शर्मा शामिल थे।
1: जनपद गोंडा के कनेलगंज क्षेत्र में स्थित चक्रोत गांव सभा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जन कल्याणकारी एवं विकास को समर्पित 516 करोड़ की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर लाभान्वित किया है। आयुक्त देवी पाटन मंडल, दुर्गा शक्ति नागपाल एवं जिलाधिकारी गोंडा प्रियंका निरंजन ने संयुक्त रूप से दुर्गा माता जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, उनसे क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने गोंडा के नागरिकों को इन परियोजनाओं की सौगात मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली हुई हैं। यूपी पुलिस की 60,000 सिपाहियों की भर्ती में गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के युवा भर्ती हुए हैं। अब निवेश केवल गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नोएडा में ही नहीं बल्कि गोंडा में भी हो रहा है। अब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अब चेहरा और जात नहीं देखी जा रही है, अब सिर्फ पात्रता देखी जा रही है। कोई किसी जात वर्ग का हो, उसे लाभ दिया जा रहा है। बिना भेदभाव के गांव तक हर योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
2: गोंडा एसपी ने 22 दरोगाओं के तबादले किए, कई चौकी इंचार्ज बदले। बता दें कि गोंडा जिले के कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने देर रात 22 दरोगाओं का तबादला कर दिया। कई चौकी इंचार्ज को नई जगह भेजा गया है। बता दें कि पथरी बाजार चौकी इंचार्ज धीतेंद्र सिंह को थाना खुडारे भेज दिया गया है। मिश्रौलिया चौकी इंचार्ज अंकित कुमार सिंह को थाना परसपुर, सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अजय कुमार तिवारी को कोतवाली नगर, मछली बाजार चौकी इंचार्ज साहिब कुमार को थाना मनकापुर, सालपुर चौकी इंचार्ज सौरभ कुमार सिंह को थाना तरबगंज, नियावा चौकी इंचार्ज मनोज कुमार सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। नई जिम्मेदारियां सोनू कुमार को रोडवेज चौकी, राहुल मौर्य को पथरी बाजार चौकी, संदीप कुमार को सोनी गुमटी चौकी, योगेश यादव को मिश्रौलिया चौकी, नितिन उपाध्याय को सिविल लाइन चौकी, अवनीश कुमार सिंह को धुभारा चौकी, राम प्रकाश चंद्र को मछली बाजार चौकी सौंपा गया है।
1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त के लिए 30 जून तक ई केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता बढ़ाने, डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों को ही योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सभी लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई केवाईसी अनिवार्य कर दी है। चालू वर्ष की ई केवाईसी प्रक्रिया 30 जून 2026 से पहले पूरी करना आवश्यक होगा। उप कृषि निदेशक गोंडा संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा तक ई केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी आगामी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। किसानों की सुविधा के लिए ई केवाईसी के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे फेसियल ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम जनसेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक ई केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है। कृषि विभाग के न्याय पंचायत एवं विकास खंड स्तर के कर्मचारी के माध्यम से भी फेसियल ई केवाईसी कराई जा सकती है। उप कृषि निदेशक के मुताबिक वर्ष 2019 से पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ न प्राप्त कर पाने वाले किसानों के लिए भारत सरकार ने पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे किसान पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के लिए फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं सीडीओ ने तहसील मनकापुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याएं। बता दें कि शासन की मनसानुरूप जनसामान की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसील मनकापुर में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक गोंडा, सीडीओ गोंडा ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं समयबद्ध गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया। जन सुनवाई के दौरान तहसील मनकापुर में कुल 169 प्रार्थना पत्र मौके पर प्राप्त हुए, जिसमें 15 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिए गए हैं। शेष प्रार्थना पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रकरण एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करते हुए आख्या तहसील में उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा दिए गए हैं। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी अनुराग प्रियदर्शी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतलाल, उप जिलाधिकारी मनकापुर अवनीश त्रिपाठी, प्रभारी तहसीलदार सुभद्रा प्रसाद, परियोजना निदेशक DRDA सुशील कुमार, जिला पंचायत राजाधिकारी लालजी दुबे आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।
3: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें व चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकलें। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना स्लेट 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला। फिलहाल इस समय आरजी बीना वाला नहीं है जी, और वो जल्दी ही आपको दर्शन देंगी, आपके इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होंगी। और जो इंतजार के लम्हे होते हैं साहब, वो बड़े कमाल के होते हैं। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हो गई है दिन में घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छू कर नहीं देखा। जी हाँ, कभी कभी इंसान बाहर से सख्त दिखाई पड़ता है, अंदर से बड़ा ही नर्म होता है। कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियों में लोग हैं जो दर्ज हो गए, बाहर से बहुत सख्त और अंदर से बहुत नरम दिल। उनके दिल में क्या है वो शायद जता नहीं पाए और लोग उनको समझ नहीं पाए। जी हाँ, बिना किसी नाम के आज जी आपका वेलकम है, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। बबलू सीस इंडिया मुंबई से, शुभ संध्या मनु जी आपको भी। और आज मनु, पता नहीं था कि आज आप आएंगे, मैंने मैम को लिखा था, कोई बात नहीं, आपने मैम को लिखा था फिर दोबारा हमको लिख दिया, तो ये तो बात बराबर हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कष्ट करें अपना नाम लिख दें तो हम जरा आपको आपके नाम से पुकार लें, बड़ा प्यारा सा नाम होगा, आपके माता पिता ने वालिद वालिदैन ने अगर रखा होगा तो बहुत ही खूबसूरत नाम होगा, ये मैं जानता हूँ। मतलब इतना खूबसूरत नाम और आपने उस नाम को छुपा रखा है, तो अपने नाम से आ जाइए, ताकि आपका नाम तो पढ़ें, फिलहाल क्या पढ़ें आपको। चलिए सुनाते हैं प्यारा सा नगमा और आते हैं इस प्यारे से नगमे के बाद। फिलहाल हमारे दिल में आपके लिए क्या है सुनाते हैं आपको, हमारे दिल में है आपके

जी हाँ, तो भाई दिल लगाया और इसके पश्चात किसी बेनाम इंसान ने हमारा नाम भी ले लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनु सर, इसका मतलब आप जान रहे हैं जी, कोई बात नहीं। आप अफसोस ये है कि हम आपको नहीं जानने। सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। शुभ संध्या, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। वक्त और हालात ने इतना सिखा दिया, अब किसी पर भरोसा करने से डर लगता है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है या मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, तो एक लाइन आती है किसी गीत में कि देखे हमें नसीब से अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। कभी कभी ईश्वर हमको वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, वो हमको वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। समंदर जिसको देना हो उसे कतरा नहीं देता, खुदा अपने चहेतों को कभी दुनिया नहीं देता। तो हो सकता है कि हम छोटी सी चीज़ मांग रहे हों, वो हमको बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता हो। अब सोचिए कि अगर हम अंबानी के पास पहुँचे और कहें कि जागरण कराना है, 501 रुपए का चंदा काट दीजिए, तो क्या होगा? वो हंसेगा, कह रहे हमसे 501 रुपए मांग रहे हैं। ऐसे कई जागरण वो करा सकते हैं। सोचिए तो जो ऊपर वाला है, हम उसके दरबार में जाते हैं तो छोटी चीज़ मांगते हैं, जबकि कहा जाता है कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। वो सब कुछ देने वाले हैं और उनसे भी हम बहुत कम मांग पाते हैं। हमको लगता है यही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए वही ज़्यादा होता है। तो हो सकता है उसने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा हो, इसलिए आपको छोटी चीज़ न दे रहा हो। ज़िंदगी जब कुछ न दे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ और बेहतरीन देना चाहती है।

मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यही है। और अगर आप इस चीज को मानते हैं तो यकीन मानिए आपका जो अपने आप से बात करते हैं वो नकारात्मकता दूर हो जाएगी। कहा जाता है इंसान के विचार कैसे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। विचार होते कैसे हैं? विचार बनते हैं उन चीजों से जो आप स्वयं से बातचीत करते हैं। अगर आपकी स्वयं से जो बातचीत है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप स्वयं से बात करते हुए नकारात्मक पहलू को देखेंगे तो आपकी बात, आपकी थिंकिंग नकारात्मक होती चली जाएगी। तो जो खुद से हम बात करें वो अच्छी बात करें। अक्सर हम खुद से ही बात करते हैं, पता नहीं मेरी तकदीर में क्या लिखा है, क्या होगा क्या नहीं। अरे ठीक है, वही है सोई जो राम रचि दाखा। और कहा जाता है कि विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुतु जीव निसंग। कुछ नहीं घटता और कुछ नहीं बढ़ता, तो हमारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर हम सोचे क्यों नकारात्मक? हम सोचे अच्छा, हो सकता है मिल भी जाए अच्छा। और अगर नहीं मिल भी जाए अच्छा, तो अगर हमने सोचा कि चलो ये नहीं मिला इसका मतलब कुछ और मिलना है, तो उसे वो देखिए वो अच्छा लगेगा आपको कि हाँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब NDA का इंटरव्यू नहीं फेस कर पाए, फेल हो गए, तो उनके मन में आया कि आत्महत्या कर लें। हरिद्वार में था इंटरव्यू और वहीं पर गए, तो वहाँ पर पहाड़ों पर लोग सैर कर रहे थे, यही गर्मियों की ऋतु थी। एक संत ने देखा कि एक लड़का है जो इधर उधर टहल रहा है, तो सोचा कि जब यहाँ से पर्यटक चले जाए तो यहाँ से छलांग मार के नीचे कूद के जिंदगी समाप्त कर लेंगे, क्योंकि NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और पैसा वो अपनी बहन से लेकर आए थे और बहन ने जेवर गिरवी रख करके पैसा दिया था, इतनी गरीबी थी। भाई ने कहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आऊँगा, पैसा मिल जाएगा, आपको पैसा दे दूँगा, आप जेवर छुड़वा लीजिएगा। तो बहन ने भी भाई के लिए इतना किया। भाई और बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे पाकीज़ा रिश्तों में से एक मैं मानता हूँ, और मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि आई लव माई सिस्टर वेरी मच, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बहन को। तो लड़का उदास था, सोचा कि आत्महत्या कर लेते हैं। सन देख रहे थे, बेचैन है। पहुँचे उस लड़के के पास और उससे पूछा, बेटा बड़ी देर से देख रहा हूँ तुम बेचैनी से कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्या बात है? जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उससे बेहतर है कि एक सच बोल दीजिए। उस लड़के ने जो सच था वो बोल दिया कि मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया था, मुझको उम्मीद थी, 100% यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पैसे नहीं थे, मेरी बहन ने जेवर रखकर पैसे मुझको दिए, इधर से जाने का किराया भी नहीं है मेरे पास, तो अब जी कर क्या करेंगे, जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया। संत ने कहा बस, आज भी वो आश्रम उपस्थित है हरिद्वार में। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ चलो, आत्महत्या कल कर लेना, आज का दिन नहीं ठीक है। गए शाम को, खाने वाना खिलाया, बिठाला, सुबह हुई, जितने पैसे की आवश्यकता थी उस बालक को संत ने वो रुपए दिए और कहा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी अगर तुम्हें कुछ नहीं देती तो इसका मतलब कुछ बड़ा देना चाहती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उस लड़के ने इस बात को गांठ बांध कर रखा। वो लड़का आगे चलकर इसरो में वैज्ञानिक हुआ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उसे जाना गया, और कुछ दिनों के पश्चात वो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति अर्थात हमारे देश के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर उस दिन वो लड़का आत्महत्या कर लेता छोटी सी बात के कारण, तो जिंदगी शायद हिंदुस्तान अभी परमाणु बम न बना पाता। एक व्यक्ति की सोच ने दुनिया को बदल के रख दिया। तो अगर आपको जिंदगी कभी कुछ न दे, कभी कुछ दोस्त
गलत मिल जाए आपको, मोहब्बत में बेवफाई मिल जाए, तो ये मत सोचिएगा कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई। ये सोचिए कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर आपने कभी अब तो खैर मोबाइल आ गया, लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, पहले कैमरा चलता था तो कैमरे में रील पड़ती थी, तो रील को धुलाने के लिए जो लोग जाते थे, यहाँ धोई नहीं जाती थी, लखनऊ में धोई जाती थी, तो वहाँ पर एक बार मैं गया यूं ही ऐसे ही, और तो जिस कमरे में वो लेकर रील धोने गए उस कमरे में एकदम डार्क था पूरा कमरा, मतलब रील निकालने से पहले उन्होंने सारी लाइट साफ कर दी, सब लाइट ऑफ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एकदम अंधेरा कर दिया क्यों? उन्होंने कहा अगर उजाले में हम इस रील को धोएंगे तो जो तस्वीर आएगी वो ब्लर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ने कहा वाह क्या बात है, इसका मतलब जो चीज़ ज़्यादा अंधकार झेलती है वो उतनी ही प्रकाशित होकर बाहर आती है, उतनी ही अच्छी बनती है। ज़िंदगी भी उस कैमरे के रील की तरह है, कभी कभी नकारात्मकता ज़्यादा आ जाए तो ये समझिए कि सुख के दिन अब आने वाले हैं। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं पीवी शैले को पढ़ता हूँ, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो बसंत को आने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात अगर दुख ने दस्तक दे दी है तो इसका मतलब सुख आपके दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है, बस थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखिए। ज़िंदगी के इस सफ़र में हर मोड़ पर एक नया सबक मिलता है, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। और कहा भी जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखते रहिए, ज़िंदगी सीखने रहने का ही तो दूसरा नाम है साहब, हम सीखते हैं आप सीखते हैं। और चलिए अब चलते हैं मोहब्बत की शुरुआत करते हैं, इब्तिदा मतलब होता है शुरुआत। आइए आपको एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, मतलब मोहब्बत की शुरुआत हुई और हम सारी रात जागते रह गए। बहुत ही प्यारी फिल्म है हरियाली और रास्ता, और गीत सुनेंगे तो शायद आपकी तबीयत और खुश होगी। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गणेशलीट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, मैं हूँ एक बादल आवारा। दीपांजलि ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, गुस्से में आकर कभी किसी को गलत बातें मत कहना, क्योंकि गुस्सा तो कुछ देर के बाद शांत हो जाता है लेकिन कई हुई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा सुधार करूंगा मैं, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं दीपांशु जी। मैं ये कह सकता हूं कि जब आप खुशी में हों तो किसी से वादा मत कीजिए, और जब आप क्रोध में हों तो निर्णय मत लीजिए। ये दो चीज़ें अक्सर कष्टकारक रही हैं। जैसे देवासुर संग्राम चल रहा था और कैकेयी राजा दशरथ का रथ हाँक रही थी, युद्ध के दौरान पहिया निकला, कैकेयी को वरदान था कि वो अपने शरीर के जिस अंग को चाहे उसको वज्र कहते हैं हीरे को, कठोर बना सकती है। तो उसने अपनी उंगली लगा दी वहां जहां कील लगी होती है और दशरथ को बचा कर ले आई। दशरथ ने खुशी में वादा कर दिया कि मैं वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी में जो चीज, दो वरदान जो मांगोगी वो दे देंगे। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खुशी में उनका किया हुआ वादा उन्हीं के लिए प्राण घातक हुआ, क्योंकि पहला जो वर मांगा वो मांगा भरत को रास्तिलक, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस्वी के वेश में विशेष मतलब शेष मतलब लक्ष्मण, वी मतलब विशेष यानी लक्ष्मण, और उदासी, ऊ मतलब उत्कृष्ट, दासी मतलब कौन, सीता, यानी लक्ष्मण सीता और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लोग सामान्यतः ही जानते हैं कि वनवास राम को मांगा था, लेकिन नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, ये दो शब्द डिफाइन करते हैं कि इसमें दो लोग छुपे हुए हैं, शेषावतार लक्ष्मण है और उत्कृष्ट दासी मां सीता है। खुशी में किया गया वादा जिंदगी ले गया, और क्रोध में क्या हुआ, शूर्पनखा पहुंची रावण के पास और कहा, ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। क्रोध आ गया, अरे मेरी बहन को, कारण नहीं पूछा कि आखिर में कुछ हुआ होगा, सीता का हरण कर लिया, परिणाम मृत्यु। कहीं भी देखिए आप, जब कभी भी आपको, पहली चीज तो इंसान को गुस्सा आता नहीं है, तो इसी बात करूंगा मैं, आप अगर आप चाहें तो, इंसान जानबूझकर गुस्सा करता है। कुछ लोग कहते हैं हमको गुस्सा बहुत आता है, झूठ बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग अ लाई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा करते हैं। अगर मैं किसी संस्था में काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या कोई हमसे जो सीनियर है, हमारे HOD हैं, मेरी गलती न होने के बावजूद हमको डांट दें, तो मैं सर झुका कर सुन लेता हूँ, कुछ नहीं। क्रोध उस समय आता होगा ना, क्योंकि आप निर्दोष हैं। कभी देखा होगा आपने जिंदगी में कि आपने गलती नहीं की, सामने वाले ने डांटा लेकिन गुस्सा नहीं आया। गुस्सा बहुत समझदार होता है, उसको पता है कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, आपने गुस्सा नहीं किया। अब आप घर पर पहुंचे तो कभी कभी आपने देखा होगा, पापा कभी कभी घर पर आते हैं तो मूँगफली लेकर आते हैं, राबड़ी लेकर आते हैं, मेरे बच्चों अरे आओ बैठो TV लगाओ, ये देखा जाए, वाह हम जब थे ये गाना बहुत चलता था। और कभी कभी पापा आते हैं तो उठा के पटक देंगे, TV जाएगी फूट, ना पहनना ना निकलना, कमाओ धमाओ, इन सब के लिए किसी को परवाह नहीं है। दोनों पिताजी एक ही हैं, जानते हैं हुआ क्या है, जिस दिन उन्होंने अच्छा सुना है उस दिन वो अच्छा बोल रहे हैं, और जिस दिन उन्होंने सुना बुरा है कि आप
आपके पापा की तारीफ हुई, अरे वाह आपका काम बहुत अच्छा रहता है, आप समय पर आते हैं, बहुत तारीफ हुई उनकी, तो वो भी अंदर से खुश हैं। इनपुट अच्छा गया, आउटपुट बढ़िया निकला। अब इनपुट वो टाइम से लेट हो गए, ऐसे तो नहीं चल पाएगा भाई। देख लीजिए जरा आप, कई बार लेट हो चुके हैं आप, शिकायतें मिल रही हैं, मूड ख़राब है, अब वो कहाँ उतरेगा? वो उतरेगा परिवार पर। कभी ध्यान से देखिएगा आप अपनी तरफ देखिए। मैं अक्सर नाराज़ होता था तो मम्मी से कहता था खाना नहीं खाएंगे, पैर पटकता था। पापा एक बार में क्या हुआ, कुछ नहीं, खाना शुरू। सोचिए पापा के सामने गुस्सा आता है, कम आता होगा क्योंकि पता है कि भी हूर दिए जाएंगे। मम्मी के सामने गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा किया जाता है। जो चीज़ आती है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना। कोई कहता मुझको डांस आया है, डांस आया है तो डांस करना, नहीं डांस करना है। इसी प्रकार से गुस्सा करना है या नहीं करना है ये आप जानते हैं। आप जानते हैं जहाँ व्यक्ति ताकतवर है वहाँ गुस्सा मत करो, क्योंकि आपका नुकसान है जाएगा। और आपको पता होता है कि यहाँ पर गुस्सा करेंगे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आप गुस्सा करते हैं। इसलिए अगर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है तो आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि हम जानबूझकर गुस्सा करते हैं, तो आपका उस पर कंट्रोल है। मर्जी हुआ किया, मर्जी हुआ नहीं किया। लेकिन जो चीज़ आती है उस पर कंट्रोल थोड़े है आपको, आपका कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपको वॉशरूम लग गया और कहीं पर भी है तो आप बस रुक कर कहेंगे मैं भैया दो मिनट के लिए बस रोक दीजिए, नहीं रोक सकते क्योंकि वो आया है। जो आया है वो रुक नहीं सकता, लेकिन जो आपको करना है वो रोका जा सकता है। तो गुस्सा कभी नहीं आता, गुस्सा इंसान जानबूझकर करता है और अपने से कमज़ोर पर करता है। अभी मेरे पास किसी बहुत बड़े नेता का फ़ोन आ जाए कि ऐसा है कि दो दिन के लिए गोंडा छोड़ दो, और हम ये जाने कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है हमको, मैं कहूँगा जी तुरंत, प्रश्न करने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर मैं घर पर पहुँचूँ और थोड़ा सा लेट हो जाए तो मैं, इतना समय लगता है गेट खोलने में, क्योंकि वहाँ पर मेरे गुस्से का कोई जवाब देने वाला नहीं है, वहाँ मैं ताकतवर हूँ। तो इंसान गुस्सा करता है। अब कभी मत कहेगा कि हमको गुस्सा आता है, नहीं, अगर आना होता तो आप जब निर्दोष थे और डांटे जा रहे थे तो आपको आता, लेकिन तब नहीं आया। इंसान अपने से ताकतवर के सामने गुस्सा नहीं करता है, अपने से कमज़ोर के सामने गुस्सा करता है। अगर आप टू व्हीलर से हों और कोई रिक्शा वाला आपसे टकरा जाए तो आप सोचते हैं कि डैग नहीं बजाते, ऐसे चला रहे हो, ऐसे चलाया जाता है। और अगर कोई फार्चूनर से हल्का सा टच कर जाए और गलती आपकी ना हो और स्क्रैच उसको पड़ जाए तो आप जल्दी भागते हैं, कहीं ऐसा ना हो नीचे उतर के भी शुरू हो जाए। हाँ, ये जीवन का सच है जो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि आप गुस्सा करते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं नहीं हमको गुस्सा आता है तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा, फिर आपका नुकसान करेगा। तो खुशी में वादा मत कीजिए किसी से, क्रोध में हो तो निर्णय मत लीजिए, ये दोनों चीज़ें नुकसान करती हैं। जी हाँ, तो दीपांशु जी, मैं मानता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत या असहमत हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज निभाया। एक बात नहीं बल्कि दो बात, गुस्से में आकर गलत बात मत कहो और खुशी में आकर वादा मत लो। और अब मैं बताऊँगा, आपसे कहा जाता है कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब ये काटते हैं तो घाव जिंदगी भर नहीं भरता। और इस कुमार लिखते हैं, आज काफ़ी दिन आपके लिए समय मिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको मिला तो कम से कम। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी, शुभ संध्या। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं भाई, मनु सर जी शुभ शाम कर दीजिए, याद में दीवानों के नाम माय सॉन्ग, मेरे होश लो दीवाना बना लो, क्या बात है भाई। के गुप्ता जी, यहाँ बहुत ही प्यारे श्रोता भाई, और बहुत दिनों के बाद। गुरु जी शुभ संध्या, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पुत्रवती ने, सॉरी क्या कहना चाहिए, मतलब हमको आपको क्या आशीर्वाद दें, खूब कमाइए, खूब फलिए फूलिए, भगवान आपका कल्याण करे और प्रसन्न रहें, आपकी आमदनी जो है वो दुगनी हो जाए, आप गोंडा के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएं
और हम गरीबों पर भी कुछ अपनी दया दृष्टि रखें। के गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताओ मनु सर, होते क्या बात है इस शो में, क्या बात है इसकी? नहीं भाई, होती बात होती, बहुत खूबसूरत सांग, इतने ने मुझसे तो प्यार बढ़ा जी। जिंदगी में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, जीवन इन दो मौसमों से बना है, इन्हीं परिस्थितियों में हमें असली भावों का एहसास होता है और हमें इसके रंगों की समझ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा आईना सही सच्चाई दिखाता है आईने के माध्यम से। आप दौलत के तराजू में दिलों को तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं जी।

यहाँ बात आपने सबलू सावन जी मित्रता की, मैं आपको बताता हूँ। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनही बिलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसको देखने से पाप लगता है। ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जते तादृशम विष्कुंभम पयोमुखम। अर्थात जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे और सामने आपकी प्रशंसा करे, ऐसे व्यक्तियों का ठीक उस प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए जैसे लोग उस घड़े का परित्याग कर देते हैं जिसके ऊपर ऊपर दूध होता है और अंदर अंदर जहर होता है। और इस दुनिया में एक बित्ते वाले लोग ज़्यादा हैं। एक बित्ता मतलब दिल में कुछ रहेगा और नाप लीजिए कंठ, वहाँ से जो आपका गला है वो एक बित्ते पर है। तो दिल में कुछ, जुबान पे कुछ। राहत इंदौरी ने कभी कहा था, दिल में कुछ हो जुबान पे कुछ और, यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाहर गजल, बट मेरे इधर रात्रि हुई है अभी। क्या बात है, क्या बात है इट्स कुमार जी, काफ़ी अच्छा लगता है आपको देखकर। और भाई जी जी, इसके पश्चात भाई राम जी का वनवास जाना सही था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही था, इसीलिए उनका अवतार ही हुआ था भाई। आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं न करता गुस्सा। जी इट्स कुमार जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप गुस्सा हम मान लें तो करते हैं तो सारी से अच्छा ये बात है। फिर उसके पश्चात भाई वाह गुरु जी क्या बात है जी, बिल्कुल भाई पापा के सामने गुस्सा बाप के आने से कांप जाता है, गुस्सा जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। और फिर इसके पश्चात गुरु जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि गुस्सा इंसान को खुश ही खा जाता है, बिल्कुल। जुगल किशोर वर्मा जी हैं एमपी से, भाई आप जानते हैं न जाने क्या बात है भाई, गुस्सा आता है ये खुद के बचाव का जरिया है, बिल्कुल। इंसान कहता है गुस्सा आता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता गुस्सा। इम्तियाज अहमद दिखाई पड़ गए हमको भाई, शुभ संध्या आपको भी, शाम का सलाम कबूल करें आप। अरे नहीं ऐसा ऐसा मत बोलिए, इस कुमार जी जो है वो अजीब, नहीं नहीं हम हंसी कर रहे थे उनसे, इसलिए इतने गुरु जी कहे हमारी बेइज्जती कर रहे। नहीं नहीं अरे के गुप्ता जी, आपसे हमारी मित्रता है और हम मित्रता में ही विनोद कर सकते हैं, मतलब हंसी कर सकते हैं आपसे। कभी ये मत सोचिएगा कि हम आपको, अरे हमने अगर आपको लगा हो कि हमने बेइज्जती की है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपसे विनोद किया है, हंसी की है, क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए। नहीं तो ऐसा ना कहते कभी भाई। अनिल वर्मा जी सदा पूछते हैं शुभ संध्या सभी सुनने और सुनाने वालों को। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन जो कह जाता है वो शब्द से नहीं। क्या बात है जी, हाँ हाँ, अब आपके आशीर्वाद लेने में भी डर लगता है। नहीं नहीं भाई, के गुप्ता जी से थोड़ा सा हंसी मजाक हमारी जो है विनोद चलता है। इंसान देखिए, आपसे बताऊं मैं कि इट्स कुमार जी, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इंसान को विनोद भी उससे करना चाहिए जो उसके लेवल का हो। हंसी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और ये आप उसी से कर सकते हैं जिसको ये लगता हो कि आप देखिए, ज़िंदगी की खराब बातें सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आपको अगर चाय पीनी है तो आप किसी के साथ भी पी सकते हैं, कहीं भी। लेकिन अगर आपको शराब पीनी है तो आप किसी ऐसे दोस्त के साथ पियेंगे जो आपका सबसे करीबी होगा। इंसान अपनी अच्छाइयाँ कहीं भी बांट लेता है, बुराई सबसे अच्छे मित्रों के साथ बांटता है। तो ऐसे ही अच्छी बातें हम हर किसी के साथ कह सकते हैं, लेकिन के गुप्ता जी जैसे प्यारे लोग हों तो इनके साथ थोड़ा सा हंसी हमारे अच्छे मित्र होने के कारण हम कर सके हैं। और हमको लगता है कि के गुप्ता जी कहेंगे कि ठीक है गुरु जी, आप हमको आशीर्वाद दीजिए और हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं, और हमारा आशीर्वाद लगता भी है। तो के गुप्ता जी, आप खूब कमाइए खाइए और गोंडा में सबसे अच्छा व्यापार आपका चले, ये हमारी शुभकामना है जी। गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से, गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से,
ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर ऐ दोस्त, हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर ऐ दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भराया। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं मोहब्बत की, बात करते हैं समय की। और जब समय अच्छा होता है तो हम कहते हैं समय तू धीरे धीरे चल। जी हाँ, ये आप सुनाते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत, समय तू धीरे धीरे चल। उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आएगा। सुनते रहिए रेडियो गाना स्लीट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मैं बहुत खुश हूँ।
1: अच्छा,
0: चाहती हूँ दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाए, वक्त ठहर जाए।
1: वक्त कभी नहीं ठहरता,
0: लेकिन धीरे धीरे तो चल सकता है।
1: सच?

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और अब वो घड़ी आ चुकी है भाई, जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप सबको है। आपकी फेवरेट आरजे, आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। अब आपकी फरमाइश लेंगी और अब हमको दीजिए अनुमति। आसमान वाले ने चाहा तो रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी जी गोंडा मैसेज मसाला में, और शनिवार को मुलाकात होगी बहारे गज़ल में। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार भाई, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना। अनिल वर्मा जी विशेष शुक्रिया अदा करते हैं आपका। इट्स कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ज़र्रा नवाज का शुक्रिया आप सभी को कि आप लोगों ने कार्यक्रम को एंजॉय किया और थोड़ा बहुत महत्व हमको दिया। इसके लिए आप सभी जो है वो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। और अब आपसे लेते हैं अनुमति एक प्यारे से गीत के साथ, और इसके बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं आरंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइश विद्यार जो सिंपल इज नॉट सो सिंपल और दुश्मन न करे दोस्त ने मुकाम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। इनाम तो लेते रहेंगे देते रहेंगे, ये जिंदगी है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्यों ना हम कोई दूसरा सा गाना एंजॉय करें। सो क्या आप सभी तैयार हैं? स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल, और क्या है आज की शुक्रवार की मींस फ्राइडे की शाम में बहुत खास, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात और जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, अरे दोस्तों अब किसका इंतजार है। आखिर दिल का जिसका कनेक्शन है वो तो आ ही चुकी है, फाइनली आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के पास है, आप सभी के सामने उपस्थित है। तो इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेलकम तो कर लें आप सभी का। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, अनिल वर्मा से अदापुर से, किकी गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका तो दिल से स्वागत है, दीपांशी तिवारी प्रबल मिश्रा गोंडा से, विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, और राकेश वर्मा, कृष्णा वर्मा, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली पहली पहली पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है हमारे जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को सुनना है गाना, मींस जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना चना जोर गरम। तो चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सुपर डुपर डुपर हिट नगमा क्रांति मूवी का हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: वाली।
1: वारी मेरी चने वाली।
0: नाम है सुरीली सुरीली।
1: सुरीली। वारी मेरी चने वाली।
0: हम गाते हैं,
2: हम बजाते हैं,
0: लोगों को चना खिलाते हैं।
3: ऐ क्योंकि हमारा चना सिर्फ चना ही नहीं,
0: हमारा चना दिल है, दिलदार है,
3: ऐ यारों का यार है।
0: हाजिर हाजिर मेरी सरकार है।
1: चने वाली, तुम्हारा चना तो दारोगा के दिल में अंग्रेजी गोली की तरह घुस गया।
0: हुजूर, अगर हुक्म हो तो ये चना पेश करने से पहले इस चने के बाकी गुण पेश करूं।
1: इजाजत है।

बाबू में लाई मजेदार चना जोर गरम। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना ए हवा तू मेरे संग संग चल। तो इस हवा को ये संग संग चलना है, आपके किसी और को भी आपके संग संग चलना है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं इट्स कुमार का ये पसंदीदा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। तूने ये कैसा जादू किया है, बिन डोर के मुझे बांध दिया है। हमने एंजॉय किया ये लता जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो कि है एमपी रीवा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन नो डाउट इस फरमाइशी गीत ने मेरा तो डेफिनेटली मूड चेंज कर दिया, पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया। मैं अलग जोन में जा चुकी हूँ और शायद मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई होगी मूड के हिसाब से, वैसे भी मेरी आवाज़ चेंज हो ही जाती है। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना मुझे कितना प्यार है। आपको कितना प्यार है आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं लिखकर। फिलहाल एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी की और मोहम्मद रफी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये हाउ रोमांटिक वाला सदाबहार सुपर डुपर हिट नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो रितिन सिंह, स्टे ट्यून्ड।

अपने ही दिल से तुम पूछो, हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। हाउ रोमांटिक वाला नगमा, इश्क प्यार मोहब्बत वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और उनको सुनना है गाना चांदी की दीवार न तोड़ी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा के गुप्ता जी की फरमाइश पर, जो की है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था जिसकी फरमाइश की थी के गुप्ता जी ने तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। और के गुप्ता जी, मैं तो इस फरमाइशी गीत को सुन के बस इतना कहना चाहूंगी कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा जी की, गोंडा से उनको सुनना है गाना। इश्क चांदी है, इश्क सोना, इश्क सोना नहीं, इश्क सोना है और है जवानी तो इश्क होना है। ऑब्वियसली इश्क होना है लेकिन इश्क को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, थोड़ा सा एनर्जी से भरा हुआ, इश्क के बारे में एकदम रियलिटी चेक कराने वाला, लेकिन हंसी खुशी रियलिटी चेक कराने वाला गाना सिर्फ और सिर्फ प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी फ्रॉम

सुना है, हमने इंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे सुपर डुपर हिट प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। हाँ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की, और उनको सुनना है गाना जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर, जो कि है दुकरनाथ गोंडा से। स्टेट

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। जानते हैं किसकी फरमाइश पर? कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर, जो कि हैं दुखरन नाथ गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। बढ़ेंगे सबर करिए। बैक टू बैक गाने बजते ही जा रहे हैं। मेरी बकबक कब बजेगी ये बता दो ना जरा। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। और एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। तो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से, और सुरेश कुमार जी को सुनना है चौक से गाना तुम मेरे ना हुए। सो एंजॉय करते हैं ये गाना हमारे सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हम प्यार करने वाले और दुनिया से ना डरने वाले, इसमें कुछ ज्यादा ही रिमिक्स था, लेकिन ऑल दो ये गाना हर एक वर्जन में अच्छा लगता है, सो हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, और ऑब्वियसली मन की आंखें खोल प्यारे, क्योंकि अब तो मन की आंखें खोलने का एकदम सही और सटीक वक्त आ चुका है। अगर अभी आपने अपनी मन की आंखें नहीं खोली तो ये समझ लीजिए फिर बहुत देर हो जाएगी। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे दोनों करना है, भगवान नाम भी लेना है और मन को शांति भी देना है। हाँ दो तरीके से बल्ले बल्ले सुरेंद्र जी। हाँ सो हमने इंजॉय किया है इंसाफ मूवी का ये सुपर डुपर हिट आइटम सॉन्ग कृष्णा कृष्णा बोल प्यारे, सिर्फ और सिर्फ हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो की है गौरा चौकी से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।

हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमने इंजॉय किया है लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुरीला सा, एकदम दिल को छू जाने वाला गाना मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बर जी की, रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, उनको सुनना है गाना ओ मेरे दिल की चैन। सो एंजॉय करेंगे किशोर कुमार जी की आवाज में ये नगमा और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ दोस्तों चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे, तब तक अगर आप सबने डिनर शिनर नहीं किया है, पेट पूजा नहीं हुआ है, सो पेट पूजा करके आओ, फिर विश्राम करना और साथ में फरमाइशी की महफिल में गीतों का और जज्बातों का एंजॉयमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही करेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आई लव दिस सॉन्ग।

0: हिंदू अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में से खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुरमुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट्स और सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब और क्या आप सभी ने पेट पूजा कर ली है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। और क्या देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो चुके हैं, वो भी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगला गाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है अरमान की, और अरमान को सुनना है गोंडा से गाना। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। सो एंजॉय करते हैं मोहब्बत ने मोहब्बत को गाना, एक रिश्ता मूवी का, उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में, अरमान की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की चिकनी चुपड़ी और थोड़ी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned.

मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। कितनी बार मोहब्बत आ गया ना एक ही सेंटेंस में, कितना प्यारा लग रहा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, एक रिश्ता मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज में। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी अरमान की पटेल नगर गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफ़ा जी की। मुस्तफ़ा जी को सुनना है सऊदी से गाना मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। शायद यही वाला गाना, सो एंजॉय करते हैं स्टेडियम। हाँ यही वाला गाना। हाँ कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे। ओहो एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून, ये फरमाइश मुस्तफा जी की सऊदी से।

सनम, शुक्रिया, मेहरबानी करम, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो की है सावी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुनीता मौर्य जी की गुड़वा घाट गोंडा से, और सुनीता मौर्य को गुड़वा घाट गोंडा से सुनना है गाना हम तुम्हारे हैं सनम। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सदा बहार नगमा अनुराधा जी की और उदित नारायण की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सुनीता मौर्य जी की फरमाइश पर।

जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम ना जुदा होंगी है। हमने इंजॉय किया है अनुराधा जी की और उदित नारायण की आवाज में ये नगमा सुनीता मौर्य की फरमाइश पे जो की है गुड़वा घाट कोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की और निशा को सुनना है पटेल नगर गोंडा से गाना आदत। सो एंजॉय करते हैं ये पंजाबी सुपर डुपर डुपर हिट नगमा आदत सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पे जो की है पटेल नगर गोंडा से।

भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई। कैसी है ये दूरियां, कोई हल ही नहीं, अज भी तू आया ना तू आना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया मैं तू तब पढ़िया ही नहीं। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा निंजा का, पंजाबी रोमांटिक सुपर डुपर हिट नगमा, सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर, जो कि है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा की, और उनको सुनना है गाना अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशा जी और उदित नारायण की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: हमने एंजॉय किया आशा जी की उदित नारायण की आवाज में, ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में नागेश्वर धाकड़ की। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, और एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश। लेते हैं इसी के साथ में अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना दोस्तों, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, सो मच लव टू यू, सो मच ब्लेसिंग्स टू यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।
1: I think I should.

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
0: आखिरी बार आह कर ली है, आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। रात के इस पहर में जब सड़कों पर खामोशी आ गई है, अंधेरों ने शहर को आगोश में ले लिया है, जाग रही कुछ भूली बिसरी यादें, और इन्हीं यादों की अंगुली पकड़कर आज हम निकलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जज्बात की गहराइयां बनेंगे। आज हमारा ये सिलसिला उन गजलों के नाम है जिन्हें वक्त की धूल ने शायद थोड़ा ओझल जरूर कर दिया है, लेकिन उनके हर मिसरे में समाया है गहरा समंदर। वो गजलें जो किसी बड़े मुशायरे का शोर तो नहीं बन सकी, पर किसी तन्हा दिल की धड़कन जरूर बनी। तो आज हम ऐसी ही गजलें आप तक पहुंचाएंगे जिनके मायने आपकी रूह को भिगो देंगे। एक ऐसी गजल जो दुनिया से उम्मीद को परे थक हार कर अपनी तन्हाइयों और गमों को अपना हमराही बनाने की तरफ ले जाती है। आखिर आप इस बात को अगर समझ रहे होंगे तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ऐसी बातें जॉन साहब से बेहतर और कौन कर सकता है। जी हाँ, तो आइए जॉन साहब की इस गजल की तरफ हम आपको ले चलते हैं। आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है, अपने सर एक बला तो लेनी थी, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है, दिन भला किस तरह गुजारोगे, वसल की शब अब गुजर ली है, जा निसारों पे वार क्या करना, मैंने बस हाथ में सिपर ली है, जो भी मांगो उधार दूंगा मैं, उस गली में दुकान कर ली है, मेरा कशकोल कब से खाली था, मैंने इसमें शब भर ली है, और तो कुछ नहीं किया मैंने, अपनी हालत तबाह कर ली है, शेख आया था मोहतसिब को लिए, शेख आया था मोहतसिब को लिए, मैंने भी उनकी वो खबर ली है, मैंने भी उनकी वो खबर ली है।

गुलाब हाथ में हो आंख में सितारा हो, गुलाब हाथ में हो आंख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का इस्तियारा हो। एक लफ्ज बेहद चलन में रहता है जिसे हम कहते हैं अक्सर अनकंडीशनल लव, यानी बेगरज मोहब्बत। जो गजल अब मैं परवीन शाकिर साहिबा की आप तक पहुंचा रहा हूं, उसमें परवीन शाकिर साहिबा जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी जीना चाह रही हैं, जिसमें गुलाब और सितारा उम्मीद और चाहत की मिसाल है। इसमें चाहत नजर आ रही है शायरा की कि उनका वजूद खुद मोहब्बत की एक मिसाल बन जाए। परवीन शाकिर साहिबा जिंदगी की लहरों से लड़ना नहीं बल्कि उनके साथ बहना चाहती हैं। वो किनारे पर पहुंचकर उसे महसूस करना चाहती हैं, वो भी बिना मंजिल के फिक्र किए हुए। सो गजल कुछ यूं है कि गुलाब हाथ में हो आंख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का इस्तियारा हो, मैं गहरे पानी की इस रो के साथ बहती रहूं, जजीरा हो कि मुकाबिल कोई किनारा हो, कभी कभार उसे देख ले कहीं मिल लें, ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो, कसूर हो तो हमारे हिसाब में लिख जाए, मोहब्बत में जो एहसान हो तुम्हारा हो, ये इतनी रात गए कौन दस्तकें देगा, कहीं हवा कहीं उसने ना रूप धारा हो, उफक को तो क्या है दरे कहकशा भी छुआए, मुसाफिर को अगर चांद का इशारा हो, मैं अपने हिस्से के सुख जिसके नाम पर कर डालूं, कोई तो हो जो मुझे इस तरह प्यारा हो, अगर वजूद में आहंग है तो वस्ल भी है, अगर वजूद में आहंग है तो वस्ल भी है, वो चाहे नज्म का टुकड़ा की नसर पारा हो, वो चाहे नज्म का टुकड़ा की नसन पारा हो।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तुम्हारा सिम थे कि आते जाते। हाय, इस शेर के मायने जरा समझिए। हालांकि इस शेर के लहजे से समझने वाले जरूर समझ गए हैं कि आखिर ये किस शायर का लहजा है, ये किसका तरीका है। वैसे कितना आसान होता है ना, टूटे हुए रिश्तों की वजह बताते हुए किसी पर इल्जाम दे देना। पर सोचा है कि कहीं तो गुंजाइश रहती है ना खुद की जिम्मेदारी समझने की। दरअसल ये सवाल हर टूट रहे रिश्तों को लेकर आता है कि बिछड़ा दोनों में कौन पहले होगा। मगर अगर हम गुंजाइश पर जाएं तो हमें मिलने जुलने की गुंजाइश हमेशा ही नजर आएगी। जी हां, मिलने जुलने की, यानी रिश्ते खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता। अगर आना जाना हो तो कुछ गुंजाइश हमेशा ही नजर आती है। हालांकि फराज साहब की निगाह में इसकी क्या गुंजाइश है, यह आपको इस गजल से जरूर समझ में आ जाएगा। फराज साहब लिखते हैं कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते। हाय, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्नए मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पाबा जौला ही सही नाचते गाते जाते। इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना, इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तुम फराज अपनी तरफ से भी तो निभाते जाते।
7: हुआ जो थी नजर

अभी इस तरफ न निगाह करें, अभी इस तरफ न निगाह कर पलके सवार लूं। है शेर की खूबसूरती तो जरा देखिए, कितना उम्दा शेर है। इस शेर से आपको इसकी खूबसूरती का अंदाजा तो हो ही गया होगा। वैसे ये एक आर्ट है और इस गजल के आर्टिस्ट यानी शायर हैं हम सभी के पसंदीदा बशीर बद्र साहब। और बशीर साहब अपनी इस गजल में इसरार भी करते हैं कि कला यानी कि आर्ट साधना मांगती है। जब कोई शायर अपनी गजल गढ़ रहा होता है तो वह अपने महबूब तक से वक्त मांगता है, यानी कि इसका फलसफा कहता है कि किसी भी खूबसूरत चीज को मुकम्मल करने के लिए उसमें पूरी तरह डूबना जरूरी है। तो आइए इस खूबसूरत सी गजल में डूब कर इसको महसूस करते हैं। अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलके सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ तू तमाम शब का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लूं। मगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हार लूं। कहीं और बांट दे शोहरते, कहीं और बख्श दे इज्जते, मेरे पास है मेरा आईना मैं कभी ना गर्दो गुबार लूं। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार।

वैसे देखिए ना, बातचीत करते करते किस तरह से वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गजलों के मायने मैंने जरूर बताया आपसे बातचीत के दौरान। अब कुछ गजलों के मायने मैं सिर्फ आप पर ही छोड़कर जा रहा हूं कि आप इन गजलों को सुने, जो सुनी तो कम गई लेकिन असर बेहद करेगी, ये यकीन है मेरा इस बात को लेकर। तो जरा इन गजलों को सुनिए और महसूस कीजिए कि ये गजलें आपसे क्या कहती हैं। देख तो दिल की जान से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहां से उठता है, खाने दिल से जीन हार न जा, कोई ऐसे मकां से उठता है, नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है, लड़ती है उस चश्मे शौख जहां, एक आशोब वहां से उठता है, सुधले घर की शोलाए आवाज, दूध कुछ अशिया से उठता है, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझना तवां से उठता है। एक और खूबसूरत सी गजल है जिसके मायने आप खुद निकालने वाले हैं। कुछ यूं है कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्या गया ये बताकर नहीं गया, वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चराग बुझा कर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमियां में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया, शायद वो मिल ही जाए जस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा तो मिटाकर नहीं गया, घर में है आज तो वही खुशबू बसी हुई है, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया, अब तक तो फूल जैसी ही ताजा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा कर नहीं गया, रहने दिया ना उसने किसी का काम मुझे, रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया, वैसे ही बेतलब है अभी मेरी जिंदगी, वो खार व खस में आग लगा कर नहीं गया। और कुछ इस तरह लिखते हैं आखिरी अशार शहजाद अहमद साहब की, शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। फिलहाल मैं

जा रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का बहार गजल कैसा लगा आपको, हमको जरूर बताइएगा और उन गजलों को जरूर सुनिएगा जिन्होंने मुशायरों की जान तो नहीं बढ़ाई पर किसी खामोश इंसान के जज्बात पढ़े और उसकी रूह को भिगो दिया।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, रात काफी आगे बढ़ चुकी है, सड़कें खामोश हैं और अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो शायद ये कहानी आपको ही ढूंढ रही थी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक रहस्यमयी रचना, हंग्री स्टोन्स यानी भूखा पत्थर। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थरों को भी भूख लग सकती है, कि कोई इमारत इंसान की सांसों, उसकी यादों और उसके वजूद से जिंदा रह सकती है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, तो लाइट धीमी कीजिए और सुनिए भूखा पत्थर। रविंद्रनाथ टैगोर जी बताते हैं कि मैं और मेरा रिश्तेदार पूजा यात्रा से कलकत्ता लौट रहे थे, तभी ट्रेन में हमारी मुलाकात उस आदमी से हुई। उसका नाम सत्यचरण था। उसके पहनावे और हाव भाव से हमने उसे पहले तो बेहद देहाती समझा, लेकिन उसकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। वो सभी विषयों पे इतने आत्मविश्वास से बात करता था कि मानो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने हर काम में उससे सलाह लेता हो। हम इससे पहले कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर हम अचंभित रह गए। विषय चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, वो विज्ञान के उदाहरण देता, वेदों पर टिप्पणी करता या किसी फारसी कवि की चौपाइयां सुनाता। और चूंकि हमें विज्ञान, वेदों या फारसी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसके प्रति हमारी प्रशंसा बढ़ती ही चली गई। मेरे रिश्तेदार को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे सहयात्री को किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरणा मिली होगी। वो हमारे असाधारण साथी के मुख से निकले सबसे साधारण कथन को भी श्रद्धा पूर्वक सुनते थे और चुपचाप उसकी बातचीत के नोट्स लिखते थे। जब ट्रेन जंक्शन पर पहुंची, तो हम सब अगली ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। रात के 10 बज रहे थे और जैसा कि हमने सुना था कि रेल की पटरी में कुछ खराबी के कारण ट्रेन बहुत देर से आएगी, मैंने अपने बिस्तर मेज पर बिछाया और आराम से सोने के लिए लेट ही रहा था, तभी उस व्यक्ति ने, सत्यचरण जी ने यानी, कहानी सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि यात्रियों के आने जाने की वजह से नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जूनागढ़ में अपना पद त्याग दिया और उसके बाद उन्हें बारिश में कर वसूलने वाले सरकारी अफसर के रूप में नियुक्ति मिली। बारिश एक बेहद रमणीय स्थान है। सुस्ता नदी पथरीले रास्तों पर कल कल करती और कंकड़ों पर बहती है। नदी से 150 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर नदी के किनारे और पहाड़ियों की तलहटी में एक अकेला संगमरमर का महल खड़ा है। इसके आसपास कोई मानव बस्ती नहीं है। बारिश गांव और कपास का बाजार बहुत दूर स्थित है। लगभग 250 वर्ष पूर्व सम्राट महमूद शाह द्वितीय ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस एकांत महल का निर्माण करवाया था। उनके समय में इसके फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें फूटती थी और ठंडे संगमरमर के फर्श पर स्नान से पहले बाल सवारे हुए युवा फारसी युवतियां बैठती थी और स्वच्छ जल में अपने कोमल पैरों को डुबोते हुए गिटार के धुन पर अपने क्षेत्र की गजलें गाती थी। अब फव्वारे नहीं चलते, गाने बंद हो गए और वो महल सत्यनारायण जी को निवास के लिए दिया गया। सत्यनारायण जी आगे बताते हैं कि मेरे दफ्तर के पुराने क्लर्क करीम खान ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं वहाँ ना रहूं। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो दिन वहाँ बिता लो, लेकिन रात में कभी मत रुकना। मैंने हल्की हंसी के साथ उनकी बात टाल दी। नौकरों ने कहा कि वे शाम तक काम करेंगे और रात को चले जाएंगे। मैंने तुरंत सहमति दे दी।
उस घर की इतनी बदनामी थी कि अंधेरा होने के बाद चोर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। शुरू में उस सुनसान महल का अकेलापन मुझ पर किसी बुरे सपने की तरह हावी था। मैं बाहर रहता, जितना हो सके उतनी देर तक कड़ी मेहनत करता, फिर रात को थका हारा घर लौटता, बिस्तर पर जाता और सो जाता। एक सप्ताह बीतने से पहले ही वो स्थान मुझे एक अजीब सा आकर्षण डालने लगा। उसका वर्णन करना या लोगों को इस बात पे विश्वास दिलाना कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा घर एक जीवित जीव हो और मुझे धीरे धीरे मदहोश कर रहा हो। शायद ये प्रक्रिया घर में कदम रखते ही शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ था। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत थी और बाजार में बेहद सन्नाटा पसरा होने के कारण मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। सूर्यास्त से पहले मैं सीढ़ियों के नीचे पानी के किनारे कुर्सी पर बैठ गया। नदी सिकुड़कर नीचे धस गई थी, दूसरी ओर रेत का एक चौड़ा हिस्सा शाम के रंगों से जगमगा रहा था। इस तरफ साफ उथले पानी की तलहटी में पड़े कंकड़ चमक रहे थे, कहीं भी हवा का झोंका नहीं था और शांत हवा में पास की पहाड़ियों पर उगने वाली सुगंधित झाड़ियों की घुटन भरी गंध फैली हुई थी। मैंने बाहर घूमने जाने को सोचा और उठने ही वाला था कि मुझे पीछे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं ये सोच के दोबारा बैठ गया कि ये मेरा भ्रम है, तभी मुझे कई कदमों की आहट सुनाई दी, मानो बहुत सारे लोग सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हों। मेरे शरीर में खुशी की एक अजीब सी सहरन दौड़ गई, जिसमें थोड़ा सा डर भी मिला हुआ था। हालांकि मेरे आंखों के सामने कोई नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि गर्मियों की इस शाम में खुश युवतियों का एक समूह नदी में स्नान करने के लिए सीढ़ी से नीचे आ रहा था। घाटी में, नदी में या महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मुझे उन युवतियों की हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मानो किसी झरने से 100 झरनों की कल कल आवाज आ रही हो। वे मेरे पास से दौड़ती हुई, एक दूसरे का पीछा करते हुए नदी की ओर जा रही थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे वे मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, वैसे ही मैं भी मानो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। नदी एकदम शांत, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके स्थिर और साफ पानी में अचानक कई हाथों की झंझनाहट से हलचल मच गई हो, जिनमें कंगन खनक रहे थे। लड़कियां हंस रही थी, दौड़ रही थी और एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी, और सुंदर तैराकों के पैरों से छोटी छोटी लहरें मोतियों की बौछार की तरह ऊपर उठ रही। मेरे दिल में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं ध्यान से सुनूं तो उनकी सारी बातें समझ जाऊंगा, लेकिन मैंने कितना भी ध्यान से सुना, मुझे जंगल में झिंगरों की चहचहाट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा लगा मानो मेरे सामने 250 वर्षों का एक काला पर्दा लटक ऐसा लगा मानो मेरे सामने 250 वर्षों का एक काला पर्दा लटका हुआ हो, और मैं कांपते हुए उसका एक कोना उठाकर दूसरी तरफ देखना चाहता था। हालांकि दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर मुझे तीव्र भय सताने लगा कि कहीं देवी ने मेरे एकांत का फायदा उठाकर मुझ पे कब्जा तो नहीं कर लिया। मैंने अपने रसोइयों को बुलाया और मसाले और घी से भरपूर लजीज और स्वादिष्ट मुगलई भोजन बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह सारा मामला एक कल्पना जैसा प्रतीत हुआ। हल्के मन से मैंने साहबों की तरह टोपी पहनी
और काम पे निकल पड़ा। मुझे उस दिन अपनी तिमाही रिपोर्ट लिखनी थी और देर से लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही मैं अजीब तरह से अपने घर की ओर खिंचा चला गया। मुझे लगा कि वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट छोड़कर मैं उठा और उस विशाल शांत महल तक पहुंच गया। मंजिल पर सीढ़ियां एक विशाल हॉल की ओर जाती थी। दिन अभी ढला ही था, दीपक अभी तक जलाए नहीं गए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एक हलचल मच गई, मानो लोगों का एक समूह हड़बड़ी में बिखर गया हो और दरवाजों, खिड़कियों, गलियारों, बरामदों और कमरों से होता हुआ जल्दबाजी में बाहर निकल रहा हो। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं स्तब्ध खड़ा रहा। एक तरह की आनंद भरी अनुभूति से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं संगमरमर के फर्श पर फव्वारों की कलकल, गिटार की एक विचित्र धुन, गहनों की झंकार और पायर की खनक को सुन सकता था। ये सब मिलकर मेरे चारों ओर एक विचित्र अलौकिक संगीत रच रहे थे। फिर मैं एक सम्मोहन में आ गया। लगा यही तो सच है, यह अलौकिक दृष्टि ही संसार की एकमात्र वास्तविकता है। और उस शांत हॉल के अंधेरे में मैं खड़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसी क्षण मेरा नौकर हाथ में जलता हुआ मिट्टी के तेल का दीपक लेकर अंदर आया और मैं दोबारा होश में आ गया और अपने इस जीते जागते सपने को सोचकर मुस्कुरा पड़ा। अपना काम समाप्त करके खाना खाकर मैंने दीपक बुझा दिया और एक छोटे से कमरे में अपने पलंग पर लेट गया। पता ही नहीं चला मैं कब सो गया था या कितनी देर सोया, लेकिन मैं अचानक चौंक कर जाग गया। हालांकि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही कोई दिखाई दिया, केवल पहाड़ी की चोटी पर एक तारा अस्त होता हुआ दिख रहा था और नए चांद की धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर धीरे धीरे आ रही हो। मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धीरे से धक्का दे रहा हो। और जब मैं जागा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन अंगूठियों से सजी अपनी पांचों उंगलियों से इशारा किया कि मैं चुपचाप उसके पीछे आऊं। मैं चुपचाप उठा। सब कुछ सुनसान था। महल के अनगिनत कमरों में जहाँ सन्नाटा पसरा था और गूंजती हुई आवाजें गूंज रही थी, मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर भी मुझे हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं कोई जाग ना जाए। महल के ज्यादातर कमरे हमेशा बंद रहते थे और पहले मैं उनमें कभी नहीं गया था। मैं सांस रोके चुपचाप अपने अदृश्य मार्गदर्शक के पीछे पीछे चला। अब मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ थी, मैंने कितने अंतहीन अंधेरे और संकरे रास्ते, कितने लंबे गलियारे, कितने शांत और गंभीर सभाकक्ष और कितनी गुप्त कोठरियां पार की। हालांकि मैं अपनी सुंदर मार्गदर्शक को देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसका रूप मेरी कल्पना में स्पष्ट था। एक अरब लड़की जिसकी भुजाएं संगमरमर की तरह कठोर और चिकनी थी और उसकी ढीली आस्तीनों से दिखाई दे रही थी। टोपी के किनारे से उसके चेहरे पे एक पतला सा घूंघट गिर रहा था। उसकी कमर पर एक कटार थी। मुझे लगा मानो हजारों अरब रात्रियों में से एक कहानी मेरे पास भी आ गई है। अंत में मेरी मार्गदर्शक गहरे नीले पर्दे के सामने अचानक रुक गई और नीचे किसी चीज की ओर इशारा करती हुई प्रतीक हुई। वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक भय से मेरा हृदय जम गया। मुझे लगा जैसे मैंने पर्दे के नीचे जमीन पर एक भयानक नीग्रो हिंजरा देखा जो कीमती जटाओं से लिपटा हुआ था, पैर फैलाकर बैठा ऊंग रहा था और उसकी गोद में एक नंगी तलवार थी। मेरी सुंदर मार्गदर्शक हल्के से उसके पैरों से टकराई और पर्दे का एक किनारा ऊपर उठ गया। मुझे कमरे के इस हिस्से की एक झलक मिली जिसपे फारसी कालीन बिछा था। अंदर कोई बिस्तर पर बैठा था
मैं उसे देख नहीं सका, बस सुनहरे कढ़ाई वाले चप्पलों में लिपटे दो सुंदर पैर दिखाई दिए। अंदर जल रही एक विचित्र प्रकार की अगरबत्ती की सुगंध ने मेरी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया। मैंने डरते हुए हिंजड़े के फैले हुए पैरों के ऊपर से कदम रखने की कोशिश की, तभी वो अचानक चौंक के जाग गया और तलवार उसकी गोद से संगमरमर की फर्श पर जोरदार आवाज के साथ गिरी। एक भयानक चीख सुनकर मैं चौंक गया और देखा पसीने से तर बदर बैठा था और सुबह की रोशनी में चांद किसी थके हारे नींद से वंचित रोगी की तरह पीला दिख रहा था। हमारा एक पागल मेहर अली अपनी रोज की आदत के अनुसार पीछे हटो चिल्लाते हुए सुनसान सड़क पर भाग रहा था। इस तरह मेरी अरेबियन नाइट में से एक का अचानक अंत हुआ, लेकिन अभी तो हजारों रातें बाकी थी। मेरे प्यारे श्रोतागण, सांस थाम कर बैठिए और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

कोई नहीं था, कोई नहीं था।

फिर मेरे दिन और रात के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा हो गया। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता, रात के मोहक दृश्यों और उसके खोखले सपनों को कोसता रहता, लेकिन रात होते ही मेरा दैनिक जीवन एक तुच्छ झूठा दिखावा लगने लगता। सूर्यास्त के बाद मैं एक विचित्र नशे के जाल में फंस जाता। तब मैं किसी बीते युग के अज्ञात व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता। हर शाम मैं सिर पर लाल मखमली टोपी, ढीले पैजामे, कढ़ाईदार बनियान, रेशम का लंबा पहनने वाला गाउन और इत्र से सुगंधित रंगीन रुमालों के साथ तैयार होता। कभी ऊंचे गद्दीदार कुर्सी पर बैठता। कई बार रात का अंधेरा जैसे गहरा था, वैसे ही अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहता। मुझे उस सुंदर व्यक्ति की झलक चारों तरफ दिखाई देती। इन स्वप्न भंवर के बीच मेहंदी की खुशबू और गिटार की झंकार सुनाई देती। उस स्त्री ने मुझे पागल कर दिया था। उसकी तलाश में मेरी नींद, चैन सब खो गया था। उस रहस्यमय स्वप्न लोक में, गलियों के उस भ्रामक भूल भुलैया में, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते, कभी कभी शाम के समय जब मैं किसी शाही खानदान के राजकुमार की तरह बड़े से दर्पण के सामने सज धज कर खड़ा होता था, जिसके दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही होती थी, तो अचानक मुझे अपने बगल में एक फारसी सुंदरी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उसके गर्दन का एक तेज घुमाव, उसकी काली आंखों में तीव्र जुनून और पीड़ा की एक झलक, उसके कोमल लाल होठों पर वाणी का हल्का सा आभास, उसका कोरा और पतला शरीर खिलती हुई लता की तरह यौवन से परिपूर्ण था। वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। पहाड़ियों और जंगलों की सुगंध से लती हवा का एक तेज झोंका मेरी रोशनी बुझा देता और मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता, आंखें बंद कर लेता और मेरा शरीर आनंद से सिहर उठता।

कानों में हल्की फुसफुसाहट और मेरे माथे पर सुगंधित सांसें तैरने लगती या एक मीठी सुगंध से भरा रुमाल बार बार मेरे गालों पर लहराता, फिर धीरे धीरे एक रहस्यमयी नाग अपने स्तब्ध करने वाले कुंडल मेरे चारों ओर लपेट लेता और एक गहरी आह भर के मैं बेहोश हो जाता और फिर गहरी नींद में सो जाता। उसमें पीड़ा थी, लालसा थी, आकर्षण था और उसके आकर्षण में मैं अपने आप को बिल्कुल ही भूलता जा रहा था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैं बदलने लगा, इतना धीरे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे भूख लगनी बंद हो गई, नींद आंखों से चली गई, दिन और रात का फर्क मिटने लगा। महल अब बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर उतर चुका था। मेरे बचपन की बातें, माँ की आवाज, पिता की परछाई, पहली खुशी, पहला डर, सब जैसे किसी ने धुंध में लपेट लिया हो। मैं सोचता तो दीवारें सोचती, मैं डरता तो फर्श ठंडी सांस लेती। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता और रात में मैं फिर से उसी जाल में फंस जाता। एक शाम मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। पता नहीं किसने मुझे रुकने के लिए कहा। उस दिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरी अंग्रेजी टोपी और कोट रैक पे रखे थे और मैं उन्हें उतारने ही वाला था कि अचानक नदी की रेत, पहाड़ियों के सूखे पत्तों से भरी एक तेज बवंडर ने उन्हें उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। हंसी की एक जोरदार गूंज ऊंची होती चली गई, जो आनंद के सभी सुरों को झंझोरती हुई सूर्यास्त की भूमि में विलीन हो गई। पर मैं आगे बढ़ता रहा। सब चिल्ला रहे थे, प्लीज मत जाओ, मत जाओ, यहाँ रहो। मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था अगर देखा तो रुक जाऊंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, मेरी सांसें भारी होने लगी। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, किसी ने कपड़े खींचे, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने यादों को पकड़ लिया जबरदस्ती। मैंने अपने बचपन का नाम जोर जोर से लेना शुरू किया, अपनी माँ की आवाज याद की और दौड़ा। महल चीखा, पहली बार दीवारें फटने लगी जैसे पत्थर रो रहे हो, और फिर अचानक सब हिलने लगा। थोड़ी देर के लिए मेरे पैर जम गए। उस दिन मैंने किसी के दिल दहलाने वाले सिसकने की दबी हुई आवाज सुनी, जैसे बिस्तर के नीचे, जमीन के नीचे, उस विशाल महल की पथरीली नींव के नीचे किसी कब्र की गहराई से कोई आवाज करुणता से मुझसे विनती कर रही हो, हे भगवान मुझे बचाओ। कठोर भ्रम, मृत्यु जैसी नींद और व्यर्थ सपनों के इस दरवाजे को तोड़ दो, मुझे अपने पास बैठाओ, अपने दिल से लगा लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और पहाड़ियों, जंगलों और नदी के पार से गुजरते हुए मुझे अपने ऊपर के धूप से जगमगाते कमरों के गर्म रोशनी में ले जाओ। मेरे ऊपर आंसू टपकने लगे, बाहर तूफान चीख पुकार कर रहा था। मैंने कहा, अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। तूफान और बारिश के बावजूद मैं महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे एक सकरा सा रास्ता दिखाई दिया। मैं बाहर निकला, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं रुका नहीं, दौड़ता गया, भागता गया और अंत में अपने कार्यालय पहुंचा। वहाँ बूढ़ा करीम खान बैठा हुआ था। मैंने कहा, करीम खान मुझे प्लीज इन सब का मतलब समझाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े क्लर्क ने धीरे धीरे मुझसे बहुत सारी बातें किया। मुझे जो समझ में आया वो ये था कि एक समय उस महल में अनगिनत अधूरी इच्छाएं, असंतुष्ट लालसाएं और प्रचंड आनंद की ज्वालाएं धधक रही थी और उन सभी दिल के दर्द और चकनाचूर आशाओं के अभिशाप ने उसके हर पत्थर को प्यासा और भूखा बना दिया था। मानो वो किसी भी जीवित व्यक्ति को जो संयोगवश पास आ जाए
एक भूखी राक्षसी की तरह निगलने को बेताब हो। वहाँ लगातार 3 रात बिताने वालों में से कोई भी इन क्रूर जंगलों से नहीं बच सका, सिवाय एक मेहर अली के, जो अपनी बुद्धि खोकर बच निकला था। उसी क्षण कुलियों ने घोषणा कर दी कि ट्रेन आ रही है। टैगोर जी कहते हैं कि मैं घबरा गया। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी? जैसे ही ट्राम अंदर आई, हमने जल्दी से जल्दी अपना सामान लपेटा। एक अंग्रेज सज्जन, जो शायद अभी अभी नींद से जागे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हमारे सहयात्री पर पड़ी, उन्होंने उनको हेलो कहा। वो उनको पहचानते थे और उन्हें अपने डिब्बे में ले गए। चूंकि हम सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए थे, इसलिए हमें ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि वो व्यक्ति कौन था और इस कहानी का क्या अंत हुआ। प्यारे श्रोतागण, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है, ये चेताने के लिए लिखी गई है। हर वीरान जगह खाली नहीं होती, कुछ जगह यादों से भरी होती है, इतनी भरी कि और यादों की भूखी हो जाती है। वो प्रेम की भूखी होती है, उनमें आही कैद होती है, और कुछ पत्थर भूखे रह जाते हैं और चुपचाप तुम्हें खा जाते हैं। प्यारे श्रोतागण, पुराना महल और कोई सुनी इमारत अगर देर तक आपको देखने लगे, तो समझ जाइएगा कि वो आपको नहीं देख रही, वो आपको याद कर रही है। आप सुन रहे थे 89.6 FM लेट नाइट हॉरर सीरीज में रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कहानी हंग्री स्टोन्स। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। गुड नाइट, और अगर नींद ना आए तो डरिए मत, कभी कभी पत्थर बस याद दिलाने आते हैं।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारे, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी क्या, भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है। जैसा भी लगता है आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतज़ार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर, जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रोमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है, तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने, यानी सुनील दत्त साहब ने, हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति, जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवाह है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमां, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना।

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हम मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पे हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाजी तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। वैसे सावन केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो गैमस्ले 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के, उस जमाने के, जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ, भीगी बातों के साथ, शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: out of 10?
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो